FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।

0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए देश वंदना समूह स्वर में।

देश वंदना अभी आपने सुनी समूह स्वर में। आइए अब सुनते हैं राम भजन, स्वर दिया है शर्मा बंधु ने।

शर्मा बंधु की आवाज में अभी आप सुन रहे थे राम भजन। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम का अगला भजन आइए सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज में।

देविका पंडित और साथियों की आवाज़ों में गाए इस भजन के साथ ही हमारी आज की आराधना यहीं पर संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात। आज का विषय है ग्रीष्मकालीन बरसीम के खेती। इस विषय पर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय।
1: संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। रबी के चारा वाले फसल में बरसीम के बहुत महत्व है। बरसीम ला चारा के राजा तको कहे जाते। जौन सिंचित क्षेत्र में भारत के लगभग जम्मो जगह में उगाए जाते। बरसीम के फसल ले 4-5 कटाई प्राप्त करे जाते। बरसीम की खेती वायुमंडलीय नत्रजन ला भूमिया में प्रतिस्थापित करके भूमिया के उर्वरा शक्ति ला एकर चारा में 17-21% प्रोटीन, 12-15% शुष्क पदार्थ और 65-75% पाचनशील होते, जेन हा पशु मन बर बहुत ही लाभदायक होते। बरसीम के खेती बर भूमिया की बात करी, ज्यादा जल धारण क्षमता और उपजाऊ भूमिया जेखर जल निकासी बढ़िया ढंग ले होए, खेत के तैयारी बर 2-3 जोताई कल्टीवेटर या देसी नांगर ले बढ़िया करना चाहिए। फिर ये ला छोटे छोटे क्यारी बना के जेखर आकार 4 वर्ग मीटर हो आए, ये ला कल्टीवेटर ले 2-3 बढ़िया जुताई करके छोटे छोटे क्यारी बना के ये माँ बुआई करना चाहिए। बरसीम के उन्नत किस्म की बात करी, मस्कावे, वरदान, बुंदेली बरसीम 2, बुंदेली बरसीम 3, JB1, JB5, पूसा जाइंट BL22। बुआई बर बीजा की बात करी तो बरसीम के बीजा 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगते। बुआई बर 25 सेंटीमीटर कतार ले कतार के दूरी रखना चाहिए। बरसीम के बुआई तैयार क्यारी में रात भर पानी भर के मचाई करके रात भर भीगे बीज ला उमडार के करे जा सकते है। पहली कटाई में अच्छा पैदावार भर बरसीम के साथ गोभी, सरसों के 0.6 किलोग्राम बीज चाहे 60 किलोग्राम जई प्रति एकड़ मिलाना चाहिए। खातू माटी के जहां तक बात करी संगवारी हो, तो बरसीम के खेत में प्रति एकड़ खातू माटी के बात है, बरसीम के खेत में जहां तक बात करी तो प्रति हेक्टेयर नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम,

0: 40 किलोग्राम के मात्रा लग थे। संगी हो ये देखे पर मिलते के बरसीम एक दलहनी फसल है और जेन खेत में बरसीम के पहली बार बुआई होते वो खेत में राइजोबियम कल्चर के प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतः कासनी के जोन बीज है बरसीम के साथ मिल जा रही थे। जोन बरसीम के बीज के जैसे दिखते ओला चिन्हना मुश्किल होते। एक निकाले खातिर भर 10 एला निकाले भर 5-10% नमक के घोल के प्रयोग करना चाहिए। कासनी के बीज जो उन्हें हल्का होते जेखर कारण पानी के ऊपर तौड़े लग ओला निकाले जा सकते। खरपतवार के बात हम करी तो खरपतवार नियंत्रण भर ऑक्सी फ्लोरोफेन 0.1 किलोग्राम सक्रिय तत्व के साथ बुआई के तुरंत बाद में इमे जाथा पायर 0.1 किलोग्राम तत्व प्रति हेक्टर प्रथम कटाई के तुरंत बाद डालना चाहिए। सिंचाई के पहला सप्ताह बाद औ एखर बाद 15-20 दिन के अंतराल में सिंचाई करना चाहिए। पहली कटाई 50-60 दिन में और दूसर कटाई 3-4 कटाई 20-30 दिन के अंतराल में करना चाहिए। ये प्रकार ले अगर बरसीम के खेती हमारे किसान भाई मन करते हैं तो प्रति हेक्टर 500-600 कुंटल हरा चारा प्राप्त हो ही। राम राम जय जो।
1: ग्रीष्मकालीन बरसीम के खेती, इस विषय पर खेती की बात आप तक पहुंची। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। स्वर दिया है अनुराधा पौडवाल ने। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षणभर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भर कर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसूरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल ने, सतीश भाटिया का संगीत संयोजन था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिंतन। आज विषय है नाम की सार्थकता। आलेख है डॉक्टर शोभा कांत झा की।
1: नई जगह थी, अकेले घूम रहा था। उत्सुकतावश एक राही से संकेत करके मैंने गांव का नाम पूछा। वो झेपते हुए बोला, सुबह सुबह इस गांव का नाम लेना वर्जित है। मेरे क्यों का जवाब देते हुए वो बोला, बहुत वर्ष पहले इस गांव में एक आदमी की हत्या कर दी गई थी। सवेरे सवेरे इसका नाम लेने से अन्न जल प्राप्त नहीं होता। वो चला गया। बाद में पता चला कि उस गांव का नाम हरिपुर है। कितना सुंदर पावन नाम है हरिपुर। परंतु व्यक्ति ने उसे कुकर्म के द्वारा अपावन बना दिया था। हमारे परदादा जी थे, उनका नाम लाड़ प्यार या शकुन के विश्वास के कारण छेदी झा रख दिया गया था। वे पंडित थे, पंडित से अधिक संतों की तरह परोपकारी उदार अतिथि देव थे। जब दोपहर होती थी और दरवाजे से होकर कोई भी राही गुजरता था तो वे उसे रोक लेते थे, शरबत या भोजन कराकर ही जाने देते थे। उन्हीं के नाम से हमारा गांव जाना जाता है। हमारा कुल पावन और प्रशस्त हो गया। ऐसे अनेक प्राचीन ग्राम और नाम हैं जो व्यक्ति के कृत्यों से नामी और बदनामी का अभिशाप झेलते हैं। ऐसा था हमारा दूर और पास का अतीत, नीतिमय अतीत, सभ्यता का भारतीय मानदंड, अकार्य सुकार्य के प्रतिमान, वर्जनाओं की देहरी, इसे लांघने वाला दुस्साहसी कहलाता था। वो यदि राजदंड से बच भी जाता था तो भी वो सामाजिक कोप से नहीं बच पाता था। हनुमान जी ने तो अपनी जाति को ही प्रातःकाल नाम न लेने योग्य बताया है। संभवतः तत्कालीन समाज ने उस जाति को किसी वर्जित कार्य करने के कारण दंड दिया हो और इसी कारण से ये नर से वानर बन गई हो। ये भी सच है कि हनुमान सुग्रीव आदि वानरों ने राम काज साधकर जो कीर्ति अर्जित की उससे बाद में वानर जाति का मान बढ़ गया। तभी तो सुबह सुबह श्रद्धालु लोग वानरों को चना फल आदि खिलाते मिलते हैं। आधुनिक सभ्यता के दौर में सब कुछ उलट पुलट गया है। नीति मर्यादाओं की बात करना भी असंगत लगता है। आचरण तो दूर की बात है, स्थापित मूल्यों को मिटाने में लोगों को मजा आता है। लोग सुबह शाम आतताइयों, भ्रष्टाचारियों, हत्यारों का नाम लेने में शर्माते नहीं। उन्हें

0: माला पहनाते हैं, गांव का पटेल बनाते हैं, उनके जुलूस में शामिल होते हैं। ये शामिल होने वाले लोग भूल जाते हैं कि दुर्नीतियों और दुराचारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साथ देना आत्मघाती है। इनके परिणाम देर सवेरे समाज को और हमको भोगने ही पड़ते हैं। लूट, हत्या, अपहरण, तरह तरह के बढ़ते भ्रष्टाचार साक्षात प्रमाण है। आखिर कुकर्मियों के कुकर्म का दुष्परिणाम समाज को ही तो झेलना पड़ता है। हम भी तो उस समाज के अंग हैं। ये करें वो न करें, विधि निषेध में ये नीतियां वर्जना कहलाती हैं। ये सभ्यता की माता है, हमें आदमी बनाती है, पशुता से ऊपर उठाती है। ये हमारे विकास का अवरोधक नहीं, सही विकास में सहायक है। पानी नहर नाली के बीच से होकर फसल के पास ठीक से पहुंच पाता है, अन्यथा बिखर कर पौधे को लाभ नहीं पहुंचाता। ये समझदार माँ की तरह सही दिशा में चलने के लिए नहीं, मत, चाहिए आदि शब्दों के संकेतों से प्रेरणा देती है। सही दिशा में चलकर ही मंजिल पाई जा सकती है। टीम टाम, यौन खुलापन, सौंदर्य की प्रतियोगिताओं और अनाप शनाप उपभोग का नाम विकसित सभ्यता नहीं है। पूर्ण विकसित सभ्यता सादापन की ओर बढ़ती है और अधूरी विकसित सभ्यता दिखावे की ओर। हम किधर बढ़ रहे हैं यह हमें सोचना होगा। समय रहते चेतना उत्तम चेतना का तकाजा है।
1: नाम की सार्थकता, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आलेख था डॉक्टर शोभा कांत झा की। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। 7:05 का समय होता है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का। सदाबहार नगमे सुनिएगा 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर का प्रसारण समय होगा 8:30 पर। आज दिन के 10:00 सुनिएगा फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। नए तराने का प्रसारण समय होगा 10:30 पर। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि सुबह 9:55 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 11:55 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। संदेश टू सोल्जर्स, इस कार्यक्रम को हम रिले करेंगे आज शाम 4:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर एक नजर। आज शाम 5:05 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। महिला सभा का प्रसारण समय होगा 6:35 पर। आज इस कार्यक्रम में सामूहिक चर्चा का विषय होगा विश्व चाय दिवस और क्रम में होगा लोक संस्कृति। 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अनुप्रसारित करते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। 7:20 पर ग्राम सभा में बेरा के गोट के तहत विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कार्यक्रम किसानवाणी सुनिएगा 7:30 पर। इसमें आज की बात के तहत विषय होगा महिला स्व सहायता समूह से जुड़ें और अपनी आय बढ़ाएं। इसी कार्यक्रम में आज डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर श्रोताओं द्वारा फोन पर पूछे गए सवालों के जवाब देंगी। विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे महंगू भैया। रात 8:00 कार्यक्रम चिट्ठी मिली का प्रसारण किया जाएगा और 8:20 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम विवरण समाप्त।

0: करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सप्तवादनतः आरभ्यते, यद्धि सायं षड्वादने समाप्तं भविष्यति। आहत्य षड् प्रत्याशिनः सौभाग्यस्य प्ररीक्षां कुर्वन्ति, येषु द्वौ निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरंगतः तीव्रतापतरंगस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना।

0: होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगी। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी संस्कृत और हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह स्वागत अभिनंदन आप सभी श्रोता मित्रों का कार्यक्रम आज सुबह में।

श्रोताओं, हम सभी की सुबह की शुरुआत चाय के साथ होती है। चाय एक पेय नहीं, एक भावना है और हम सभी के जीवन का हिस्सा। मेहमानों का स्वागत करना हो, दोस्तों के साथ गपशप करना हो, तो उसमें चाय ज़रूर हिस्सा बन जाती है। कटिंग चाय, कुल्हड़ चाय, असम की चाय, दार्जिलिंग की खुशबूदार चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। श्रोताओं, आज सुबह सुबह चाय की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आज है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। सन 2019 से पहले भारत, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, केन्या, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे चाय उत्पादक देश हर साल 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते थे, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर इसे 21 मई यानी कि आज ही के दिन मनाने का फैसला लिया। मई माह में मनाने का उद्देश्य भी यही था कि चाय उत्पादन के लिए मई का महीना सबसे सही माना जाता है। ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक टी, कई तरह की चाय आजकल बाजारों में देखने को मिलती है जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी भी है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। चाय तनाव को कम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत भी बनाती है, पर बस इसकी मात्रा हमें निश्चित ही लेनी होगी। एक सीमित मात्रा में ही हम चाय का इस्तेमाल करें। श्रोताओं, कड़ी धूप और बारिश में मेहनत करने के बाद श्रमिकों के द्वारा चाय की पत्ती तैयार की जाती है और हम तक पहुंचती है। चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों को उनका अधिकार मिले, उन्हें काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण मिले और चाय के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया। चाय लाखों लोगों के आजीविका का साधन है। श्रोताओं, एक कप चाय ही तो है जो दो दिलों को जोड़ती है, हर थकान को पल भर में दूर कर देती है, रूठे को मनाने का

काम करती है और एक ही पल में खुशियों की तरफ मोड़ देती है। चाय पे चर्चा तो हमारे देश का हिस्सा बन चुकी है, बड़े बड़े फैसले भी चाय पीते पीते लिए जाते हैं। तो चलिए आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर आप एक अच्छी सी चाय पीजिए, अपने आसपास के मित्रों को पिलाएं और इस खास दिन का आनंद लें। और अब आइए सुनते हैं आप और हम मिलकर ये गीत।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आइए अब सुन लेते हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमाशंकर पांडे और आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर। आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कें, सभी चौक चौराहों के साथ ही शहर से बाहर भी गांव-गांव तक सभी प्रकार की सड़कों में सभी प्रकार के वाहन भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक यात्रा सरल हो, सुगम हो तथा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। मित्रों, हमारी न्यायधानी की हर सड़क, हर गली, चौक चौराहे अति महत्वपूर्ण है, किंतु इनमें नेहरू चौक एक ऐतिहासिक, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण के साथ ही यातायात की नजर से सबसे अधिक व्यस्ततम चौराहा है। इस चौक के चारों ओर तमाम शासकीय कार्यालय हैं,

0: जिनमें जिला न्यायालय, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, तमाम बैंक, तहसील, जिला पोस्ट ऑफिस तथा तमाम शासकीय कार्यालयों का भवन कंपोजिट बिल्डिंग एक नहीं दो दो स्थित है। इतना ही नहीं, माननीय हाईकोर्ट जाने का मुख्य मार्ग भी यही है, इसलिए इसका महत्व अधिक नहीं सर्वाधिक है। किंतु विडंबना इस बात की है कि हर प्रकार के हड़ताल धरना प्रदर्शन का अड्डा भी यही चौक है। आए दिन मुख्य सड़कों तक बिखर कर नारेबाजी करते हड़तालियों को देखा जा सकता है। एक सीमित स्थान की अनुमति लेकर कई बार मुख्य मार्ग का अधिकांश भाग लोग जाम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से नारेबाजी करते लोग जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने मजमा लगाकर आम यातायात बाधित कर देते हैं। शासकीय कार्य के साथ ही आम लोग भी परेशान होते हैं। यातायात कई बार पूर्ण बाधित हो जाता है, किंतु अपने हक को मांगने वाले ये भूल जाते हैं कि जिनका रास्ता आप रोक रखे हैं उन्हें यहाँ से जाने का हक है। ऐसे हड़तालियों से अनुरोध है, आपका यह कृत्य विधि और मानवता दोनों के विरुद्ध है, ऐसा न करें। हमेशा यात्रा नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो थी बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। श्रोताओं, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि देश की अमन, शांति और खुशहाली हमारे लिए कितनी कीमती है। आज ही के दिन हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को एक आतंकी हमले में खो दिया था। उसी दुखद घटना के बाद से हर साल इस दिन को आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। वे राजनीति में आने से पहले एक कमर्शियल पायलट थे। उन्हें 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उनकी सोच बहुत ही आधुनिक थी। वे दुनिया को उच्च तकनीकों से पूरा करना चाहते थे। वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के अलावा उनके अन्य मुख्य उद्देश्यों में से एक था 21वीं सदी के भारत का निर्माण। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। श्रोताओं, आज का दिन है नफरत के खिलाफ खड़े होने का, जो इंसानों को इंसानों से लड़ाती है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ डर फैलाना, मासूम बेगुनाहों की जान लेना और आम जन के हौसलों को तोड़ना है। आज हम सभी शपथ लेते हैं कि अमन की, भाईचारे की, एक सुरक्षित भारत की और नफरत को न सहेंगे और न ही फैलने देंगे।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: भारती।
7: कुछ यादें अतीत की।
8: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे गजलें सूफियाना चीजें खूब सीखी।
7: कुछ बातें वर्तमान की।
9: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ, रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
7: कुछ सपने भविष्य के।
10: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
7: कुछ किस्से अनकहे।
11: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
7: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
12: संदेशों के बाद स्वागत एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम आज सुबह में। श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। अगर इसे हम सरल भाषा

मैं कहें तो आज का दिन हमारी विविधताओं का जश्न मनाने का दिन है। जरा सोचिए, अगर दुनिया के सारे फूल एक ही रंग के होते तो क्या गुलदस्ता खूबसूरत लगता? नहीं ना। असली मज़ा तो तब है जब एक गुलदस्ते में गुलाब हो, गेंदा हो, चंपा, चमेली और ढेर सारे फूल हों। ठीक वैसे ही हमारी दुनिया भी अलग अलग भाषाओं, पहनावे, खान पान और तीज त्योहारों से सजी है। कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। हमारे यहाँ इडली डोसा भी उतने ही चाव से खाया जाता है जितने चाव से मक्के की रोटी और सरसों का साग। और श्रोताओं, ये सब हमारी ताकत है। इस दिन को मनाने का एक और बड़ा मकसद है बातचीत और विकास। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, तो आपस में दोस्ती के पुल बनते हैं और नफरत की भावना खत्म होती है। श्रोताओं, संस्कृति वो धागा है जो हम सबको आपस में जोड़ता है और हमें विकास की राह में आगे लेकर जाता है। आप सभी एक दूसरे की भाषा, उनके तौर तरीकों और उनकी संस्कृति का सम्मान करें, समझें। और जब सब संस्कृतियां एक साथ मिलती हैं तो जिंदगी एक अलग ही रंग में रंग जाती है। बस अपनी बातों को मैं यहीं पर विश्राम देती हूँ और कार्यक्रम आज सुबह समाप्त करने की अनुमति चाहती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। ये आकाशवाणी बिलासपुर है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 हो चुके हैं। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। श्रोताओं, आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने जा रहे हैं, तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत से करते हैं। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़, फिल्म का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, सौतन फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है। गीतकार प्रदीप कौशिक और उषा खन्ना का संगीत।

0: ना?
1: नहीं बिल्कुल नहीं।
0: हाँ।
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: सौतन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार प्रदीप कौशिक, उषा खन्ना ने संगीत दिया था। कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला तराना, बातों बातों में। इस फिल्म का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले ने इसे गाया है। शब्द अमित खन्ना के, राजेश रोशन का संगीत।

और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

अगर तुम ना होते, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। गुलशन बावरा के शब्द पर तर्ज बनाई थी आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम सदाबहार नगमे का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर का लिखा हुआ ये गीत है, नदीम श्रवण ने संगीत रचना की है, फिल्म का नाम दामिनी। आइए सुनते हैं ये तराना।

और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। और इसी के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 8 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
4: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया।

0: जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
5: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी। प्रियंका
1: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल

0: होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
1: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
0: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग श्वांगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को

0: to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं बैतल राम साहू और साथी की आवाज में। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक, रमजान खान, सिकंदर, अशरफ खान, नासिर खान, अयास खान, अल्फैज खान, हजीरून निशा, आप हैं भाटापारा शांतिनगर से, बिल्हा से शेख नासिर, महजूबीन बानो, आप हैं बिल्हा से, ग्राम बसीबार से शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, कुमारी आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, मनोज कुमार, कंवर और वर्षा, धरसीवा से आप हैं छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोष नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव। इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र मिला है हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी और कोमल यादव का। आइए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बैतल राम साहू और साथी को।
1: रजदारे में फुसकी उड़त है और बोली है रसगुल्ला,

0: परवलाए और रही रही के मोर जीवला परोसिन का भर जलाए
1: धक धक करे मोर छतिया धक

तोर से पिताज दे पगली मोरे जानला अमोला तय बना ले तोर घर तिया मन से कथा हो अ

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना श्रोताओं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7

बजकर 30 मिनट से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 21 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक उपस्थित रहेंगी। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 310026। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 21 मई 2026 और 22 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। बढ़ते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर की ओर। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत इन श्रोता साथियों की फरमाइश पर हम आप तक पहुंचाएंगे। लूत्रा खमरिया से नकुल शाम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवा राम वर्मा, सूरज नारायण, यदु लेखराम यदु, राधेश्याम सियाराम, सोनाडीह से आप हैं सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ और वंदना, ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचिनी मसिया, खुमेंद्र मसिया, तुषारिणी मसिया, यहीं से आप हैं रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। आप सभी ने पसंद किया है छाया शर्मा और साथी की आवाज़ में ये तराना।

छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं ममता चंद्राकर की आवाज में। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी जिनके पत्र हमें मिले हैं, ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु डॉली, पूर्वेश साहू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास, मानिकपुरी लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गा राम साहू। इसी गीत के लिए हमें पत्र मिला है चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, खुशी रौनक सेन का। तेलीपारा बिलासपुर से आप हैं रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास, अनीता श्रीवास, पहंदा कोरबा से सम्मीलाल कुर्रे, सावित्री देवी कुर्रे, सरक बुंदिया से गब्बर साहू, निर्मल देवी साहू, कटोरा तालाब रायपुर से आप हैं मोहन लाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ममता चंद्राकर को।

अभी आप सुन रहे थे लता खापर्डे की आवाज़ में ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथियों के नाम हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा ने इस गीत को पसंद किया था। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का तन्मय गजभिये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, पुष्पेंद्र, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र साहू, मोहनपारा कलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक और उमा देवी साहू, शांतिनगर भाटापारा से मिलव दास, कुलदीप, संतोष दास, संदीप दास, अजीत दास, कुलदीप, बिरजा, संजना और लकी, मुनगाडी पाली कोरबा से विकास, दीप्ति, प्रवीण, चंद्रमणि, बेबी, नित्या, आप सभी हैं पाली कोरबा से, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम। श्रोताओं, इसी के साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं पर समाप्त होता है।

था और रोचक कोहली और साथियों ने इस गीत को संगीत से संवारा था। इसी गीत के बाद आइए एक बहुत छोटा सा ब्रेक फिर से लिया जाए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।

अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। 9 बजने वाले हैं अब से लेकर 9:55 तक हम जुड़े रहेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

फिर से आप सभी का बहुत स्वागत चित्रलोक कार्यक्रम में। पुष्पा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं, जावेद अली की आवाज है।

प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को कई यादगार और सफल फिल्में दी हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, रब ने बना दी जोड़ी जैसे सफल फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने वीर जारा, धूम, श्रृंखला, चक दे इंडिया, एक था टाइगर और बंटी बब्बी जैसी फिल्मों का लेखन और निर्माण किया। सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा को विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता, निर्माता, निर्देशक आदित्य चोपड़ा पर, और सुनते हैं आप ये गीत। आपको ये भी याद दिला दें कि ये आज के फनकार कार्यक्रम सुनेगा सुबह और रात 9:30 पर।

0: गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, लब जंजुआ की आवाजें थी, जयदीप साहनी के बोल थे और सलीम सुलेमान की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से सजाया। एक और ब्रेक लेते हैं चित्रलोक कार्यक्रम में।

वीर ज़ारा फिल्म का गीत उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे, जावेद अख्तर के ये बोल थे। दोस्तों आज विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस है। दुनिया में हर जगह लोगों की भाषा बोली अलग है, खान पान पहनावा सब अलग है, उत्सव अलग ढंग से मनाए जाते हैं। हर जगह की संस्कृति और सभ्यता अलग होते हुए भी इन सब के बीच एक बात है जो सबको जोड़ती है, वो है इंसानियत और प्रेम। सब कुछ अलग होते हुए भी एक दूसरे को समझने की भावना, यही सुंदरता है। हमारा देश तो विविधताओं का अनुपम और अद्भुत संगम है। संग अच्छत्वम संग वदत्वम सम वो मनांसि जानताम, साथ चलें साथ बोलें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, मन को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। विश्व सांस्कृतिक विविधता संवाद और विकास दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान, सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देना है। ये गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मेरे बाप पहले आप।

0: उदित नारायण श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था मेरी बाप पहले आप। दोस्तों आज आतंकवाद विरोध दिवस भी है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस मनाने का उद्देश्य कि हमें एकता भाईचारा और आपसी विश्वास को मजबूत करने की प्रेरणा ये देता है। आज का दिन आइए हम सभी मिलकर हिंसा और नफरत से दूर रहकर प्रेम सद्भाव और शांति का संदेश फैलाएं, क्योंकि जब समाज और देश सुरक्षित रहता है तो हम सुरक्षित रहते हैं। और अब एक संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: और अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, स्वस्थ और समृद्ध रहिए। और इजाजत दीजिए सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हट।

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता ना ही उम्र का मोहताज होता है प्यार सर्वकालिक होता है सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
0: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, them gonna pass the test.
0: ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की, कबीर खान निर्देशित एक था।

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:55 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अब हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन

0: आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की निगरानी करेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं। इन्हीं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकास खंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल रमन डेका कल जनगणना 2026 प्रक्रिया में शामिल हुए। जनगणना 2026 की प्रक्रिया के तहत नगर निगम के अधिकारियों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से जनगणना के 33 बिंदुओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने निर्धारित प्रश्नों के आधार पर राज्यपाल से व्यक्तिगत, सामाजिक और अन्य सामान्य विवरण लिए। राज्यपाल ने जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर की जोन कमिश्नर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0, पीएम जनमन कार्यक्रम और पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर में अब से कुछ देर बाद गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस शिविर का उद्घाटन कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन के 10 बजे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है डर। आनंद बख्शी के शब्द, शिव हरी का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता साथी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा बाजारपारा बेमेतरा से, भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा हथकेरा भाटापारा से, पंचू यादव, दादू यादव बावली से, कमलेश साहू, हरेंद्र साहू, सुशील बेलस पुरिहा भाटापारा से, अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा साहू, मोनिशा साहू भाटापारा से ही आप हैं। दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण और दुलारी वर्मा, आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का अगला गीत फरमाइशी हम आपको सुनवा रहे हैं हीरो फिल्म से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, मनहर उदास, आनंद बख्शी ने गीत लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गीत के लिए हमें इन श्रोता साथियों के फरमाइशी पत्र मिले हैं। हरदेव लाल पारा, वार्ड सिमका से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव, भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मायाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या रजक, कुमारी टानिया रजक, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, चाटीडीह से आप हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन, ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति, भाटापारा से आप हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, भाटापारा से ही आप हैं सियाराम, अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से नीलू मेघ।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें, इंदिवर के शब्द, बप्पी लहरी का संगीत और फिल्म का नाम गिरफ्तार। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इन श्रोता साथियों की फरमाइश पर महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर, चांदनी चौक पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, यहीं से आप हैं खुशी रौनक सेन, ग्राम रसेड़ा कलतरा से इसी गीत को पसंद किया, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी साहू, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश कुमार साहू, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू ने। आइए अब सुनते हैं हीरो नंबर 1 का ये गाना। गायक कलाकार उदित नारायण और पूर्णिमा, समीर ने गीत लिखा है और तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं अकलतरा भक्तिन बाजार से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती, भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयास खान, अल्फैज खान, हजीरून निशा, सादिया खान, बिल्हा से शेख नासिर, महजबीन बानो। इसी गीत के लिए हमें फरमाइशी पत्र मिला है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, आरू साहू और अनक्ष साहू का। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं हीरो नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 10:30 हुए हैं।

0: सैम बहादुर इस फिल्म का तराना हम आप तक पहुंचा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीतकार गुलजार और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।
1: इतनी सी बात

0: गदर टू इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज में। सईद कादरी के शब्द और संगीत दिया था मिथुन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले लीजिए सुनिए बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमा शंकर पांडे और आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर। आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सभी सड़कें, सभी चौक चौराहों के साथ ही शहर से बाहर भी गांव-गांव तक सभी प्रकार की सड़कों में सभी प्रकार के वाहन भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। या यूं कहें कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी प्रत्येक यात्रा सरल हो, सुगम हो तथा सुरक्षित हो, तो इसके लिए आवश्यक है हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। मित्रों, हमारी न्यायधानी की हर सड़क, हर गली, चौक चौराहे अति महत्वपूर्ण है, किंतु इनमें नेहरू चौक एक ऐतिहासिक, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण के साथ ही यातायात की नजर

0: से सबसे अधिक व्यस्ततम चौराहा है। इस चौक के चारों तमाम शासकीय कार्यालय हैं, जिनमें जिला न्यायालय, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, तमाम बैंक, तहसील, जिला पोस्ट ऑफिस तथा तमाम शासकीय कार्यालयों का भवन कंपोजिट बिल्डिंग एक नहीं दो दो स्थित है। इतना ही नहीं, माननीय हाईकोर्ट जाने का मुख्य मार्ग भी यही है, इसलिए इसका महत्व अधिक नहीं सर्वाधिक है। किंतु विडंबना इस बात की है कि हर प्रकार की हड़ताल, धरना, प्रदर्शन का अड्डा भी यही चौक है। आए दिन मुख्य सड़कों तक बिखर कर नारेबाजी करते हड़तालियों को देखा जा सकता है। एक सीमित स्थान की अनुमति लेकर कई बार मुख्य मार्ग का अधिकांश भाग लोग जाम कर लेते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ से नारेबाजी करते लोग जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने मजमा लगाकर आम यातायात बाधित कर देते हैं। शासकीय कार्य के साथ ही आम लोग भी परेशान होते हैं। यातायात कई बार पूर्ण बाधित हो जाता है, किंतु अपने हक को मांगने वाले ये भूल जाते हैं कि जिनका रास्ता आप रोक रखे हैं, उन्हें यहाँ से जाने का हक है। ऐसे हड़तालियों से अनुरोध है, आपका यह कृत्य विधि और मानवता दोनों के विरुद्ध है, ऐसा न करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो थी बिलासपुर शहर की आज की यातायात व्यवस्था। आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। डंकी इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में। प्रीतम का संगीत है और इरशाद कामिल ने गीत रचना की है।

बेनी दयाल और नीति मोहन की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे बैंग बैंग फिल्म का ये गीत। विशाल ददलानी ने इसे लिखा था और विशाल और शेखर ने संगीत तैयार किया था। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म का नाम है फुकरे। सोना महापात्रा की आवाज, राम संपत का संगीत और गीतकार मुन्ना धीमन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नए तराने। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
1: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
0: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
1: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
0: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
1: जी,
0: अगला संदेश हमें मिला है
1: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
1: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
1: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
1: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
1: जी,
0: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
1: जी,
0: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
1: जी,
0: तो शुरू करें?
1: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
0: जी
1: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
1: जी
0: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
1: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
0: जी शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
1: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
0: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
1: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
0: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: जी
0: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
1: जी
0: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
1: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
0: श्रोताओं, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
1: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
0: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
1: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
0: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
1: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं। इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। یہ نہ صرف ورشا لاتی

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस।

0: रखते हैं, लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उसी जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्ला

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है, लो सुनो।

0: कान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश। लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो।

अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं उछलता रहता कभी।

0: चूस के पांव एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास थकाता, हरी हरी वो घास थकाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।

0: बादल देखे, फिर दादी माँ,
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: यानी खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: हम तुम खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी।
5: हाँ,
6: फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काट।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल।

0: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
1: रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
2: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
3: हाँ अटकू, चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
3: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
2: अरे वाह, क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
3: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
1: क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ न होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे वाह अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
3: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
6: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग, उमंग, उमंग।
9: NCERT ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। 11:30 हुए हैं। अब से लेकर 11:55 तक आप सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, सहिर होशियारपुरी के ये शब्द हैं, संगीत जगजीत सिंह का और एल्बम दिल भी तू जान भी तू।
1: मोहब्बत की जुबान।

0: मैं ये गीत आपने सुना, शाहीन इकबाल के बोल, सुजीत शेट्टी का संगीत, एल्बम था ख्वाबों में।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। देखा है तेरी आंखों को, ये एल्बम का नाम, जय वालिया की आवाज, इन्हीं का लिखा हुआ गाना, संगीत ललित का।

निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वर उत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश क्रय की शिकायतों की निगरानी करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फॉर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फॉर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। पालकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है।

देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक

ने प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, में रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। जांजगीर चांपा जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: हिंदी में प्रादेशिक समाचार अभी अनुप्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजे हैं। अब से लेकर शाम 4 बजे तक सुनिएगा विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 4 बजे से संदेश टू सोल्जर्स, इस कार्यक्रम को हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे।

0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थीं। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान में 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। पहला जो गीत है, जिस देश में गंगा रहता है, इस फिल्म का गाना बाली ब्रह्म भट्ट और सुनिधि चौहान की आवाजें, प्रवीण भारद्वाज का लिखा हुआ गाना, संगीत आनंद राज आनंद का।

दोस्तों आज है सांस्कृतिक विविधता दिवस, तो आज के गानों में कुछ यूं होगा कि हिंदी के अलावा कुछ जो दूसरी भाषा है उनके भी कुछ कुछ शब्द इसमें शामिल है इन गानों में। तो सुनिए, आप इनका आनंद लीजिए और अगला ये गीत सुनिए। खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: एक दूजे के लिए इस फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिशन कश्मीर फिल्म का ये गाना शंकर महादेवन, जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। राहत इंदौरी की बोल, संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई।

0: प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में लीजिए अब सुनिए श्री 420 इस फिल्म का गाना। गीतकार शैलेंद्र हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम नौकर।

0: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना त्रिपुरा के पतवा गोदान फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज, अनजान के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: मैं उठते ही लो अरे पुरुआ के झोंकवा में

पार चुपचाप मेरी बात तुम्हारे कानों में पड़े तो उस अनोखी रात को याद करना, तुम्हारा आना, तुम्हारी याद का आना, प्यार का रंगीन जमाना, ठंडी हवा के झोंके के समान सुकून देता है। अगर उस तरह के बादल फिर से आकाश में छा जाएं जब हम पहली बार मिले थे, तो समझना किसी ने दिल से याद किया है। इनमें जो शब्द हैं जिनके गाने आज के कार्यक्रम में हमने शामिल करना चाहा है, तो उन पर हमने थोड़ा स्ट्रेस भी दिया है, तो हो सकता है कि आपको उसकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक साथी की बात है। नदिया का किनारा, ठंडी हवाओं का झोंका और अपनों की याद, उनको खत लिखना यह बहुत ही सुकून भरा और काव्यात्मक एहसास है। मानो प्रकृति की गोद में बैठकर कोई अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा हो, जैसे जिंदगी के पन्नों में बसी कोई सबसे खूबसूरत और पुरानी याद हो। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि सुरीला सफर के हम सफर साथियों को उन्होंने नमस्कार करते हुए लिखा है कि आज की इबारत में मोहब्बत का इजहार इकरार और स्वीकार से ओतप्रोत है। जहां खतों, हवाओं, चांद, सितारों, बादलों को माध्यम बनाया गया है, प्रीत से पूर्ण प्रेमी युगल के हृदय के अरमानों, उमंगों और तरंगों का ताना बाना बुना गया है। सात्विक प्रेम में दिलों से निकलती बहुत सुंदर प्रस्तुति है यह। चलिए अब आपको आज के इस कार्यक्रम का पहला गाना सुनवाते हैं, नदिया के पानी के पास। जी हाँ, सवेरा फिल्म का गाना है ये, शैलेंद्र, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शैलेश का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए। इसके अलावा कौन से साल की ये फिल्म है, अगर ये भी आप हमें बता सकें तो जरूर बताइए।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज के कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आज के कार्यक्रम की जो इबारत, जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो तो आपने पढ़ा ही होगा, और जाहिर सी बात है कि उससे जुड़े हुए बहुत सारे गाने आपने हमें लिख भी भेजे हैं, जिनका अंदाजा आपने लगाया है कि इन बातों को पढ़ते हुए कौन कौन से गीत आपके जहन में आए वो आपने लिख भेजे। बहुत सारे गाने हमारे गानों से मेल खाते हुए भी है। चलिए पहले आपको इबारत जो है वो पढ़ के सुना देते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं जिसे पा के तुम्हें लगे कि तुमने सारा जहां पा लिया है, तो मेरे हम सफर तुम चले आना। अगर कभी चांद तारों के

सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिया है। एक साथी लिखते हैं कि नदी केवल एक पृष्ठभूमि नहीं है, नदी प्रेम में पड़े प्रेमियों की भावनाओं को प्रगाढ़ कर देने वाली, मन को निर्मलता और सुकून देने वाली एक सजीव साथी है। नदी की निश्चलता और निरंतरता को समय या फिर जीवन के प्रवाह के रूप में देखा जाता है। नदी, बहती जलधारा, लहरें प्रिय के साथ गुजारे पलों को याद दिलाया करती है। इसके अलावा आज एक दिवस है, चाय दिवस। बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में भी हमें लिख भेजा है और शुभकामनाएं भी दी है। उनकी भी कुछ बातें हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। एक साथी लिख रहे हैं कि अचानक नदी की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका आता है। वो हवा सिर्फ मेरे शरीर को नहीं छूती बल्कि सीधे मेरे दिल को छूकर निकल जाती है। उस बर्फीली और मखमली हवा के स्पर्श के साथ ही मेरे जहन में अचानक तुम्हारी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है मानो उस बहती हवा ने चुपके से कान में तुम्हारा नाम लिया हो। इस शांत माहौल में तुम्हारी याद आना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हाँ, ये बातें हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है। लेकिन एक बात आपसे और भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि गर्मी इस वक्त अपने चरम पर है। बहुत परेशान हैं हम सब लोग गर्मी की वजह से, कि जब बाहर जाते हैं तो गर्मी परेशान करती है। तो इस तपती गर्मी में पानी, हवा और छांव, ये तो हमें सुकून देते ही हैं। इनकी इच्छा तो हमें रहती है कि खूब अच्छे से हम पानी पिए, और चलते वक्त अगर ऐसा लगे कि छांव मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसके अलावा भी कौन सी चीज़ें हैं जो तन और मन को बहुत ठंडक देती है और सुकून देती है? क्या किसी की प्यार भरी बातें होती हैं? क्या किसी का साथ होता है या किसी की याद होती है जो आपको इस गर्मी में भी बहुत ठंडक का एहसास करवाती है? इसके बारे में भी आप हमें लिख सकते हैं। चलिए, अपनी टेक्स्ट की या इबारत की तरफ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हवा के साथ साथ, जी हाँ, अगला जो गीत है सीता और गीता फिल्म का, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया ये गाना है।

सवेरा फिल्म का गाना आपने सुना, 1958 1958 की ये फिल्म है। मीना कुमारी और अशोक कुमार पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे बहुत सारे साथियों ने इसका

सीता और गीता फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत में खो जाने से मन भटक जाता है और गर्मी का एहसास नहीं होता, तन मन दोनों को सुकून मिलता है और विविध भारती इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अपनी पसंद के गाने सुनने मिलते हैं और सुरीले सफर में जो है बहुत सुरीले गाने भी आपको कई बार जो आपकी पसंद के होते हैं वो भी आपको सुनाई देते हैं। इसके अलावा एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज जो चाय दिवस है उसके बारे में बहुत सारे साथियों ने जिक्र किया है, लिखते हैं कि आज इंटरनेशनल टी डे है, यानी कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम 1 बजे से मैं सुनूंगा, ऑफिस में सुन रहा हूं और आपके साथ मेरी पसंद जो है वो अदरक इलायची वाली चाय का आनंद भी ले रहा हूं, घर की चाय जो मेरी हमसफर यानी कि धर्म पत्नी ने बनाकर दी है, स्टील के थर्मस में लेकर के आया हूं और वही चाय पीते हुए आज का कार्यक्रम सुनूंगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल नदिया के किनारे भी कमर्शियल हो गए, जब लोग जुड़ते हैं तो कोलाहल बढ़ जाता है, उस माहौल में सुकून तो नहीं मिलता पर हाँ थोड़ा अच्छा जरूर लगता है। और इसके अलावा एक साथी लिख रहे हैं कि अगर संगीत में सुरीले सफर में चाय का जिक्र हो तो सफर का मजा दुगुना हो जाए, क्योंकि आज दोस्तों चाय दिवस है, हम जिंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं, मजा तब आता है जब चाय दोस्तों के संग पीते हैं, चाय की चुस्कियों में यादों को डुबोया करो, दुनिया वालों की बातों को खाम खा दिल पे न लगाया करो, महफिल में रंग बिखेर जाती है, ये चाय ही है दोस्तों जो हमें एक दूसरे के साथ बैठाती है। अब देखिए भाई, हमने अपने जो टेक्स्ट में बिल्कुल भी चाय का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इतनी बार हमें याद दिलाया कि हमें लगा कि एक चाय का गाना सुन लिया जाए, उसके बाद इबारत की तरफ आगे बढ़ा जाए। सुनिए, ये लीजिए अपनी पसंद का गाना।

बन फूल इस फिल्म का ये गाना हमने सुना। हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये गाना तो भाई सर्दियों के अनुकूल है, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है चाय पर हमें दो ही गाने पता है, एक तो ये और एक दूसरा शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, उसमें भी चाय का जिक्र आता है। इसके अलावा अगर आपको कोई गीत पता हो कि जिसमें चाय का जिक्र आता है तो वो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे एक साथी लिखते हैं कि श्रोताओं के मन और आग्रह का सम्मान कर ये गाना बजाकर आपने सिद्ध कर दिया कि विविध भारती हर समय श्रोताओं के साथ है। धन्यवाद जी। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद कि इस तरह के जब कोई खास दिन होते हैं तो आप हमें लिख भेजते हैं उसके बारे में, और आपका जो इसमें रुचि है उसके बारे में भी आप हमें बताते हैं, हमें पता चलता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अपने परिवार के लोग साथ हों, आइसक्रीम कुल्फी का स्वाद हो, विविध भारती पर बजते हुए गीत हो तो गर्मी का एहसास बिल्कुल कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि चांद और तारों को प्रेमी अपने मन की बात बताते हैं और नदी किनारे ठंडी हवा में बैठकर प्रेम का इजहार करते हैं। रात भर आकाश में तारे गिनना, यही सब करते सपनों के शहर में चले जाना, यही है पागल प्रेम की कहानी। जी धन्यवाद आपका। चलिए हमारी इबारत की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि नदिया के पानी के पास बैठ हवा के साथ साथ मैं आपको कोई खत लिखूं। चलिए अगला गीत कन्यादान फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, आशा पारेख और शशि कपूर पर फिल्माया गया गाना है, गीतकार का नाम आपको

कन्यादान फिल्म का गाना नीरज का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी की बात है कि वो छुपा कर रखे गए खत, जिनकी हर एक लाइन को कभी सैकड़ों बार पढ़ा था और जिन्हें छूते ही आज भी दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, वो खत भले ही धूल खा रहा था लेकिन उसने दिल के किसी कोने में जमी धूल को साफ कर दिया। उसे पढ़कर आंखें भले ही थोड़ी नम हो जाए लेकिन होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर जाती है जो सिर्फ और सिर्फ अतीत के उस खूबसूरत हिस्से को जीने से ही मिल सकती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हमने पूछा था कि कौन सी और बातें हैं जो ठंडक देती है, तो लिखते हैं कि सच कहें तो हमें ठंडक देते हैं हमारी नन्ही परी के बोल और हमारे गुरुजी के इतने मधुर वचन और अपनों की प्यारी सी याद और फूलों के पास बैठना और चांद की चांदनी, और सबसे ज्यादा ठंडक मिलती है अपने नटखट कान्हा जी से बात

करके। हालांकि हमारी उनसे बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, यानी हमारी और उनकी बातें किसी और को सुनाई नहीं देती, लेकिन वो बातें हमें सबसे ज़्यादा ठंडक देती है। चलिए, धन्यवाद आपका इन बातों के लिए। अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, गहरा दाग, इस फिल्म का ये गाना है। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं, रवि का संगीत है। कौन से कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

0: गहरा दाग फिल्म का ये गाना आपने सुना, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार पर फिल्म आया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि मंजू जी इतनी गर्मी है कि छाछ और मट्ठे के बिना तो हमारा काम चल ही नहीं रहा है। और इसके अलावा हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बस विविध भारती के सुरीले सफर की ठंडक है और आपका सूत्र संचालन है जो हमें बहुत ठंडक देता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गर्मी की चिलचिलाती दोपहर में जब चिलचिलाती धूप और लू मन को थका देती है, तब सुरीला सफर के सुमधुर गीत एक मरुद्यान का काम करते हैं। मानो को शीतल बयार, ठंडी हवा का झोंका तन मन को सहला रही हो, धीमी और मधुर धुने पुरानी मीठी यादों को ताजा कर रही है, जिसमें उदास दोपहर भी संगीत और खुशनुमा बन गई है। ये संगीत और गीतों का ही जादू है जो बाहर के मौसम की तपिश को भुलाकर भीतर एक खुशनुमा और भावुक मौसम का निर्माण कर देता है। बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यार के लिए। चलिए हम अपनी इबारत की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं अनामिका फिल्म का गाना। लता जी की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत है, संजीव कुमार और जया जी पर फिल्म आया गया ये गाना है।
1: आहू मिचल।

अनामिका फिल्म का गाना हमने सुना। एक हमारे साथी की ये बात है, लिखते हैं आदरणीय बहना जी, आपका ये संबोधन हमें बहुत पसंद आया। आज सुरीला सफर कार्यक्रम के गीतों का इतना सुकून मिल रहा है इनको सुनकर के, वो ठंडक भी जो मौसम, इस मौसम में कूलर पंखे उनमें भी जो ठंडक हमें नहीं मिल रही है वो विविध भारती को सुनने से मिल रही है। और एक साथी लिख रहे हैं कि ये अनामिका फिल्म का बहुत लाजवाब और सदाबहार गाना है, हमें बड़ा पसंद है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने की लाइन लिखते हुए लिखा है कि हमारे समय की आरडी बर्मन के गाने का ये बहुत ही इनका पसंदीदा गाना है उस जमाने का, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बहुत, इन्होंने नमस्कार करते हुए प्यार भरे शब्दों में इन्होंने लिखा है कि इस भरी दोपहरी और गर्मी के मौसम में नदी का किनारा और ठंडी छांव कौन नहीं चाहता। बचपन

में भैंस चराने नदी के किनारे जाया करते थे, और नदी में नहाते ही भैंस तो घंटों पानी में से बाहर ही नहीं निकलती थी, और उसे निकालने के लिए हमें तैर कर अंदर जाना पड़ता था और फिर उसकी पूंछ पकड़कर हमें बाहर लाना पड़ता था। भाई देखिए, गर्मी से जब परेशान हम केवल इंसान ही नहीं होते, पशु पक्षी जानवर हम सब भी परेशान होते हैं, और जब उन्हें सुकून मिलता है तो वो वहां से आना क्यों पसंद करेंगे भला, है ना। चलिए आप बताइए हमें कि पानी, हवा और कूलर और पंखे ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आपको इस गर्मी से ठंडक दिलाने में या निजात दिलाने में आपकी मदद करती, कौन सी बातें हैं जो और भी ज्यादा आपको ठंडक देती। ये सवाल हमने किया था, कुछ श्रोताओं की बातें हम तक पहुंचिए, लेकिन अगर आप और भी इस बारे में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। अनोखा प्यार, इस फिल्म का गाना अब आपको हम सुनवाते हैं, जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना, अनिल बिस्वास का संगीत है।

अनोखा प्यार फिल्म का गाना आपने सुना, कितनी खूबसूरती के साथ लता जी ने इस गाने को गाया है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के अनुपम सुंदर इबारत देखकर दिल के झरोके से प्रकृति के सानिध्य में अपने साजन या सजनी के साथ गुजारे हुए बेहद खूबसूरत अनुराग के पल याद किए जा रहे हैं, जिन्हें पसंद आ रहे हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कितनी शांति है, कभी नदी किनारे बैठ कर देखा है, ऐसा लगता है बहती हवा के साथ साथ मन भी कहीं दूर उड़ चला है। चांद तारों भरी निशब्द रात के साए में जब कोई बात तुम्हारे कानों को छुए तो समझ लेना कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, ऐसे में जहां कहीं भी हो चले आना। ये हमारी इबारत जो है उसमें से कुछ एक लाइन इन्होंने इसमें लिखी है। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि दिल जब प्रेम में पड़ जाता है ना, तब दिन दुनिया और इस जहां की और कोई ध्यान नहीं जाता है, बस एक मैं और एक वो। उसे सामान्य जगह बैठकर भी खत लिखने लग जाऊं तो अपने आप लगने लगता है कि नदी किनारे शीतल हवा के झोंकों के बीच लिख रहा हूं।

आज भी वो पहली मुलाकात याद है। बादल आसमान में छाए थे, बीच बीच में बिजली हल्के से चमक रही थी, दूर कहीं शायद हल्की बारिश भी हुई थी क्योंकि मिट्टी के सौंधे सौंधे खुशबू वातावरण में घुल गई थी। कितना प्यारा समा था वो। धन्यवाद। उमर कैद, इस फिल्म का गाना। इस गाने के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखा भी था, अंदाजा लगाया था उन्होंने कि आज की इबारत पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि ये गीत तो आप सुनवाएंगे। जी हाँ, यही गाना अब आपको सुनवा रहे हैं। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें, गुलशन बावरा के बोल हैं। संगीत किसका है ये आप बताइए।

उमर कैद फिल्म का गाना जिसमें संगीत सोनिक ओमी का। एक साथी लिख रहे हैं कि इस तेज गर्मी में जब ऑफिस के लिए निकलता हूं और धर्म पत्नी मुस्कुराते हुए लंच बॉक्स और चाय का थर्मस देती है तो मानो तेज गर्मी छुमंतर हो जाती है और उनकी मुस्कुराहट की ठंडक का एहसास होता है पूरे समय। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जब कोई अपना करीबी ठंडा मन से सुकून से कह दे कि मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, तो मानो दिल में इतनी ठंडक और सुकून महसूस होता है कि क्या बताएं। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि पंजाब में भी अभी गर्मी पड़ रही है तो नींबू पानी, मीठी लस्सी, गोंद कतीरा और मीठी छबील का शरबत का लंगर लगाया जा रहा है और इस तरह से ठंडक लोगों को मिल रही है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं, जो पहले अनोखा प्यार फिल्म का गाना हमने आपको सुना उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि ये गाना तो हमने पहली बार सुना है और ये विविध भारती की लाइब्रेरी में ही हो सकता है। एक साथी लिख रहे हैं कि अबोध शिशु को गोद में लेकर खेलना और उसकी किलकारी हंसी में खो जाना, ये भी मन को बहुत शीतलता प्रदान करता है। और एक हाँ एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में भी अमलतास के फूलों की तरह ये कार्यक्रम चल रहा है, हमारे विविध भारती से गानों की ठंडी बुछार हो रही है और मन को आनंद एवं सुकून मिल रहा है सचमुच।

बजे सुरीला सफर हम दोस्तों को एक डोर में माला की तरह पिरो कर रखता है। अमलतास के फूलों का आपने जिक्र किया, वो जो एक गुच्छा होता है अंगूर की तरह पीले फूलों का, वाह सचमुच बहुत तेज गर्मी में भी जब आप बाहर जा रहे हैं और अमलतास के फूलों का गुच्छा अगर आपको दिख जाए तो उसे निहारिए सिर्फ 2 मिनट के लिए, देखिए आपकी आंखों को कितना सुकून मिलता है, कितनी ठंडक मिलती है। और जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने या ईश्वर ने हमें जो ये उपहार दिए हैं इसके बदले में हम उन्हें कैसे धन्यवाद कह सकते हैं। भाई बहन फिल्म का गाना, शमशाद बेगम की आवाज़, इसमें संगीत किसका है ये आप बताइए।

भाई बहन फिल्म का गाना, इसमें संगीत है श्याम सुंदर का। एक साथी हमारे लिखने की सुबह सुबह प्राणायाम में चंद्रभेदी और शीतली प्राणायाम से अंदर तक शीतलता मिलती है। जी हाँ, ये प्राणायाम भी बहुत कारगर है। अगर आप गर्मी से परेशान हो तो इसे करके आप थोड़ी राहत इसे पा सकते हैं। और एक साथी हमारे लिखे, प्रकृति में पानी और हवा के अलावा भी कई ऐसे तत्व हैं जो हमें शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। हरी घास, नंगे पैर चलने पर शरीर की गर्मी शांत होती है। घने पेड़ सूर्य की किरणों को रोककर तापमान कम करते हैं। पौधों से वाष्पोत्सर्जन, हवा में नमी बढ़ाकर प्राकृतिक कूलिंग करते हैं। मिट्टी और चट्टाने, गीली मिट्टी, इसकी सुगंध और स्पर्श मन को शांत करता है। गुफाएं, भूगर्भीय संरचना के कारण ये स्थान हमेशा ठंडे रहते हैं। चंदन और मुल्तानी मिट्टी त्वचा पर लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है। चंद्रमा की रोशनी, चांदनी रात में मन और मस्तिष्क को शीतलता मिलती है। भोर का समय, सूर्योदय से पहले की प्रकृति सबसे अधिक ठंडी होती है। हरियाली के दृश्य, हरा रंग आंखों के तनाव को दूर करता है। पक्षियों की चहचहाट से मानसिक सुकून मिलता है। और इस तरह से इन्होंने गर्मी को थोड़ा कम कर सके, इस तरह की बातें इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिखे, खाने में खरबूजा, तरबूज, आम फ्रिज में काटकर ठंडा करके ठंडक का एहसास किया जा सकता है। पना बेल का शरबत भी शरीर को

तरोताजा रखता है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम बात करते हैं कश्मीर की कली इस फिल्म के गाने की। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, SH बिहारी के बोल, संगीत OP नैयर का। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बताइए।

शर्मिला टैगोर और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी लिखते हैं कि मंजू जी, भले मेरी लिस्ट आपकी लिस्ट से ना मिले, पर आपके गीत सुनकर दिल तो गदगद हो गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आपने जो बहुत पुराने कम सुने गाने सुनवाए हैं, सुनने तो इससे भी है ना सुरमई ठंडक हमें मिल गई। एक साथी लिख रहे हैं कि गर्मी की दोपहरिया में मिट्टी के सकोरों में पंछियों को नहाते हुए देखकर भी मन को बहुत सुकून मिलता है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं, एक सुराही का पानी सबसे अधिक ठंडक देता है, तो उसे भी पीकर के आप अपने दिल दिमाग को ठंडक पहुंचा सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, हमारी आखिरी लाइन थी कि याद किया है, ठीक है। तो चलिए, पतिता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार और लता जी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, देव आनंद और उषा किरण पर फिल्माया गया ये गाना है।

दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, लेकिन आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, प्यारी प्यारी बातें, और उसमें कई बातों में तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी छुपी हुई थी, जानकारी छुपी थी, तो आपकी इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब कार्यक्रम का सफर यहीं तक है, और मुझे यानी कि मंजू द्विवेदी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, बच्चे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बचपन में उनकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, रूठना मनाना, उनके मासूम सवाल बहुत प्यारे लगते हैं। उनकी नटखट जिद भी बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि उस जिद में प्यार, स्नेह, अपनापन भरा होता है। जिस तरह कुम्हार गीली मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह माता पिता के द्वारा स्नेह सिंचित बच्चों का मन भी धीरे धीरे सुंदर रूप लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है और किशोरावस्था और युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, उनके भीतर अपनी सोच, अपनी पसंद और अपनी पहचान बनने लगती है।

आजकल बच्चों और युवाओं में क्रोध और जिद की अधिकता हो रही है। हर बात पर उनकी ये जिद होती है कि वो ही सही हैं, बाकी सब गलत। बड़ों की बातों पर विश्वास ना करते हुए पुराने जमाने की सोच बताकर नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी बात मनवाने की जिद और बड़ों की बातों पर असहमति उनकी बढ़ने लगती है। यही वो समय होता है जब वो खुद को समझे जाने की अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे सवाल उनके जहन में होते हैं और आत्मसम्मान उन्हें बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन शब्दों में उसे वो व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए उनका व्यवहार बदलता हुआ दिखाई देता है। जबकि भीतर से वो बहुत अधिक स्नेह, प्रेम, विश्वास और अपनापन खोज रहे होते हैं, अत्यधिक ऊर्जा से भरे होते हैं।

अक्सर जिद और गुस्से का कारण केवल बिगड़ना नहीं होता और बच्चों और युवाओं की ये जिद अचानक नहीं आ गई, बल्कि आजकल के माहौल की ही देन है, जहां ज्ञान और जानकारी तो बहुत है लेकिन अनुभव बहुत कम। और भी बहुत से कारण हैं, जैसे करियर का प्रेशर, मन की उलझने, अकेलापन और उनकी बात ना सुने जाने, ना समझे जाने की भावना आदि आदि। ये वो समय है जब इन्हें प्यार और स्नेह की बहुत अधिक जरूरत होती है और ज्यादातर माता पिता इन्हें तमाम कारणों की वजह से ये समय नहीं दे पाते। यदि बच्चों युवाओं को समय निकालकर धैर्य से उन्हें सुना जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए और प्यार से सही गलत क्या है ये बताया जाए और उनसे बातचीत किया जाए, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। बच्चों और युवाओं के जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए परिवार और समाज को आगे आना होगा, जिससे उन्हें ये एहसास न हो कि हम अकेले हैं। उनके भीतर स्नेह और सहिष्णुता का बीज बोना होगा।

महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी।

0: उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
2: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
3: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
4: India has recently launched
5: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
4: इट्स लीडरशिप इन जेनरिक मेडिसिन।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त

0: समाप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
3: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
4: चाय, ये चाय।
5: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत की हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत

0: आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है बड़ा आदमी। इस फिल्म का महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है चित्रगुप्त का।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और गीता दत्त की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना। संगीत एस मदन का, फिल्म का नाम है बंटवारा।

0: दौर के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आशा भोसले और मुकेश की आवाजों में भाभी की चूड़ियां, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत सुधीर फड़के का।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, गांवों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में राजेंद्र कृष्ण।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दाग फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब आपको सुनवाते हैं घराना फिल्म का गाना। मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गाना। आप इस गीत को सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, कीजिए बस कुछ पल का इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को और मेरे सामने बैठी हैं आरती, आपको नमस्कार। कैसी हैं आप?
2: चंचल जी, और साथ ही सभी सखियों को, सभी सखाओं को, श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और कैसी हैं पूछ रही हो इतनी गर्मी में? बस ऐसा लग रहा है कि आधे हो गए गर्मी में पिघल पिघल के।
1: भी देखिए, आलम तो गर्मी का ऐसा है कि शायद देश का कोई कोना इससे अछूता नहीं होगा, सिवाय कुछ जो बर्फीले प्रदेश हैं जहां अभी भी राहत के लिए लोग जा रहे हैं घूमने फिरने,
2: लेकिन इस वजह से वहां पे भी गर्मी होने शुरू हो गई
1: जी।
2: क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसी जगहों पे भी गर्मी पड़ने लगती है।
1: लेकिन अपने ही शहर में आप हैं जहां रह रहे हैं और गर्मी में आपको कहीं बाहर निकलना हो तो लू से बचाव के तो बहुत सारे इन दिनों हम तरीके बता ही रहे हैं और कहीं कई बार हमने डॉक्टर से भी बातचीत सुनवाई है, लेकिन आंखों की देखभाल कैसे करनी, क्योंकि आंखों पर भी जो तपती धूप है, चिलचिलाती धूप है, इसका बहुत बुरा असर
2: इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहे हैं आंखों में।
1: हाँ,
2: तो बहुत ध्यान रखने वाला है, तो इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं।
1: तो और
2: आप घरेलू उपाय क्या अपनाते हैं या आप क्या क्या चीजें करते हैं तो आप हमें बताइए।
1: और घरेलू उपचार के अलावा कुछ खास बातें, जैसे घर से निकलते वक्त सर पे कोई कपड़ा लेना, कैप पहन लेना, आंखों पर काला चश्मा लगा लेना, ये उपाय तो सभी करते होंगे। इसके अलावा अगर आंखों में कोई ईचिंग इरिटेशन हो गया तो क्या घरेलू उपाय तुरंत किए जा सकते हैं, इसके बारे में जरूर हमारे साथी लिखकर बताएंगे। और कुछ चीजों से डर होता है, फोबिया होता है।
2: फोबिया पता नहीं हर एक को कुछ ना कुछ होता ही है, जैसे कि हमें भी है। हर एक को होता है।
1: अभी हमारे क्या फोबिया, हम इसके बारे में बाद में करेंगे बात, लेकिन हमारे सुनने वालों को किस तरह का फोबिया है भाई,
2: वो उन्हें बताएं अपना।
1: हाँ,
2: बिल्कुल छुपाइए नहीं, बताइए ईमानदारी से पूरी अपनी अपनी बात, क्योंकि सभी को होता है कुछ ना कुछ किसी में किसी चीज का डर, तो आप बताइए।
1: इसके अलावा आज बात होगी कहानी पद्मश्री की, में राही बाई सुमा पोपरे जो महाराष्ट्र की बीज माता, इनकी सीड मदर कही जाती हैं, इनके बारे में। और बहुत खास दिन है भाई, चाय दिवस, चाय की चुस्कियां लेते लेते बहुत सारे काम है ना खत्म हो जाते हैं, कब हो जाते पता ही नहीं पड़ता। और जब भी हम
2: देश ऐसा यही है भारत जहाँ

0: इतनी 50, आप सोच लीजिए कि गर्मी, इतना तापमान चल रहा है, उसके बाद भी उनको क्या चाहिए? चाय
1: चाय
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: चाय के बिना गुजारा नहीं है।
1: हाँ, चार दोस्त बस मिलकर बैठे तो वहां एक पांचवी चीजें होती है, वो चाय
0: चाय
1: होती है।
0: होती है।
1: दो लोग बैठे तो चाय होगी, अगर आप अकेले भी बैठे हैं तो
0: तो भी
1: आपका
0: चाय
1: साथी अगर
0: होगी।
1: चाय का प्याला है तो बस। और बड़े से बड़ा होटल हो या छोटी सी एक टपरी हो, हर जगह चाय की चुस्कियां जो हैं वो
0: चलती
1: अपना
0: रहती है।
1: आलम बांध देती हैं। तो भाई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसके बारे में तो थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन एक और बड़ा खास दिन है, संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, इसके बारे में बात भी
0: इसके बारे में
1: होगी।
0: बात करेंगे, और साथ ही हम चाय के बारे में, आप भी बताइए कि आप किस तरीके से अपनी महफिल जमाते हैं चाय की प्याली के साथ में।
1: और जब संवाद की बात हो रही है तो संवाद यानी कि बातचीत के लिए भी चाय जरूरी होती है। संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का जो दिवस है, ये जनता को इसके महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए और विश्व की बहुत सी समस्याओं का समाधान करने के लिए, संसाधनों को जुटाने और मानवता की उपलब्धियों का जश्न मनाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए आयोजित किया जाता है।
0: जी, और बिल्कुल ऐसे बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का अस्तित्व संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से भी पहले का है, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र ने इन्हें एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण के रूप में अपनाया है, इसीलिए दुनिया भर में इन संयुक्त राष्ट्र दिवसों को हम मनाते हैं।
1: तो आज हम मना रहे हैं संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता का दिवस, और साल 2001 में यूनेस्को ने इस दिन को अपनाया था, इसकी घोषणा की थी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2002 में इसका प्रस्ताव रखा और हर साल 21 मई को इसे मनाने की आधिकारिक शुरुआत की गई फिर।
0: जी, और इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया की संस्कृतियों को समृद्धि का जश्न मनाना और शांति बनाए रखना और सतत विकास को बढ़ावा देना, ताकि सभी अलग अलग समाजों के बीच आपसी संवाद को प्रोत्साहन मिल सके।
1: बिल्कुल, ये दिन दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं, कलाओं, जीवन शैलियों को सम्मान देने और उनका जश्न मनाने के लिए होता है, और इस दिन शांति और विकास संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में संघर्षों को कम करने और संवाद को बढ़ावा देकर दुनिया भर में जो विकास के लक्ष्य हैं, संस्कृति की क्षमता है, उसको उजागर किया जाता है।
0: जी हाँ, और अभी समय हो रहा है, इतना हम लोगों ने इतनी बातें करी, तो एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।

0: भाई बात बन जाती है, कुछ तुमने कहा कुछ हमने कहा और इसी तरह से संवाद होता है, बात बन जाती है और आगे बात को हम बढ़ा रहे हैं राही बाई सोमा पोपरे की बात के साथ में, जिन्हें महाराष्ट्र की सीड मदर या बीज माता कहा जाता है और सह्याद्री पर्वतमाला के बीचों बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में, जिसे पहले अहमदनगर नाम से हम जाना करते थे, वहीं पर स्थित कोंभालने की ढलानों पर पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में बसे स्थान पर महिलाएं दोपहर भरी भरी दोपहर में भी एक साथ मिलकर काम करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर राहीबाई सोमा पोपरे का अपना यहाँ पर बीज भंडारण है। राहीबाई महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले आदिवासी ब्लॉक के कुंभले गांव में रहा करती थी। मूल रूप से महादेव कोली आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखने वाली उनका राहीबाई का जन्म एक बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ, जिसमें उनके 5 भाई बहन थे। उनका जन्म एक किसान परिवार में हुआ था और आर्थिक हालात ठीक नहीं होने के कारण वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। उनका अधिकांश बचपन अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी करते हुए बीता और जब वो सिर्फ 12 साल की ही तभी थी तभी उनका विवाह हो गया था और उसी गांव के समुदाय के एक किसान थे जिनके साथ उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उन्होंने अपने पति के साथ खेती का काम जारी रखा और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता भी उन्होंने हासिल कर ली।
1: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि महज 12 साल की उम्र में राहीबाई का विवाह हो गया था उनका, तो वो उसी गांव के समुदाय के किसान थे और शादी के बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ खेती जारी रखी और समय के साथ साथ विभिन्न फसलों की खेती में सराहनीय दक्षता हासिल कर ली थी उन्होंने। और शिक्षा से वंचित होने के बावजूद राहीबाई का दिमाग बहुत तेज था और उनकी दृष्टि पैनी थी। खेती करते करते उन्हें एक समय ये एहसास हुआ कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों का उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन खेती की लागत भी साथ साथ बढ़ती जाती है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों से उगाई गई जो फसलें होती हैं उनका सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। और जब राहीबाई अपनी बीज बैंक के दरवाजे को खोलती हैं, जहाँ वो बीज इकट्ठे करती हैं, जमा करती हैं, तो अंदर जो होती है वो गौरैया रहती है।
0: क्या बात है?
1: तो गौरैया उड़ती है तो राहीबाई कहती है कि पक्षियाला कलता काय खाच अनि काय नहीं, मनसाला एकता ज्ञान आसुन पण त्याला हे समझते नहीं। यानी पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है लेकिन मनुष्य हमारे सभी ज्ञान के बावजूद समझने में विफल रहते हैं।
0: बिल्कुल, राहीबाई पोपरे जो हैं वो बाजरे की एक देसी किस्म को बोने के लिए अपने अनुभव बयान करते हुए बताती हैं कि पहले 3 साल तो अच्छी फसल हुई, पक्षी खेतों में आते, दाना चुगते और अनाज में कुछ रुचि दिखाते, लेकिन 4th साल कुछ ऐसा हुआ जो वाकई अद्भुत था। पंछियों के झुंड खेतों में उतरे और पूरी फसल चट कर गए। और हैरानी की बात ये थी कि इन्होंने अपने आसपास के बाजरे के खेतों में जिनमें आधुनिक हाइब्रिड अनाज बोए गए थे बिल्कुल उनको छुआ भी नहीं। पक्षियों की पसंद बिल्कुल साफ थी कि उन्हें बाजरा पसंद नहीं था जो कि सख्त हो, कड़वा हो और कम पौष्टिक हो। और दूसरी तरफ जो देसी बीजों से उगाई गई फसल थी स्वाभाविक रूप से बहुत मीठी थी, मुलायम थी, पंछियों को भी वही मन भाई।
1: बिल्कुल, और वो याद कर क्योंकि पक्षी जो होते हैं वो उनको एहसास होता है कि कौन सी हम किस तरीके की जो फसल है वो किस तरह से उगाई जा रही, मिलावटी बीजों से उगाई गई है या असली देसी बीजों से उगाई गई है। तो याद करती है कि हम अनाज को हथेलियों में मसल कर ताजा ही खा लेते थे। इसी के साथ उन्होंने धीरे से एक बर्तन उठाया और बीज बैंक में राख में संरक्षित वॉल या घेवड़ा कहते हैं इसको के बीजों का एक मुट्ठी भर हिस्सा निकाला। और कहती हैं कि वो ये सिर्फ बीज नहीं है, ये वो कहती हैं पीढ़ियों की विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अपनी सूझबूझ और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने खेत पर तालाब और एक पारंपरिक जलकुंड बनाए। पहले अनुत्पादक समझी जाने वाली 2 एकड़ भूमि अच्छी उपज देने लगी और उस पर उगने वाली सब्जियों से उन्हें आय भी होने लगी। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र ग्रामीण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संस्थान में वहां से उन्होंने मुर्गी पालन में सहायता प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एक नर्सरी भी विकसित की और समय के साथ साथ

0: पारंपरिक पैदावार से 30% तक अधिक होने लगी। अपने अनुभव के आधार पर वो विश्वास पूर्वक कह सकती हैं कि देशी फसल की किस्में जो होती हैं न केवल सूखा और रोग प्रतिरोधी होती हैं बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर हैं और मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखती हैं, क्योंकि उन्हें रासायनिक उर्वरकों और अत्यधिक पानी की जरूरत नहीं होती है। और देशी किस्मों को बचाने की आवश्यकता को पहचानते हुए राहीबाई ने कई तिलहनों के अलावा चावल की 15 किस्मों, अरहर की 9 किस्मों और सब्जियों की 60 किस्मों सहित कई देसी फसलों का संरक्षण किया है। उन्होंने समुदाय को सलाह दी कि कृषि रसायनों से दूर रहिए। राहीबाई कहती हैं, हाइब्रिड फसलों से बने भोजन का सेवन करने के बाद ग्रामीण अक्सर बीमार पड़ रहे थे।
1: बिल्कुल, और अपनी सीखी हुई सारी बातों को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद राहीबाई अब किसानों और छात्रों को बीज कैसे चुनना चाहिए या मिट्टी की उर्वरकता को किस तरह बढ़ाना चाहिए, इसकी तकनीक और कीट प्रबंधन, इन सभी चीजों का प्रशिक्षण वो देती हैं। वो किसान को देसी फसल उगाने के लिए पौधे उपलब्ध करवाती हैं और उन्हें देसी किस्मों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन भी देती हैं। उन्होंने देसी बीजों के संरक्षण के लिए कलसुबाई परिसर बरियानी बियानी संवर्धन समिति इस नाम से एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। उनके अथक प्रयासों के लिए उन्हें बावलेश्वर स्थित कृषि ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ बीज रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 2015 में 2014-2015 में उन्हें BIF का सर्वश्रेष्ठ किसान सम्मान भी प्राप्त हुआ।
0: जी बिल्कुल, और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक ने उन्हें बीज माता की उपाधि दी थी। वो BBC की 100 महिलाएं 2018 की सूची में शामिल 3 भारतीयों में से एक हैं। उन्हें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया।
1: उन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है और किसानों को इस शर्त पर उन्होंने वहां बीज दिए जाते हैं कि उधार लिए गए बीजों को दुगनी मात्रा में वो लौटा देंगे, यानी कि किसी तरह का ब्याज नहीं देना है, ब्याज के रूप में आपको दुगना बीज दे देना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और राहीबाई को धान, हायसिंथ बीन, बाजरा, दालें और तिलहन सहित 17 अलग अलग फसलों की 48 स्वदेशी किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौरव प्राप्त है।
0: बिल्कुल, और हजारों किसानों और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रही राहीबाई को 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: और अब सुनते हैं एक बड़ा प्यारा सा।

0: इस समय तो खेतों की हालत यही है कि धूप से वो जल रहे हैं, और कहीं बादल का एक टुकड़ा आके थोड़ी सी छांव ले आता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि सुकून दे गया है।
1: सच में
0: और इन दिनों बहुत सारी नजरें बस निहार रही हैं कि वो काले बादल का कोई टुकड़ा है जो बरस जाए। हालांकि बारिश आने में थोड़ा सा भी समय बाकी है, लेकिन अगर अभी हमें सुकून चाहिए तो गर्मी में भी एक गर्म चाय की
1: गर्म
0: प्याली
1: चाय
0: अगर
1: बिल्कुल,
0: मिल जाए।
1: चाय मिल जाए ना तो बस ऐसा लगता है कि नहीं, अगर चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है कि सर में दर्द अपने आप ही महसूस होने लगता है। मतलब ये सोच है हमारी, असल में ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन अपने
0: जी,
1: दिमाग को हम ऐसे सोचने में मजबूर, चाय नहीं पिए इसीलिए सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं
0: और
1: पिए इसीलिए कुछ काम सही नहीं हो रहा है।
0: कुछ लोगों को आदत होती है काम करते समय बीच बीच में एक टी ब्रेक लेने की, थोड़े
1: हाँ
0: थोड़े अंतराल पे अगर उन्हें चाय ना मिले तो सच में उनका सर दर्द होने लगता है। और चाय दुनिया के सबसे पुराने पेय पदार्थों में से एक है। आरती, हमारे सुनने वाले भी इस बात को जानते होंगे, पानी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा सेवन किया जाने वाला कोई पेय पदार्थ अगर है तो वो है चाय। और दुनिया भर में एक बात बड़ी सामान्य सी मानी जाती है, और हिंदुस्तानियों की तो चाय पीने की आदत जो है
1: नहीं,
0: ना
1: अगर
0: वो
1: कहीं
0: वर्ल्ड
1: गए
0: फेमस
1: आप,
0: है।
1: अगर आप किसी के घर गए चंचल जी, अगर
0: हाँ
1: आप कहीं किसी के घर में जाते हैं तो अगर उसने पानी दे दिया, कोल्ड ड्रिंक दे दिया, आपको खाने को सब कुछ दिया, लेकिन
0: जी
1: आप घर गए उसने मुझे चाय नहीं पिलाई,
0: भाई,
1: बस चाय नहीं पिलाई तो आपको शिकायत हो जाएगी।
0: कुछ लोग कहते हैं कि ये एक लत होती है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जिंदगी की खुराक है। लेकिन बता दें कि मेहमान नवाजी का भी प्रतीक मानी जाती है चाय, और अपना इसका एक खास दिन भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं 21 मई की, आज के दिन की, जिसे अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे के बारे के नाम से भी हम जानते हैं। और इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है, और सभी चाय प्रेमी अपना पसंदीदा पेय चाय उसका जश्न मनाने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं। दुनिया भर के बहुत सारे समुदाय हैं जहाँ चाय का गहरा सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। ये एक बहुत व्यापक रूप से सेवन किया जाने वाला पेय पदार्थ है। आतिथ्य, परंपरा, सामाजिक जुड़ाव, इन सब का प्रतीक भी हम इसे मानते हैं।
1: बिल्कुल
0: और चाय पर जो शोध किए जाते हैं ना वो भी बहुत हैं, जो बताते हैं कि भाई करीब हर सेकंड में 25,000 कप लोग चाय पी लेते हैं, यानी कि अगर पूरे दिन में अगर से हम जोड़ें तो 1 अरग से भी ज्यादा चाय एक दिन में पी जाती है।
1: सच में बहुत ज्यादा,
0: और
1: बहुत
0: पौराणिक कथाएं हैं ना वो बताती हैं कि चीन के सम्राट शेन होंग ने चाय की खोज तब की जब एक बार एक पेड़ से कुछ पत्तियां उड़कर उनके उबलते हुए पानी में गिर गईं, और जब उन्होंने उस उबलते हुए पानी को पिया तो वो जो गर्म पेय था ये उन्हें बहुत ही पसंद आया, और तब से बस चाय का जो है इजाद हो गया, ऐसा कहा जाता है।
1: और चंचल जी ऐसा है ना कि एक प्यारी चाय अगर दोस्तों के साथ हो
0: हाँ
1: तो क्या होता है, तो मतलब ऐसा समय बनता है ना कि बस लगता है कि अब ये समय जो है वो खत्म ना हो, बस चलता चला जाए।
0: जहां लगता है कि हम सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट के लिए मिले हैं
1: हाँ
0: ना, वो 10 मिनट कब आपके 1 घंटे में बदल जाएंगे
1: बिल्कुल,
0: ना।
1: अब वो चाय की चुस्कियां चलती रहती हैं,
0: जी
1: चलो एक बार और हो जाए, एक एक प्याली और हो जाए। तो एक प्याली चाय अगर अपने अपनों के साथ हो तो घर मुस्कुराहटों से भर जाता है,
0: बिल्कुल सही
1: और
0: कहा।
1: एक प्याली चाय अगर रिश्तेदारों के साथ हो तो सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, जिससे समस्याएं, लड़ाई झगड़े, सबका हल
0: जी
1: निकल आता है वहीं बैठे बैठे। और जो एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर मिल जाए, या जैसे मिल जाए अगर समय, बात करते करते तो हमारी जो बातें वो और स्वादिष्ट हो जाती हैं, और फाइलें अगर हम काम कर रहे हैं फाइलों पे तो फाइलें निपट जाती हैं फटाफट।
0: और जब पुराने दोस्त मिलते हैं उनके सामने अगर एक चाय की प्याली हो तो पुराना जितना समय साथ गुजारा हुआ है उसे हम एक बार फिर से जी भर के जी लेते हैं। और जब दिन भर की पीड़ा, चिंता, थकान, इसके बाद एक चाय की प्याली मिल जाती है ना, तो उसके एक एक घूंट में जो सुकून मिलता है आरती, वो

0: शब्दों में शायद हम बयां भी नहीं कर सकते। और चाय अभी से नहीं, सदियों से बहुत तरह तरह के स्वाद से और भीनी भीनी सुगंध से हम सबका मन लुभाती रहती है।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा बहुत से शोध कहते हैं कि चाय बनाने और पीने, खाली पीने नहीं, बनाने और पीने की प्रक्रिया मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और आराम पाने में सहायक होती है। और भारतीय संस्कृति में चाय महज एक पेय नहीं है, बल्कि एक एहसास ताजगी का प्रतीक है, सामाजिक मेलजोल का सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और इतना ही नहीं, चाय में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो तनाव कम करने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं।
0: भाई चाय की बातें हम करते रहेंगे, लेकिन चाय के अलावा सुकून गीतों में भी होता है, तो एक
1: बिल्कुल
0: गीत भी सुन लेते हैं।

0: हम भी चाय जरूर पियेंगे कार्यक्रम खत्म होने के बाद में.
1: बिल्कुल पीते ही हमेशा.
0: हाँ हाँ. और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है और फिर हम बैठकर चाय लेकर थोड़ी बहुत गपशप ना करें, बातें ना करें, तो भाई उस चाय को कितना तौहीन हो जाएगी.
1: सम्मान करना जरूरी है भाई.
0: और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये चाय की सांस्कृतिक विरासत, स्वास्थ्य लाभ और आर्थिक महत्व का के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है, उसके अवसर बताने के बारे में है. साथ ही इसके उत्पादन को खेत से लेकर प्याले तक टिकाऊ बनाने की दिशा में काम करने का भी एक दिन है, ताकि लोग संस्कृतियां और पर्यावरण और इसके आने वाले लाभ के बारे में पीढ़ियों तक लोगों को पता लगे. खेत से लेकर कब तक कुशल, पारदर्शी और टिकाऊ मूल्य श्रृंखलाएं और लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए सुनिश्चित करने के लिए ये चीजें महत्वपूर्ण हैं.
1: जी. और अभी कुछ साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था, पर अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर माजरा क्या है, बदल क्यों हो गया आखिर. तो

0: हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका, मतलब इसके पीछे भारत का हाथ है बेटा, ये तो हम कहेंगे।
1: चाय की बात और भारत की बात ना, ऐसा कैसे होगा?
0: इसमें तो हम भारत का हाथ कहेंगे, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 15 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी।
1: लेकिन हाँ, इसे लेकर भारत ने एक बड़ी पहल की। 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया, और अच्छी बात तो ये हुई आरती कि इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया, और इसे आधिकारिक तौर पर 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया, और पहली बार 2020 में विश्व स्तर पर इसे मनाया गया था। ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं ने भी हमें लिखकर पहुंचाई।
0: हाँ, बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स किए इस पे। और चाय का उत्पादन यूं तो कई देश करते हैं, लेकिन भारत इस मामले में दूसरे पायदान पर आता है। और मजे की बात यह है कि चाय के उपभोग यानी कि इस्तेमाल के मामले में भारत पहले स्थान पर है, और रहना ही चाहिए था। भारत में चाय की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से आप आसानी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन, लगभग 30% चाय की खपत जो है उत्पादन की, वो भारत में ही होती हो जाती है।
1: और दुनिया भर में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है एशिया के जो अन्य देश है उनमें होता है, जिसमें भारत, चीन, नेपाल, श्रीलंका और केन्या जैसे कई देश शामिल हैं। इन देशों में चाय पीना रोजाना दिनचर्या से लेकर समारोह अगर हैं तो वहां भी इनका प्रचलन बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि चाय आसानी से और बेहद कम लागत में उपलब्ध हो जाती है। अब अगर हमें भी बातचीत करनी हो तो जरूरी नहीं हम बहुत बड़े होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बैठे, एक टपरी पर भी हम आराम से 5-6 रुपए की एक चाय की छोटी प्याली लेकर
0: स्वादिष्ट मिलती है,
1: और वहां घंटों बैठकर बतिया सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हालांकि चाय के भी कई रूप हैं, और हर रूप में इसका स्वाद भी अलग है। अलग अलग क्षेत्रों में चाय बनाने के तरीकों में भी भिन्नताएं हैं। कोरोना महामारी के दौरान में कई ऐसे लोग जो चाय नहीं पीते थे, लेकिन वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, लौंग, इलायची वगैरह सब चीजें।
1: और भाई चाय के चक्कर में तुम ये ना भूल जाओ कि इस अंतराल का समय हो चला है।
0: हाँ, मैंने देख लिया आपको, आप मुझे कह रही हैं कि अब बस करो, अब बस करो।

0: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और आपके साथ हाजिर हैं हम सखियां, मैं चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और भाई हम बात कर रहे थे ना अदरक लौंग इलायची वाली अंदाज की।
1: आरती अंतराल का समय हो गया, चाय टी टाइम हो गया है।
0: हाँ तो अब समय है एक प्यारा सा कमेंट पढ़ने का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चाय एक तृप्त करने वाला पेय है जो भोजन के बीच भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। चाय के जो मसाले हैं उन्हें चाय के साथ मिला देने से पॉलीफेनॉल का अच्छा स्रोत मिलता है जो रक्त में वसा का स्तर नियंत्रित करता है और धमनियों में जमाव को रोक देता है।
1: बिल्कुल, बस एक बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के तुरंत बाद चाय मत पीजिए, और चाय पीने से पहले आप एक गिलास पानी पी लेंगे तो जो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि हाँ चाय एसिडिटी कर रही है तो वो चीज नहीं होगी। अब हम श्रोता का अपने कमेंट ले रहे हैं। तो हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि सिर्फ आज ही के दिन क्यों, हम तो चाय दिवस हर दिन हर सुबह शाम मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे, चाय पीते आए हैं और पीते रहेंगे। सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होने के बाद आज की चाय हमारी ओर से आप सभी को पिलाई जाएगी। जो चाय से करते हैं प्यार वो इस आमंत्रण से कैसे करें इनकार। इस बात पर गुजराती मुहावरा चाय चा बाकी बीजा पीना वगड़ा नवा।
0: क्या बात है,
1: क्या बात।
0: और जैसे तुम बता रही थी ना बहुत सारे जो फ्लेवर डाले जाते हैं स्वाद डाले जाते हैं जिसमें अदरक लौंग दालचीनी काली मिर्च, तो बहुत सारे लोग इसे इम्यूनिटी बूस्टर झिंगर टी कहते हैं, कुछ मसाला टी कहते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले लोग हैं वो दूध वाली चाय ना पी के ब्लैक टी या ग्रीन टी, हरी चाय जिसे कहते हैं, उसे पीना पसंद करते हैं। लेकिन भारत में अधिकांश लोगों की जो पसंद है वो दूध वाली चाय ही होती है, और कड़क चाय जिसे हम कहते हैं ना वो पीना पसंद करते हैं।
1: अगर आप चाहते हैं कि चाय जैसे हमें लगती है दूध वाली, बहुत ज्यादा दूध मत डालिए उसमें, अगर आपने एक छोटा चम्मच

0: दूध भी डाला ना तो भी चलेगा, तो भी आपको वो नुकसान नहीं करेगी।
1: जी
0: बहुत ज़्यादा दूध डालने से थोड़ा सा एसिडिटी का परेशानी कर देती है, तो आप इस तरह से बना के पी सकते हैं भाई। चाय तो चाय है, और एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि 1 कप चाय का महफिलें जमा देता है और कई मसले जो है वो सुलझा देता है। और हाँ, मेरे जैसे चाय के दीवाने पति से 1 कप अदरक इलायची वाली चाय से धर्म पत्नी की कई फरमाइशें भी पूरी करा देता है। इस साल इंटरनेशनल टी डे का विषय है चाय की उपयोगिता बनाए रखना। मुबारक हो सबको अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। मैं तो सिर्फ चाय का दीवाना दीवाना दीवाना, मतलब इनकी वाइफ जो है वो इनसे सब अपने जो चीजें हैं कि भाई साड़ी लानी है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो करवा लेती
1: चाय
0: है।
1: के प्याले भी करवा लिए
0: एक
1: जाते
0: कप
1: हैं।
0: चाय मिल जाने पे
1: अगले श्रोता का कहना है कि चाय हमें धैर्य सिखाती है, धीरे धीरे उबालना, खुशबू फैलाना, फिर दिल को सुकून देना। शायद इसीलिए कहा जाता है चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि एक भावना है। एक और बड़ा अच्छा सा संदेश है जिसपे लिखा गया है, सुनो तुम ना बड़े गजब हो, बिल्कुल चाय की तरह मेरी तलब हो। सांवला है रंग, थोड़ा कड़क मिजाज है, मेरी खुशियों की चाबी बस चाय का प्याला है।
0: ओहो,
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है भाई।
1: लिखने का अंदाज ही बड़ा
0: हाँ,
1: प्यारा है
0: सच में।
1: इनका।
0: एक और मैच होता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर बशीर बद्र का, मतलब एक जो शायर है उनका एक बेहतरीन शेर है कि हंस पड़ी शाम की उदास फजा, इस तरह चाय की प्याली हंसी। सच ही तो है कि चाय की एक प्याली से उदास शाम भी हंस पड़ती है। चाय तो प्रेम है, लेकिन इन दिनों वजन ज्यादा होने की वजह से चाय पीना हमने छोड़ दिया है। सारा दोष भयंकर पड़ रही गर्मी पर डाल दिया है।
1: तो वही चलिए, गर्मी में सुकून देते हैं, राहत देते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

0: भाई हर दर्द की दवा होती है एक कप चाय का प्याला। और हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि सुबह की शुरुआत हो या दोस्तों की महफिल, चाय भारतीय जीवन शैली का सबसे पसंदीदा हिस्सा बन चुकी है। हर घूंट ताजगी और स्वाद का एहसास कराती है।
1: बिल्कुल। और हमारे दीक्षिता जो लिखते हैं कि अभी भी हम चाय पीते पीते ही मैसेज लिख रहे हैं, मीठे नीम पुदीना और तुलसी पत्ती वाली चाय बनाती श्रीमती जी ने आप दोनों बहनों को 2 कप चाय भेजी है, हमने बहुत टेस्टी और शरीर के फायदेमंद ये जो चाय है वो भयंकर गर्मी में वो भेजी उन्होंने। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो इतनी गर्मी में हमारे लिए चाय बना रही है।
0: हमारे श्रोता साथी लिखते हैं कि हर घूंट में घुला अपनेपन का प्यार, चाय की खुशबू से महके हर घर द्वार, थकी हुई सुबह को देती नई मुस्कान, चाय दिवस पर सभी को मेरा स्नेहिल नमस्कार। तो
1: वाह,
0: आपको भी नमस्कार और आपको भी चाय दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमारे घर में, मेरे घर में सुबह की जो पहली चाय होती है वो मैं ही बनाता हूँ, और इस बहाने मेरी वाइफ को सब्जी बनाने का थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है और हेल्प हो जाती है, और धीरे से पढ़ना उन्होंने कहा है, मीठी मीठी बातें और शरारतें भी हो जाती हैं। अरे क्या बात है।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों की सुबह रजाई में पैर सिकोड़ कर सोया हुआ बचपन, और कोयले के लाल अंगारों पर केतली से उड़ती सुगंधित चाय की नींद को तोड़ती हुई सीधे पेट में पहुंच जाती, और बिना कुछ सोचे समझे चीनी मिट्टी की पेट के साथ वाला कप और उसके साथ घी के बने हुए नमकीन कुरकुरे पराठे के साथ सर्दियों की सुबह की शुरुआत होती थी। और हमारे लिए बचपन की जो चाय और पराठे की दुनिया थी ये सबसे लजीज पेय हुआ करते थे। चाय सिर्फ एक चाय नहीं बल्कि हमारे समाज में सम्मान सूचक भी। बिल्कुल सही बात है, सर्दियों में अगर चाय का प्याला मिले तो बात ही क्या है, इस गर्मी में कोई चाय नहीं छोड़ता।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि चाय सिर्फ एक पेय नहीं है बल्कि भारत की आत्मा है, जो सुकून, गहरी बातचीत और नए रिश्तों की शुरुआत के प्रतीक है। चाय के साथ लोगों के गहरे जज्बात जुड़े होते हैं। एक हाथ में मेरे चाय का कप है, एक हाथ में मेरे हाथ में मेरे हाथ तेरा हाथ है, हाथों को तलब है हाथों की और दिल को तलब है साथ की।
0: देखो भाई संदेश बहुत सारे हैं लेकिन चाय विषय ही ऐसा है कि चाय छोड़ना तो छोड़, हम उस विषय को ही नहीं छोड़ पा रहे। हम आगे बढ़ते हैं और फोबिया कैसे कैसे होते हैं इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फोबिया किसी चीज या स्थिति के प्रति एक अत्यधिक तर्कहीन डर होता है जो अक्सर वास्तविक खतरे से कहीं ज्यादा होता है। ये एक प्रकार की एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकार कहा जा सकता है। जैसे कि एक्रोफोबिया, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है, ये भी एक फोबिया हो सकता है। और बताओ कौन कौन से फोबिया होते हैं।
1: फोबिया होते हैं जैसे कि किसी को किसी जगह बंद हो गया, जैसे लिफ्ट में नहीं जाना चाहता कोई,
0: हाँ।
1: तो एक छोटी सी जगह में बंद हो जाने का डर होता है,
0: हाँ।
1: है ना, ये भी फोबिया होता है। किसी को भूतों का डर होता है, तो बहुत से सारे फोबिया ही होते हैं। आपको अगर किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है अनावश्यक तौर पर तो वो फोबिया ही है।
0: जैसे साइनोफोबिया, कुत्तों का डर होता है। ग्लासोफोबिया, सार्वजनिक रूप से पब्लिकली जो बात करने का, यानी कि सबके बीच में आकर बात करने का, उन्हें कुछ कहने का जो डर है,
1: हाँ।
0: उसे कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: हीमोफोबिया होता है खून देखने से डर। कई बार लोगों को होता है ना कि कहीं अपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अस्पताल में गए, हमारे कोई परिचित है, यहां तक कि अगर आप सिर्फ ब्लड देने भी गए जांच के लिए तो वो इतना सा खून भी कई लोगों से देखा नहीं जाता, वो फोबिया होता है सिर्फ उनका।
1: बिल्कुल। और एक होता है ट्राइपैनोफोबिया जो कि सुई या इंजेक्शन से डर लगता है जिसमें आपको, और सोशल फोबिया जैसे कि सोशल जो भी आप बाहर जाते हैं तो सोशल जो एंजाइटी होती है आपको वो होता है, और बहुत से लोगों के बीच में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो भी एक तरीके का फोबिया है। और एगोराफोबिया होता है वो उस स्थानों या स्थितियों का डर होता है जिनसे बचना मुश्किल हो सकता है या जहां फंस जाने पर मदद नहीं मिल सकती है। तो इसमें पीड़ित जो होते हैं वो खुली जगहों पर, या हम जैसे अगर इसमें हमारा फोबिया ऐसा तो हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहेंगे, बचना चाहते हैं वहां पर जाने से। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं ये अपने मन का जो डर है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फोबिया कहलाता है।
0: तो फोबिया पर हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन एक गीत सुन लेते हैं।

0: भी देखो, हमारे श्रोता लिखते हैं कि फोबिया एक ऐसा डर होता है जो सामान्य डर से बहुत ज्यादा होता है। किसी चीज, जगह, जानवर या किसी परिस्थिति को देखकर मन में घबराहट होने लगती है। जब हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तब डरते भी हैं। फोबिया अक्सर पुराने बुरे अनुभव, तनाव या मन में चिंता के कारण हो सकता है, लेकिन इसका इलाज भी संभव है। सही सलाह, काउंसलिंग, सकारात्मक सोच और धीरे धीरे डर का सामना।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि फोबिया मतलब एक भय है जिसकी कोई सीमा तय नहीं, किसी विशिष्ट वस्तु, जानवर या स्थिति के प्रति अत्यधिक तर्कहीन तीव्र भय है जो व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, विशिष्ट फोबिया, सोशल फोबिया और एगोराफोबिया। किसी को कोई विशेष जानवर से डर लगता है तो किसी को मौसम की स्थिति या प्राकृतिक तत्वों का डर लगता है। मेरा एक सहकर्मी था, अब वो भी मेरे साथ में सेवानिवृत्त हो चुका है, उसे कुत्तों का डर सेवा काल के दौरान लगता था और आज भी लग रहा है। मतलब वो जो डर है,
0: बहुत सारे लोग तो सिर्फ बिजली जब कड़कती है उसी से डर जाते हैं। अभी हमारी श्रोता सखी लिखती हैं कि मेरी बेटी छिपकली को देखकर बहुत डर जाती है और सिर्फ देख लेने भर से ही उसकी चीख निकल जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है, मुझे सफाई का बहुत फोबिया है।
1: सफाई का बहुत लोगों का होता है कि ये फोबिया, कि मतलब मुझे भी है कि जरा सा भी कुछ गंदा होगा तो ये क्यों ऐसा हो रखा है, फिर उसे उसमें लग जाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, उनको हर जगह साफ सुथरापन चाहिए होता है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि फोबिया 2 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को अंधेरे से फोबिया होता है, किसी को स्टेज से डर लगता है। बहुत लोगों को स्टेज पर जाने से बहुत फोबिया होता है, इतना बर्फ हो जाते हैं वो। और मुझे बचपन में फोबिया था, गुब्बारे से मुझे बहुत डर लगा करता था और तब मैं उसको देख भी नहीं पाता था।
1: एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे मुझे सिर्फ भूत प्रेतों से डर लगता है, ये जानते हुए भी कि ये सब कपोल कल्पित है, फिर भी अंधेरा होते ही सारी भूत प्रेत की कहानियां या फिल्में जाने कहां से याद आने लगती हैं और फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए रात गुजरती है। तो मतलब ये है कि भूतों का

0: इनको ये अधिकतर लोगों को होता है कि तब तक दिन में नहीं लगता है, रात होते अंधेरा होते लगते रहता है डर।
1: तो चलिए अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं आरती, और गर्मियों में आंखों की देखभाल किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं कि आप पर्याप्त पानी पीजिए ताकि आंखों में सूखापन ना आए, क्योंकि आंखों में सूखापन, जलन और बेचैनी ये सभी पानी की कमी के लक्षण होते हैं। और दिन भर पानी का सेवन करने से आंखों में भी नमी बनी रहती है और सूखापन दूर हो जाता है। तैराकी या साइकिलिंग अगर करने वाले कुछ लोग हैं तो उनके उचित जो चश्मे होते हैं वो पहनकर आंखों की सुरक्षा जरूर करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, और चश्मे के रूप में आंखों की सुरक्षा क्लोरीन और खारे पानी के संपर्क के साथ साथ तैरते समय बैक्टीरिया से भी बचाती है। और स्पोर्ट्स ग्लासेस और रैप राउंड जो सनग्लासेस होते हैं जो पूरे अपने आंखों को, आपके पूरी आंखों को कवर करते हैं, उससे धूल के कणों, मलबे और जो भी आप आ रहा है उससे सीधी धूप से आंखों की रक्षा करते हैं। और अपने दैनिक भोजन में आप पत्तेदार सब्जियां, गाजर और खट्टे फल शामिल कर लीजिए तो ये बेहतर होगा आपके लिए।
1: और बातें आगे बढ़ाएंगे पर एक गीत सुन लेते हैं।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं।

0: और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: इस आयोजन की जिसकी चर्चा भी हो रही थी,
2: बिल्कुल जाना है, शुरू होने वाला है
1: और कुछ ही समय बाकी है, तो जो मुंबई में रहने वाले हमारे श्रोता हैं वो जरूर ही इसका हिस्सा बनेंगे।
2: पहुंचिए फटाफट।
1: और हम बात कर रहे थे आंखों की,
2: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि तेज गर्मी और एसी वगैरह में अगर बैठे हैं आप बहुत ज्यादा, तो वहां आंखें जल्दी सूखती हैं। और आंखों के प्राकृतिक आंसू के स्तर को बनाए रखने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया आप आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: इसके अलावा हमारे श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में पिंक आई यानी कंजक्टिवाइज का जो है संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, और अपनी आंखों को ऐसे में बार बार ना रगड़ें। घर अगर आप लौटते हैं कहीं बाहर से धूप से, तो साथ साथ आंखों को भी साफ पानी से जरूर धोया करें।
2: बिल्कुल, और धूल प्रदूषण से बचें। और साथ ही हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि गर्मियों में आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है, तेज धूप और गर्म हवा और धूल से आंखों में जलन या खुश्की हो सकती है, तो आप धूप का चश्मा जरूर पहनिए।
1: बिल्कुल, और हम सुन लें गाना और है ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: और देखो आरती, कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं हमारे सुनने वालों से
1: येलो में
0: इजाजत। हाँ
1: चलिए
0: हाँ बिल्कुल, चंचल वर्मा
1: और आदि श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का, देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी। आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहाँ पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूँ ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं तो हम अक्सर मूवीज़ में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की या वॉर सिचुएशंस की या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड ज़ीरो। तो वो सिचुएशन वहाँ पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर साउथ कश्मीर के मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जैन की असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुद

0: कस हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी
1: जी
0: वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट, मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा,
1: जी
0: ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लाडेन बन गया। और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ, जो आपसे 200 मीटर दूर है, पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी,
1: बिल्कुल
0: सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, JNK पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
1: मतलब
0: तो
1: वो
0: वो
1: इतना
0: मौका,
1: बड़ा आतंकवादी और
0: इतना
1: इतना
0: बड़ा
1: जी के
0: आतंकवादी
1: सब
0: कि
1: जान
0: भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है,
1: जी
0: 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक के तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिस पर अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस, द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी, और ये मौका मुझको मिला। BSF की बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था, और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
1: जी
0: 27 और 28 अगस्त 2003 को, एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे।
1: जी
0: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका कि कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें JNK पुलिस, BSF का बड़ा अहम किरदार रहा। और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया, लेकिन ज्यों ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे,
1: जी
0: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा, और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी, मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो
1: जी
0: जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने एक जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा, मेरी बटालियन ने, और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में 3rd फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
1: जी
0: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लाडेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
1: जी
0: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को, हॉट शॉट मास्टर को, सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पे गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही, और
1: बिल्कुल
0: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात है,
1: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है, और ये देश के लिए भी, देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब वो जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो वो जो मोमेंट रहा होगा, वो कैसे आप लोगों ने, आपकी टीम ने फेस किया, और वो सब जो इंसिडेंट हुआ, जब फायरिंग हुई, फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
0: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई, जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं ना कहीं
1: कुछ बड़ा
0: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी इस्टेब्लिश किया, उसको लेकर के हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए, और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि PM का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था,
1: बिल्कुल,
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना, एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलो अप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक,
1: बिल्कुल
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है, और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन, हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि

0: कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टाकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज़ नहीं करेगा, शू की आवाज़ नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: या वो भागने की कोशिश करे,
0: भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी।
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदम कद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा है,
0: देख रहा था, जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था।
1: अच्छा।
0: पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों देख रहे थे, उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा।
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में एक चीज बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों।
1: अच्छा।
0: ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहाँ ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं। और उसके बाद वो सेकंड अपॉर्चुनिटी गाजी बाबा नहीं देता, और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती, पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा, वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया, आप उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का अंदाजा,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो

0: हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया।
1: जी सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग हुई और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के आज संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868 1070 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011-2342-1084 और 2342-1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज़्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: जो छाती पर लगता है।
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया है,
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहाँ क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है जो उसका खराब ब्लड होता है, बह के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि तो वाइफ जब मिलने आए, तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संक यूनिफॉर्म को जब धो रहा था, तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पे
0: बिल्कुल
1: ड्राइंग रूम में लगा रखा है,
0: जिसने आपका दिल बचाया
1: उसमें, यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशन भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, और फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा, मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब

0: ख्याल होते हैं, मन में आने
1: आने
0: लगते हैं।
1: जी।
0: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए,
1: जी,
0: जिनका की तुरंत तो आइडेंटिटी
1: नहीं हो
0: पाया, शिनाख्त बाद में हुई
1: जी,
0: और नीचे आए, पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे,
1: जी,
0: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू, एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी, तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो,
1: जी,
0: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग रहा था।
1: जी.
0: मैंने कहा सर फॉर व्हाट? बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन अक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक, एंड होल कंट्री, होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना कि सारा दर्द काफू
1: खत्म हो गया, सही
0: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
1: जी,
0: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा। लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला, तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
1: जी, जी,
0: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना,
1: हाँ,
0: वो कहीं कहीं उसका पेन
1: कम हो जाता है। यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी,
0: इतनी बड़ी थी
1: कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
0: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेज,
1: बिल्कुल,
0: हॉट केक इन द वैली।
1: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो अपने नमूने पेश करता।
0: नाइन ईयर्स वैली में 1994 से 2001 तक ही वाज़ ऑन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग,
1: और फिर
0: दिस सारी मर्क किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
1: जी,
0: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
1: इतना बड़ा प्लान है, इतना बड़ा आतंकवाद
0: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
1: जी,
0: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के। और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
1: बहुत बड़ी, बहुत बड़ी सर, यहाँ पर
0: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल,
0: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
1: बिल्कुल। और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
0: मैं इसको अपॉर्चुनिटी देता हूँ क्योंकि बीएसएफ एक टीम वर्क करती है,
1: बिल्कुल,
0: सीमा सुरक्षा बल ने मौका दिया सेकंड टेन्योर, इसको टीम वर्क और जान पे जूझने वाले लड़के,
1: बिल्कुल,
0: उस फ्लोर पे चढ़ने में पैर काम।
1: सर मुझे फौजी का जो जज्बा होता है ना, वो जो मर मिटने वाला, देश पर जान निछावर कर देने वाला, वो चीज थी ना वहां पर।
0: क्या है जब इस तरह का मिशन होता है
1: जी,
0: और आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं और इस तरह का मिशन होता है, तो सबसे पहला आपके मन में फिक्र होती है कॉमरेड्स की जो आपके साथ चल रहे हैं
1: जी।
0: अगर आपके पैर कमजोर हुए, आपके पैर थोड़े से
1: डगमगाए जी,
0: तो आपके जवान का पैर भी डगमगाएगा,
1: बिल्कुल,
0: वो हिम्मत पर चलने वाली फोर्स होती है,
1: तो आपके कंधों पर ही सबका एक तरह से जिम्मेदारी और भार।
0: बटालियन का हेड था
1: जी,
0: मेरे
1: आप लीड कर रहे थे,
0: लीड कर रहा था मैं, चाहता तो अपने किसी नंबर 2 को भेज सकता था, नंबर 3 को भेज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे,
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल,
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: जाता, मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल,
0: गाजी बाबू के माथे में घुसना कोई सिंपल।
1: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, हम
1: मिलता नहीं,
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो, एंड वी आर प्राउड ऑफ दोस मोमेंट्स।
1: दुबे सर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम, वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी है कुर्बानियां उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है, दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से ऑस्ट्रेलिया से, सर आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: सो ग्रेट वर्ड्स बिकॉज वी स्टिल

0: Remember the bloodshed in Australia, the Bondi Beach, very recently by the IC, by the ISIS cadres. हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन एंड इन दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है या सिलजर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी
1: जी।
0: तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा।
0: बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी बैज
0: बच्चन, हाँ
1: अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है।
1: वो आपकी यादगार,
0: आप में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: फिल्म
1: अनबिलीवेबल,
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
1: जी,
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती
1: बिल्कुल।
0: है
1: सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
0: होते हैं।
1: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है।
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान जाएगी या जान ली जाएगी।
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
1: या मरने का,
0: तीसरा कुछ नहीं होता,
1: तीसरा कुछ नहीं। या तो
0: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
0: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं
1: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं सर, एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
1: जी।
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफ़ी ज़्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं, प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही हैं, जय हिंद सर, आपको सुन रही हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं जिसके नाम पे बी के दत्त है।
1: जी
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है, और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस, थैंक यू सो मच।
1: सर देश पर मरण मिटने का जज्बा तो हर देशवासी में, हर भारतीय में है, लेकिन कुछ ही है जो जज्बा अपना जाहिर कर पाते हैं, और जब आप मौजूद होते हैं, जब आप पूरे देश को पूरी दुनिया को अपनी बात बता रहे होते हैं, तो वो जोश और बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स में, आज हमारा खास प्रोग्राम, हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे।

तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता ही लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना

0: चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं।
1: आप इस मौके पर मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है,
0: जी
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: सौभाग्य
1: चिट्ठी के जरिए आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: बड़ा प्रेशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो हो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें तो।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस का हम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIGBSF श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे।

संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर, यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। शायद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानी सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है, उनकी बायोपिक ग्राउंड।

0: जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब बीएसएफ आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालय नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की, आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी। यस।
0: अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी, घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे, और 1 साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: यस। तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते
0: अच्छा।
1: थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पे कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाई हो ये तो तब था ही नहीं। ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाई हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं, कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे।
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल हैं, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है,
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाय मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल, इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए, और रिटन की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
0: बिल्कुल।
1: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है
0: जी। सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी

0: भाई इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आपका जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप USA, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
1: इस इंजरी के बाद में एक दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
0: जी,
1: 26-11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
0: जी।
1: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
0: जी।
1: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
0: जी
1: सरकारी,
0: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए उसके अलावा
1: ये 9 वर्ष NIA में,
0: अच्छा
1: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
0: अच्छा
1: मेरे दिल से लगा हुआ है,
0: बिल्कुल।
1: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया,
0: अच्छा।
1: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं
0: जी। सर आगे बढ़ूंगा मैं, और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूँ, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
0: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
1: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
0: जी।
1: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
0: जी।
1: और बड़ा उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की थी,
0: बिल्कुल।
1: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजेडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजेडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी
0: okay।
1: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
0: जी।
1: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजेडी हुई थी देश में
0: जी, जी, जी।
1: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
0: जी। सर एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं, यश शिंदे हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप, चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है, नरेंद्रनाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
1: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप बड़े जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रेमी हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
0: और सर यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए, आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियो पोलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश, आपको जो है आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है, तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्स से बात करना हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, अगला प्रोग्राम लेकर के आ रही है रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं

वक्त 5 बजे हैं। लीजिए, अब पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा। लीजिए, सुनिए।

0: दीवाने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये मिंडारी, प्रेम नगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पूर्णपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांड गांव, पेटला, ललित पुर, सरगा, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 141 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। किसी भी परिस्थितियों में हाथियों का खेदा करने बिल्कुल ना जाएं, सावधानी बनाए रखें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए

0: सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। श्रोताओं, हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:06 हुए हैं। लीजिए, अब पेश है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत का पहला तराना लीजिए सुनिए, उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में, हेलो ब्रदर्स फिल्म से। जलीस के लिखे बोल हैं, हिमेश रेशमिया का है संगीत। लीजिए पेश है।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत के सफर का अगला गीत लीजिए, पेश है सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, दिल है तुम्हारा, इस फिल्म से। प्रवीण भारद्वाज के लिखे बोल हैं, लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत के सफर का अगला तराना लीजिए, पेश है कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में दिल है तुम्हारा। इस फिल्म से शब्द रचना समीर की है और संगीत से संवारा इस गीत को नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, छत्रपट संगीत के सफर का अगला गीत लीजिए, पेश है आशा भोसले और कुमार शानू की आवाज में, जान तेरे नाम फिल्म से। सईद राई की है रचना और नदीम श्रवण का है संगीत। लीजिए पेश है।

हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की युगल स्वर में अभी आपने सुना क्या कहना इस फिल्म का गीत। मजरू की रचना थी और राजेश रोशन का था संगीत। और इस अंतिम गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। शाम के 5:35 होने को हैं। चलिए श्रोताओं, इस वक्त रुक करते हैं बहनों के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा की ओर।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, आप सभी कैसे हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी चाय की चुस्कियों के साथ। सखियों, चाय का एक प्याला हमारी थकान तो दूर करता ही है और साथ ही जब हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं तो रिश्तों में भी मिठास घोल देता है। और सखियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिवर्ष 21 मई को विश्व चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सखियों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि चाय उत्पादकों और किसानों, श्रमिकों के योगदान को सम्मान देना, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करना, साथ ही चाय के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को समझना। सखियों, भारत देश दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय, नीलगिरी हिल्स की चाय दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सखियों, चाय हम कई प्रकार की पीते हैं, जैसे हर्बल टी और ग्रीन टी, फ्लावर टी यानी प्राकृतिक फूलों की पंखुड़ियों से तैयार की जाने वाली चाय। इसमें गुड़हल, गुलाब और जैस्मिन टी, चमेली जैसी फूलों की खुशबू और गुण शामिल होते हैं। इन्हें हम अपने घरों में भी बना सकते हैं। सखियों, हम सभी को चाय का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। सखियों, चाय हमें सिखाती है कि छोटे छोटे पत्तों में भी बड़ी खुशबू और ऊर्जा छिपी होती है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन के छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। तो सखियों, आइए इस विश्व चाय दिवस पर एक प्याली चाय के साथ उन किसानों और श्रमिकों को धन्यवाद दें जिनकी मेहनत से हर घर तक स्वाद और ताजगी पहुंचती है। और सखियों, चाय की चुस्कियों के साथ अब आइए आनंद लेते हैं दिल्ली सिक्स के इस गीत का, जिसे लिखा है प्रसून जोशी ने, संगीत है यार रहमान का और स्वर है रेखा भारद्वाज, सुजाता मजुमदार और श्रद्धा पंडित के।

0: so easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: सखियो अब आइए चलते हैं आज के क्रम लोक संस्कृति की ओर.

0: सखियो, हमारा भारत देश विविधताओं का देश है, जहाँ हर राज्य, हर गांव, हर समुदाय की अपनी अलग पहचान है, अपनी भाषा, अपना नृत्य, अपना पहनावा, अपने गीत, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं हैं। यही विविध रंग मिलकर हमारी लोक संस्कृति का सुंदर चित्र बनाते हैं। और सखियो, हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है। सखियो, आज देश विदेश में हमारी पारंपरिक लोक कला को सराहा जा रहा है। और सखियो, छत्तीसगढ़ के लोक कला की बात आए तो पंडवानी का नाम जहन में जरूर आता है और तीजन बाई जी की याद आ जाती है, जिन्होंने पंडवानी को विश्व भर में पहचान दिलाई है। और सखियो, आज के क्रम लोक संस्कृति में भी हमारी मेहमान उन्हीं को अपनी प्रेरणा स्रोत मानकर आगे बढ़ रही हैं पंडवानी के कला क्षेत्र में, जो की है बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से किरण वैष्णव जी, पंडवानी कलाकार। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: किरण जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारी श्रोताओं को दीजिए।
1: जम्मो संगवारी मल्ला, जय जोहार। मैं आप मन की किरण वैष्णव, पंडवानी गायिका, रामजी सिद्धा के रहिया, जिला बलौदा बाजार।
0: किरण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पंडवानी गायन से आपका जुड़ाव कैसे हुआ?
1: तो मैं छोटे रहे हूँ, मुरगांव में पंडवानी हो गए, रामायण हुए, वैसे तो गायक पर मैं 10 साल ले ही गाना बजाना करत रहे हैं। हम जब छोटे रहे हूँ तब हमारे गांव में दुर्गा बैठे, जस गीत, ये सब चीज करत करत फिर रामायण मांगे, हाँ रामायण गाते रहे हैं, 2-4 गांव में रामायण गाए भी के रहे हूँ। तब ना ये पंडवानी के राहला चुने की मोरो सपनारी से कि मैं भी जाके स्टेज में जैसी तीजन बाई दीदी अपन नाम ला रोशन करी से, वैसे हमू मल्ला शौक रही से गाय के, ओकरे नाम से ये पंडवानी के राहला चुने हैं।
0: और किरण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जो आप लोग पंडवानी गायन करती हैं तो उसमें क्या क्या वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है?
1: उमा होते सबले पहले तो महाभारत से सीखे जाते पंडवानी ला, और अभी मैं भी वैसे सीखे गे हाँ, जैसे कि तमूरा हो गए, तमूरा उला धर के गाए जाते, और तमूरा बिना तो पंडवानी होए नहीं, और बेंजो हो गए, जैसे तबला हो गए, हारमोनियम हो गए, ये सब चीज के उपयोग होते।
0: तो हम चाहते हैं कि हम पंडवानी का ये जो गीत आप लोग गाते हैं, वाकई में ये हमारी संस्कृति की पहचान है, तो हम ये चाहेंगे कि आप सुनाएं गा करके।
1: बिल्कुल। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबले पहले तो हमन पंडवानी गाय बर धरथन, ता सबले प्रथम तो यही बस जो गाना गाथन वही लगाए के प्रयास करत हूँ। अब मोरे

0: मोरे बंसी बजैयाला गावो गा मोरे भाई, मोरे गैया चरैयाला गावो गा मोरे भाई। यही जगह ले हमार वंदनाई स्टार्ट होए के बाद में जो आगे के कार्यक्रम रहते ओला यही जगह ले स्टार्ट करथन।
1: जी जी बहुत ही सुंदर आपने जो वंदना हमें सुनाई, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और किरण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पंडवानी गायन की मुख्य विशेषता क्या होती है?
0: महाभारत में पढ़े जाते और पढ़े के बाद में कभी कभी तो मुख्य बनते भीम है, अर्जुन है, एक करण है, दुर्योधन है, माता कुंती है, धर्मराज है, ये सब चीज ला लेके हमन ये पंडवानी ला गाथन। और पंडवानी एकर तो 18 पर्व है, वह 18 में के सब लगाए जाथन। अब वैसे तो कहे गए है कि कभी कभी हार जीत तो लगे रहते, कभी दुर्योधन तो कभी पांचों भाई पांडव कौरव, ये सब चीज ला लेके हमन मतलब आगे बढ़थन गाय के प्रयास कर। मैं आप मल्ला कथा सुनाता हूँ, करण पर्व के बात ला बताता हूँ। करण पर्व में का होते, तो करण पर्व में धर्मराज के थे कि जाके कहे जमीन के बंटवारा होना है, तब दूध ला भेजे रहे, तब दूध रहे तो सुंदर अपन वाड़ी से बताई से कि आज जमीन के बंटवारा होना है, लेकिन पाखंडी दुर्योधन है तो जमीन देवर मना करत है। अब जमीन देवर मना करिस तब कहेला लग गए, कहे मैं इलते हैं एक गांव लकी थस, मैं तो इला सुई के नोक की भाई बराबर जमीन नहीं दऊ। अतके वचन ला बोलिस तब कृष्ण मुरारी कहे नहीं, तुला जमीन देवर तो लाग ही चे, काबर ये तो विधि के विधान है, ये तो बचपन ले होत आते, कई पीढ़ी ले होत आते, भाई भाई में बंटवारा होना जरूरी रथे, तुला जमीन के

0: बंटवारा करे बर लाघिचे। ऐसे बोल के तब दुर्योधन कथे, नहीं नहीं दुर्योधन तो पाखंडी रहे, कहेला लग गए, कहे मैं जमीन के बंटवारा नहीं करो, जो कुछ करना है कर लो। तक कहे नहीं, ऐसे में तो बात नहीं बने, एकर कोई भी हल निकाले बर लाघी। दुर्योधन रहे तो मन में सोच विचार लगाइस और कहेला लग गए, कहे ठीक है मैं 18 दिन की लड़ाई की रचना करत हूँ, कहो तुमने लड़ाई में जीत जाओ ना तो जतका जमीन हाँ तुम्हार हो जही। ऐसे वाड़ीला बोले ऋषि।
1: किरण जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आप मंच पर प्रस्तुति देते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, आप हमें बताएं।
0: तो मेरा तो सबले पहले जब स्टेज में चढ़े रहे हाँ तब बहुत डर लगत रही से, इसे लगे कि मैं अपन कार्यक्रम दे नहीं पाऊँ, इतना डर लगत रही से, मतलब हाथ पैर भी कापे लग जाए। जब धीरे धीरे मोर कार्यक्रम दे गए हो ना तो अब कुछ नहीं लगे, जम्मो संगवारी मन मोला माया दुलार दी से, यही सबो जन के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक के पहुँचे हाँ, अब मोला कुछ के डर नहीं लगे, खुल के गा लेता हूँ अपन वानीला। अब इसे पहले तो बहुत डरात रहे हाँ, लेकिन धीरे धीरे कहा इसे गाँव से शहर में, शहर से बड़े बड़े कई मंच में जा के अपन कार्यक्रम लदे हाँ, तब मोर जतका भी डर है ना उतका मिट गए, अब मोला डर नहीं लगे।
1: किरण जी, आज नई पीढ़ी को लोक कला से जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आप बताएं।
0: सबले पहले तो जम्मो महिला मल्ला महतारी मल्ला अपन लैका मल्ला जैसे तीजन बाई शिक्षा देते दुनिया ला, वैसने प्रकार के महतारी मल्ला भी अपन लैका ला पढ़ाना चाहिए, जो गीत है माँ गीत ला गवाना चाहिए, सब चीज थोड़ा थोड़ा करके। मैं भी छोटे रहे हो तब मोला भी वैसने गवाए बजाए, संग में महू गाए बजाए हो तब यहाँ तक के पहुंचे हो। तो सबले पहले तो महतारी मल्ला ये भारत महाभारत प्रणवानी है, और जैसे की कोई भी गीत है जतका गीत के संगीत के लाइन है सबला तो महतारी मन शिक्षा दी, जैसे कि हमारे तीजन बाई दीदी के द्वारा से देखो आज कतका पूरा देश के जो महिला है पुरुष है सब कोई मतलब अपन अपन नाम ला जगाते है। वैसे प्रकार के अपन घर के लड़का मल्ला सुंदर सिखाना चाहिए पढ़ाना चाहिए। वैसे तो कॉलेज खुले खुले है हर जिला में कॉलेज गीत के संगीत के, खैरागढ़ और यहाँ रायपुर ये सब चीज खुले है, तो यही सब बोझन महतारी मन से निवेदन है कि अपन लड़का मल्ला सुंदर भर्ती करो और सुंदर गाना बजाना के लाइन में ले गो।
1: तो सखियो चलिए अब सुनते हैं हम किरण जी को।

0: बैरागी महाराज, एक समय की बात है, जो छह मूर्ति है और 12 साल के वनवास तो बीत गए, लेकिन एक साल के गुप्त वनवास हाँ बहज गए,
1: बाकी है
0: वही वनवास ला बिताए बर आज जंगल झाड़ी झाड़ी घूमा थे गा।
1: जय हो
0: कत्ती जंगल कत्ती झाड़ी कत्ती नाला कत्ती नदी घूमे ला लग गए
1: वाजी
0: पांचो छयो मूर्ति घूमा थे गा। एक साल

0: अच्छा अच्छा
1: मन में सोच विचार लगात रही से तब ही समय में वही करम व्यास नारायण हितोन पहुँच गए।
0: वाजी
1: अब कहे लालक के कहे बेटा धर्मराज।
0: अच्छा अच्छा
1: व्यास नारायण ला देख के सबको झनो कर पैर में गिरे कहे
0: हाँ होगा
1: स्वामी हम रथ का दुख से ये जंगल में अपन दिन बिता थन
0: बिता थन गा
1: तो तुम अनेकरा का करे आए हो।
0: अच्छा अच्छा
1: कहे देख धर्मराज इतका बड़े घना जंगल है
0: हाँ जी
1: तो तुम यहाँ अपन जिंदगी ला कैसे बिता हो।
0: वाजी
1: समझाए लालक के।
0: अच्छा
1: तो कहे एक काम करो तुमन के जिंदगी ना ये जंगल में नहीं बीते तो क्या करबो महाराज कहे सुन ले।
0: वाजी
1: और नगर विराट में जाहू ना
0: अच्छा।
1: तो तू हर नाम और काम और रूप ला बदले बर
0: बदले लपल ही गा
1: अतका बात ला सुनिस तक कहे।
0: अच्छा
1: धर्मराज अगर तोर नाम धर्मराज नहीं कही के
0: वाजी
1: गंग ऋषि रही तब कैसे हो।
0: वाह भाजी
1: कहे स्वामी आपन एक ही से बोलत हो अतका दिन हो गए आज तक हो गए मैं झूठ ला बारी ला जाना नहीं
0: जाना नहीं गा
1: तुमन मुला आज नाम ना छुपाए बर कहत हो।
0: अच्छा।
1: नहीं नहीं नहीं ये काम हमर से नहीं
0: होवेगा
1: तब का करना चाहिए।
0: हाँ।
1: देख धर्मराज अगर तोला पर मास बिताना है ना
0: अच्छा,
1: तो ये काम ला करे बार
0: लागेगा
1: अतका बात तो सुनी तब ठीक है।
0: हाँ जी।
1: पीछे में द्रौपदी खड़े रहे व्यास नारायण आग की सारा ला समझ गए अब कहे द्रौपदी तोर द्रौपदी नहीं कही के तोर नाव सलेंद्री रही तब
0: वाजी।
1: कहे महाराज तब इतका बात ला सुनी तो रानी द्रौपदी हाँ खुश हो गए
0: अच्छा
1: सुंदर नाम है।
0: वादी
1: तब रागी ये बात ना सुने के बाद में
0: हाँ।
1: पीछे में कौन खड़े रहे अर्जुन हाँ खड़े है
0: हो।
1: तब रागी महाराज
0: हाँ।
1: ठीक है अब भीम रहे तो मन में सोच विचार लगा थे गदा धरे खड़े है
0: हाँ
1: कहे मोर का नाम धरही।
0: वादी
1: ये मन के तो बढ़िया नाम धर दी।
0: अच्छा अच्छा
1: तब व्यास नारायण देख के कहे लालक के
0: अच्छा अच्छा
1: कथे की बेटा भीम।
0: वाजी
1: तोर नाम भीम नहीं कही के अगर तोर नाम हाँ जयंत रसोईया
0: वाजी।

0: देखा देखा
1: देखा थे गा
0: सादे रकुल देखा थे।
1: अच्छा
0: के हमन के का नाम धरा है
1: वाजी
0: तक थे बेटा सहदेव।
1: अच्छा
0: तोर सहदेव नहीं कही के तोर नाम हाँ सैनी ग्वाल रही।
1: सैनी ग्वाल है गा
0: तब ठीक है।
1: अच्छा
0: का काम रही गैया चराना तोर
1: काम है। काम है जी गए हो
0: गैया मान के देखभाल करना तोर काम है बेटा
1: वाजी।
0: अब नकुल कथे मोर का काम रही।
1: अच्छा
0: तोर काम रही घोड़ा के सार में घोड़ा ला चारा खिला
1: वाजी।
0: अब जेन भी घोड़ा कायर कृष्णा
1: अच्छा
0: मार मार के सायर कर दे।
1: कायर कर दे था जी
0: अब सायर ला कायर तोरे बेटा
1: गा।
0: तब रागे महाराज
1: हाँ
0: सबो जन के नाम तो धरागे।
1: अच्छा।

0: और हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि जैसे कि आप इस मंच पर आना चाहें, पंडवानी को आपने चुना अपने भविष्य के लिए, तो शुरुआती तौर पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, उसके बारे में आप बताएं।
1: मतलब तो पहली बहुत सारा समस्या इससे, जैसे कि घर में सबको इला मनाना, ओकर बाद पंडवानी गाए जाना, तो पंडवानी गाए गए हों तो कभी कभी सीखत रहे हों तो बहुत दिक्कत जात्री से, कुछ भी चीज़ ला जैसे कि पंडवानी के कोई भी गीत है कोई भी कथा है सब चीज़ ला भूल चुक तो हो जात्री से। और अभी देखेंगे तो कभी कभी मंच में भी बिगड़ जाए, लेकिन वो समस्या ला सबला में करके आज यहाँ तक के पहुँचे हों, जैसे रात के जाना आना ये सब चीज़ में सामना करके आज ये पंडवानी के राहला चुन के आज मैं आपन के बीच में उपस्थित हों, यही सामना करके मैं आज यहाँ तक के पहुँचे हों। तो धन्य है मोर भाग और दीदी आप मन के बीच में खड़े हों, जब वही दिन में बंद कर दे रहते हो तो आप मन के बीच में आए के अवसर नहीं मिलती। बिलासपुर आकाशवाड़ी के बीच में आज मुला आए के अवसर मिले है और सबो संगवारी मन के इतका सुंदर मया दुलार आशीर्वाद पात हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो बस इसने आशीर्वाद बनाए रखो।
0: किरण जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई है पंडवानी को लेकर के, महाभारत को लेकर के, और आपने इतनी सुंदर सुंदर गीत भी हमें सुनाए हैं। और हम आप जाते जाते हमारी सखियों को क्या संदेश देना चाहेंगे किरण जी?
1: बस के सबो संगवारी मल्ला जितका जन स्टूडियो में जुड़े हो जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार जात है, और इसने आशीर्वाद देत रहू, आप मन के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ना चाहत हूँ और आपे मन के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ तक के पहुँचे हूँ बिलासपुर तन आकाशवाड़ी। तो इसने मैं दुलार देत रहू और आशीर्वाद देत रहू, बस अतके निवेदन।
0: किरण जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमने आपसे ढेर सारी बातें की और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने अपनी लोक संस्कृति पंडवानी के बारे में जाना, आपके बारे में जाना, क्या चुनौतियां आई, कैसे आपने सामना किया, आगे बढ़ी, आपने सुंदर सुंदर शैली से हमें गीत सुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: तो धन्यवाद।

सखियो, अभी आप सुन रहे थे लोक संस्कृति में पंडवानी कलाकार किरण वैष्णव को। सखियो, अब आइए आपको ले चलते हैं संगीत की मधुर बेला में और सुनवाते हैं खलनायक फिल्म का ये गीत।

सखियो, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खलनायक का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर था अलका याग्निक और साथियों का। सखियो, अभी ने गीतों और बातों के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से इस वक्त बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 होने को है। लीजिए, पेश है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में सबसे पहले हम आपको आज शाम के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। साथियों, आज संध्या 6:20 पर और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। रात्रि 8 बजे का समय होगा साप्ताहिक कार्यक्रम चिट्ठी मिली का। 8:20 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत और आज संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में पेरा के गोट का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके पश्चात संध्या 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी के अंतर्गत आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देंगी कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की विषय वस्तु

विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी जी। इनसे आज की बातचीत का विषय होगा नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग। इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे मेंगू भैया। ये तो थी आज शाम के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको कल सुबह और शाम के मुख्य आकर्षणों के विषय में बतला दें।

श्रोताओं, कल सुबह 8:30 पर रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। 10 बजे का समय होगा गूंजे स्वर गांव में कार्यक्रम का, जिसमें कल आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के पहले चरण में पारंपरिक बिहाव गीत। कलाकार होंगे बालका, अंबालिका एवं उत्तराबाई कोल और इनके साथी। कार्यक्रम के दूसरे चरण में हम आपको सुनवाएंगे चंदैनी गीत। कलाकार होंगे रामाधार साहू और इनके साथी। 10:30 का समय होगा आपकी पसंद कार्यक्रम का और 11 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इसके अलावा कल शाम सबसे पहले शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गीत। 5:05 का समय होगा चित्रपट संगीत का। संध्या 6:20 और 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे संजय वत्सल के गाए हुए कुछ गैर फिल्मी गीत। और रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा की हम खुशबू बिखेरेंगे। युवा जगत कार्यक्रम में शाम 5:35 पर सबसे पहले आप सुनेंगे आज की बात। इस विषय इस क्रम में धरती की विविधता और धरती हमारी जिम्मेदारी, धरती की विविधता हमारी जिम्मेदारी, इस विषय पर आप सुनेंगे चर्चा। आगे क्रम मेरी बारी का आप लेंगे आनंद। और संध्या 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में बेरा की गोट का विषय होगा वनोपज आधारित आय। इसके पश्चात संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे फोन इन पर आधारित कार्यक्रम, जिसमें बातचीत का विषय होगा प्राकृतिक खेती का महत्व। विशेषज्ञ होंगी कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पा कौशिक मोदी, संचालन करेंगे मैंगू भैया। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं समाप्त हुआ। संध्या के 6:10 होने को हैं। छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना ह ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है और आकाशवाणी के 90 पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहरले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। ये समिति अशासकीय स्कूल में फीस बढ़ोतरी और पुस्तक गणवेश खरीदी के शिकायत मन के निगरानी करही। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ह जम्मो जिला कलेक्टर मन ला चिट्ठी जारी करे है। जारी आदेश में कहे गए है कि शासन के संज्ञान में ये बात आए है

0: કે છત્તીસગઢમાં સંચાલિત અશાસકીય સ્કૂલ મનકોતીલે અભિભાવક મનલા પુસ્તક ગણવેશ ઔ દુસર જીનીસ એકે હી ફરમલે ખરીદે બર બાધ્ય કરે જાથે. ફર્મ કે અપ્રત્યાશિત કિંમત કે સેતી અભિભાવક મન ઉપર વિત્તીય બોજા બાઢથે. ઓમન કે શિકાયત કે તુરતે નિરાકરણ બર જિલ્લા ઔ વિકાસખંડ સ્તરમાં નિગરાની ઔ જાંચ સમિતિ કે ગઠન કરે ગે હે. केंद्र सरकार हा कहे है कि उपभोक्ता पेशेवर और सौंदर्य बोध क्लिनिक टहाले कोनो भी कॉस्मेटिक उत्पाद के प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करे के अनुमति नहीं है. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन हा कहे है कि कॉस्मेटिक के प्रयोग केवल मानव शरीर में लगाए छिड़के और स्प्रे करे बर होना चाहिए. ये उत्पाद में प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग भ्रामक दावा इलाज बर कॉस्मेटिक के इस्तेमाल और इंजेक्शन ले कॉस्मेटिक के प्रयोग अधिनियम और नियम के उल्लंघन माने जाही. प्रदेश में चलत सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया शुभारंभ करें. ये मशीन करीबन 4.5 करोड़ रुपया के लागत ले स्थापित करेगे है. ए मौका में मुख्यमंत्री है कहिन कि नवा सिटी स्कैन मशीन के शुरू हुए ले तीर्थखार के मरीज मनला इलाज के बने सुविधा मिल पाही. एकर पहली मुख्यमंत्री हा अपन सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर में तेंदुपत्ता संग्राहक मन ले गोट बात करें. ओमन तेंदुपत्ता संग्रहण काम के जायजा लेवत संग्राहक मन के समस्या और ओमन के आजीविका ले जुड़े बुनियादी सुविधा के जानकारी लेन. श्री साय कहिन कि वनोपज संग्रहण करैया वाला मन के जीवन में समृद्धि लाना सरकार के प्राथमिकता है. रामानुजनगर क्षेत्र के वनोपज सहकारी समिति डहर ले ए साल निर्धारित लक्ष्य ले ज्यादा मात्रा में तेंदुपत्ता संग्रहण करे जा चुके हैं. बता दन कि ए साल राज्य सरकार है तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा तय करे है. देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते. ए दिवस ल मनाए के उद्देश्य युवा मन ल आतंकवाद और हिंसा के प्रवृत्ति ले दूर करना है. ए मौका में आने आने शासकीय और अशासकीय संस्था मन में आतंकवाद विरोधी शपथ घलो दिलाए गिस. आज के दिन बछर 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमला के शिकार हुए रहिन. भारतीय सेना हा ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है. आने आने श्रेणी पर निर्धारित ए ऑनलाइन परीक्षा अवैया 1 जून ले 5 जून तक और एकर बाद 8 जून ले 12 जून तक आयोजित करे जाहि. छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहर भिलाई दुर्ग रायपुर बिलासपुर और जगदलपुर में एकर बर कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिहां हरेक दिन परीक्षा के आयोजन 3 ले 4 शिफ्ट में करे जाही. जम्मू पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत हैं. धमतरी जिला के युवा मनला रोजगार के मौका उपलब्ध कराए बर जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करे गए है. एकर तहत जिला के बेरोजगार युवा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक मन के संग्रह कुशल और अर्धकुशल श्रमिक मनला देश के आने आने राज्य में रोजगार के मौका दे जाही. छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो.
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता. आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो. आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय. हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज. तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन. छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार.
0: अब आगू बढ़वो बाचे समाचार कुती. आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली 22 मई के रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही. ए कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में संझा 6:30 बजे ले आयोजित करे जाही. दू सत्र में होवैया ए कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उप शास्त्रीय प्रस्तुति हुई. पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश कर ही उन्हें श्वेता शिवाले डहाले उप शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुति दे जाही. आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर है बताइन कि आकाशवाणी है लोक प्रसारण के रूप में पाछू 90 बछर में उल्लेखनीय काम करे है. इस दौरान आकाशवाणी है सूचना शिक्षा समाचार मनोरंजन के माध्यम ले अपन ध्येयवाक के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के परिकल्पना साकार करे के काम करे है. आकाशवाणी

0: रायपुर ह घलो स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन ल गांव गांव तक पहुंचाए मा अहम भूमिका निभाए हे। राज्य सरकार ह कहे है कि मछली पालन ल प्रदेश में कृषि के दर्जा दे जाए ले एक लागत में लगभग 10% के कमी आए है। एखले मछली पालक मन ल बने आर्थिक फायदा घलो मिलत है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक में राखे गए चिंतन शिविर ल संबोधित करन मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम हकीन कि प्रदेश के किसान मन पर मछली पालन अब ओमन के समृद्धि के साधन बन के है। ओमन कहिन कि मछली पालक मन के आमदनी बढ़ाए बर आने आने वैज्ञानिक तरीका अपनाए जाते। इही कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए है। श्री नेताम कहिन कि बच्छर 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन ला 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। बता दन कि मछली उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ देश में 6वां स्थान में है। यहाँ सालाना 9.5 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा मात्रा में मछली के उत्पादन होवत है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ह ए पछर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा पर भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 ठन नवा परीक्षा केंद्र शुरू करे है। एकरे संग अब केंद्र के कुल संख्या 83 हो गए है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवार मन ए नवा केंद्र पर आवेदन करे है। आयोग के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार कहे है कि एकर उद्देश्य केंद्र में भीड़ ल कम करना और परीक्षा प्रक्रिया ल अनुकूल, सुलभ और कुशल बनाना है। ए बच्छर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई के रखी जाही। परीक्षा पर कुल 8,19,000 ले ज्यादा आवेदन मिले हैं। इही बीच रायपुर में यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिला के 22 केंद्र में 2 पाली में होगी। पहली पाली बिहनिया 9:30 बजे ले 11:30 बजे तक और दूसर पाली मझनिया 2:30 बजे ले संझा 4:30 बजे तक संचालित होगी। और अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ह आज नवा रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक में जम्मो टेंडर प्रक्रिया ल पारदर्शिता के संग पूरा करे बर कहिन। केंद्र सरकार ह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर अवैया 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए है। एकर बार 5 ले 18 बच्छर के भारतीय नागरिक पात्र हुई। भिलाई पुलिस ह नौकरी दिलाए के नाव में करीबन 7.5 लाख रुपया के ठगी के आरोपी ल गिरफ्तार करे है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंचा सीलिंग ले गिरे के सेती एक मजदूर के मौत हो गए। पुलिस ह मामला के जांच शुरू कर दे है। जांजगीर चांपा जिला के अर्जुनी गांव में तरिया में डूबे ले 8 और 9 साल के 2 सगे बहनी की मौत हो गए। जांजगीर चांपा जिला के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर पाछू संझा तेज रफ्तार 4-चक्का गाड़ी के अनियंत्रित होके पलटे ले 1 छात्र समेत 2 मनखे के मौत हो गए। उन्हें एक जन दूसरा छात्र घायल हो गए। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काली 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप रखे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग हां निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना हां ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित करते है। और आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: श्रोताओं, छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के इस वक्त 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत अभिनंदन। लीजिए पेश है कार्यक्रम का पहला गीत कुमार शानू की आवाज में परदेश फिल्म से। आनंद बख्शी की यह रचना, नदीम श्रवण का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयबीर और अमनदीप। अंबगढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस, रेहान। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल। पोटिया कला दुर्ग से

संजय साहू, सुजाता शशांक, श्रीमा साहू, लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत और इफसाल ताज, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी, नरवेल महाराष्ट्र से पीएस, निर्मला, विशाल, सोंगा से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका, कवर्धा से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, सुखांत, निशांत, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी, मनीष, मयंक, जानकी, पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुरासिया कॉलरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदी लहरे, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा, सरगांव से श्रोताओं, सरगांव से राजेश हिरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्रा, नीलम बत्रा, यवतमाल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी, दिल्ली से बोधराज, कमला रानी, गीतिका भानु, पाकुड़, झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, कालेगांव से सुधाकर, राजे, जाधव, प्रशांत, सचिंत, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वत, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चेतन मस्कीन, मेगा मस्कीन, पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अड़ोड़ा, नरगोड़ा से हमारे साथी हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, सीतामणि से सिगीत की फरमाइश लिख भेजी है मसरत जहानास, तलहत फरहत, रिफत नुजहत, शाजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली से हमारे साथी हैं शाहजी, नंदा, हनुमान और उत्तम, भटिंडा पंजाब से परमेन सिंह, मंजीत, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन, अभिजीत, गुजरात से प्रवीण, पूजा, पायल और जगदीश, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र, कपिल, पूजा और रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल, उमा ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो कुमार शानू की आवाज़ में परदेस फिल्म का गीत कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए पेश है।

श्रोताओं ईमेल करें गीत सुनें। ये कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का दूसरा गीत लता मंगेशकर और कुमार शानू के युगल स्वर में कच्चे धागे फिल्म से। आनंद बख्शी की है रचना, नुसरत फतेह अली खां का है संगीत। और ईमेल के जरिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं माटापारा से हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र, दिल्ली से लाल बाबू, उमाराज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा, डॉली, कबीर, देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, बुंदेलखंड से उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश और दिव्यांश बघेल, अकोला से सुशीला देवी, सदानंद, गौरव, आरव और अर्पिता, पैठण से सुरेश यादव, अनीता, आरती, पूजा, सोनल सिया, पोड़ी बाटा, अकलतरा से दिलीप चंदन, चुवाराम, निखिल, वसुंधरा चंदन, जालंधर से हमारे साथी हैं संदीप, ज्योति, मन्नत, भारत, कमल, दूल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरहान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान।

इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस। दूल्हापुर यूपी से ही मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। सहारनपुर से हैं सुरेश, आंसू, सोनाली। अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह, राहुल। भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी। दिल्ली से सुखविंदर सिंह, जनकपुरी से पिंटू राजेंद्र ओबेराय, छक्कर से बिट्टू भाटिया, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। राजनांदगांव से बब्बू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, प्रतीक्षा, समीक्षा और आराध्या साहू। महाराष्ट्र से रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश। भागलपुर से कमल, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति, टीकू और मुस्कान। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, वनीता और रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से हमारे साथी हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, आदित्य, रियांश, शनी, कान्हा। मदनपुर से श्रवण कुमार, योगेश और राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा। ग्वालियर से सुरेश, किरण, लाव्या, आरव और एस के पप्पी। सहारनपुर से आशु, गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश। रायपुर से विनोद, वीणा, विविधा। इन सभी की फरमाइश पर लीजिए पेश है कच्चे धागे फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए पेश है कुमार शानू की आवाज़ में कभी हाँ कभी ना फिल्म का गीत। मजरू की रचना है, जतिन ललित का है संगीत, और ईमेल के ज़रिए जिन श्रोता साथियों की पसंद हम तक पहुंची है उनके नाम हैं हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, अदाट नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी गोपी, राहुल वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडिल नावा पारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा दीति, राधे दीपक, अंकु राघव, और राजकोट से राजेश स्वाति ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाड़ से अजीता पॉल, प्रभा और प्रियांशी शर्मा, बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, सरगांव से तिपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश, पलारी से नितीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखनलाल, सावित्री, देवांगन, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर से सुदर्शन पल्लवी, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, ततरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा, महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाटे, संदीप बाटे, अमूल बाटे, बलारी से प्रकाश, प्रिंस, निखिल, यशस्वी, देवरी भाटापारा से कन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम, पंजाब से गंगनदीप, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका, वाणी, जालौन से सत्येंद्र, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, राजकोट से जूली जगजीश, प्राची, प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा और लड्डू, हांसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष, योगी, बब्बू और डब्बू, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, काव्या, सुच्चा सिंह पाठक, दुर्रा बांदा भाटापारा से प्रमोद साहू, नवीन, युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद और अलका मिड्डा, बटेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कंवर, प्रमीला श्याम कंवर और आसमा, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी, बाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा, सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश, मोहम्मद अलकम्मा खत्री, रमेश, मोहम्मद शादाब खत्री, लुथरा कमरिया से हमारे साथी हैं अक्रम, अमीन, अर्श, आतिका, लोगट ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह।

रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और नवागढ़ कटई से हमारे श्रोता हैं नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। इन लोगों की पसंद पर लीजिए पेश है कभी हाँ कभी ना फिल्म का ये गीत।

0: कुमार शानू की आवाज़ में ये था इस सफ़र का अंतिम गीत। और अब संध्या के 6:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार के लिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। और ठीक 7 बजे ईमेल करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम के दूसरे भाग के साथ हम होंगे आपके साथ। तो चलिए इस वक्त जुड़ते हैं रायपुर केंद्र से।
1: छह बजकर 45 मिनट हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय

0: इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की जांच करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा अभिभावकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। संबंधित फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से अभिभावकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुज नगर में तेंदुपत्ता संग्राहकों से बातचीत की। रामानुज नगर पटना में आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने रामानुज नगर में मिनी स्टेडियम और पटना में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत वे 10 जून तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे।
8: सुशासन तिहार चल रहा है, 10 जून तक चलने वाला है और अभी करीब 10 जिले में हमारा प्रवास हुआ है, बाकी 23 जिले बाकी हैं। तो प्रतिदिन हम 3 जिला जा रहे हैं और शाम को तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक करेंगे और गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चौपाल लगाते हैं, तो पूरा फीडबैक मिलता है कि हमारी योजना कहाँ तक गाँव में पहुँच पा रही है।
7: राज्य सरकार ने कहा है कि मछली पालन को प्रदेश में कृषि का दर्जा दिए जाने से इसकी लागत में लगभग 10% की कमी आई है। इससे मछली पालक

0: को बेहतर आर्थिक लाभ भी हो रहा है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक पर आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए मछली पालन अब उनकी समृद्धि का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि मछली पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए हैं। श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन को 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ रूपये का विदेशी राजस्व मिलने की संभावना है। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण और पीएम जनमन कार्यक्रम तथा पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और निगरानी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही अब केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच रायपुर में यूपीएससी की सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिले के 22 केंद्रों में 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा में 8,449 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर करना है। इस मौके पर विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं में आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलाई गई। आज के दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे YouTube चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आगामी 1 से 5 जून तक और इसके बाद 8 से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर दिन 3 से 4 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में

आयोजित की जा रही है, जिनमें रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 5 से 18 वर्ष के भारतीय नागरिक पात्र होंगे। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले होते हैं। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम सहित राज्य के 14 जिलों के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 5 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चल सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। धमतरी जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जिले के बेरोजगार युवाओं, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा डिप्लोमा धारकों के साथ ही कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा है कि जिला प्रशासन युवाओं को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। बेमित्रा में पिछले 15 दिनों से चल रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। इस दौरान शिविरों के माध्यम से करीब 6000 किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। रायपुर रेल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 19 से 22 मई तक स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। भिलाई पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 7.5 लाख रूपये की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंची सीलिंग से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अर्जुनी गांव में तालाब में डूबने से 8 और 9 वर्ष की 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इसी जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार चार पहिया वाहन के नियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कल 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें कि सुने, इस सफर का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए पेश है कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत। जावेद अख्तर की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत, और पसंद हमारे इन श्रोता साथियों की है। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय नमन अपार, लुथरा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, तिवरता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मोहन सिंह सहोदरी भाई मरकाम मनमोहन सिंह गिरजा भाई मरकाम चंद्रपाल मरावी और लक्ष्मी। दुर्ग से संतोष सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव।

बुड़गहन से राम दुलारी प्रजापति, राम शरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकाला, शशिकला प्रजापति, कवर्धा से राधेश्याम, वीना, विनय, शंकर, महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, नांदघाट कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिशका, तन्मय गजभिये, कुरावली

ईश्वर ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिशिका तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल विनित, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरित रमेश साहू, रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा ऋषभ, मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत, राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन, वली भाई, संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, परदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद रिफा नवाज, चात, बिलासपुर से छनुला शिवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से हमारे साथी हैं के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन सेन, माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा, फातिमा, नसरीन, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से हमारे साथी हैं संदीप, तेलंगाना से मोहम्मद बुराहुद्दीन, महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या, सविता, नागपुर से वैशाली, शैलेश, प्रिंस, एकांत, सुमित, ध्वनि, जालंधर से हैं मीना कौर और मन्नत नूर, यवतमाल से पंजाब, रामटके, यशोधरा, श्रव्या, रामटके, भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, अवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा, मोनिशा, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे, जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक ने भी इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो कार्यक्रम का पहला गीत मिस्टर इंडिया फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में लीजिए पेश।

श्रोताओं ईमेल करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए, पेश है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से। शब्द रचना समीर की है और धुन बनाई है जतिन ललित ने। और ईमेल के ज़रिए जिन श्रोताओं की फरमाइश हम तक पहुंची है उनके नाम हैं, पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, पंजाब से सुभाष, विमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित, गर्वी, हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया, बुल्डाणा से अमोल, शोभा, दीपाली, श्लोक, जनकपुरी से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वरी साहू, राजबत्ती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, नैला से प्रमोद कुमार साहू, वीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, गुमला से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस, गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश, लक्ष, कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमीला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, दमदरी से कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन, कुलगांव से पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश और पांडु रंग, रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान, मालोट पंजाब से राज शर्मा,

योगेश सौरभ शाइना और मैंडी शर्मा, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी गुरमंत और गौर मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा, धनौरी से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान, करनाल से सुधीर, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया कुमार, हरियाणा से जसबीर, जतिंदर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत, गंडई पटरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डीके, वासु, डॉली, पूर्वेश, इंदौर से नारायण, ललित, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग, बागबहरा से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन, पंजाब से भूषण खेरा, विशाल विशु, शालिनी वानी और आरबी खेड़ा, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, तनश्री, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह बैकरा, गुरनी, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या बैकरा ने भी इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी है। तो इन सभी श्रोता साथियों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में। लीजिए सुनिए।

0: हाँ बेटा,
1: आप ये अपने अटैची क्यों जमा रहे हैं?
0: मैं 10 दिन के टूर पर जा रहा हूँ।
1: अच्छा, तो लौटते हुए मेरे लिए जीन्स और टॉप जरूर लाना।
0: अरे ये तो मैं तुझे यहीं से दिलवा दूंगा।
1: आप जा कहाँ रहे हैं?
0: बेटा वो जगह दूर जंगलों में है, वहाँ हमारे यहाँ जैसे बाजार नहीं है।
1: ओ, तो पापा आपने एक जरूरी चीज तो रखी ही नहीं।
0: जरूरी चीज? अरे वो क्या?
1: आप भी लाती हूँ।
0: पता नहीं क्या ला रही है।
1: ये भी रख लीजिए।
0: अरे ट्रांजिस्टर, मेरी अच्छी बिटिया, ला दे मुझे।
2: घर से दूर भी अपनों के साथ, जब हो रेडियो पास।
3: श्रोताओं, इसके साथ ही ईमेल करें कि सुने, ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। चलिए अब रुक करते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

जय जोहार झोंकाओ अपन मयारू चैतू भाई के। किसान भाई हो हमन देखत हन के किसान भाई मन के सहायता बर, किसान मन के आय ल बढ़ाए बर हमर भारत सरकार के डहर ले आनी बानी के योजना चलत है ना भाई। ऐसने एक ठो अब्बड़ बढ़िया और बहुत महत्वपूर्ण योजना हमर किसान संगवारी मन बर चलत है संगवारी हो, जेला हमन कही थन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY। ये नाम आप मन जरूर सुने हैं। ये सरकार के एक प्रमुख कृषि बीमा योजना है संगवारी हो। एकर शुरुआत हो रही से सन 2016 में और एकर उद्देश्य बहुत बढ़िया है। ये योजना के मुख्य उद्देश्य हमर किसान भाई मन ला प्राकृतिक

आपदा, कीड़ा बीमारी ले उखर फसल ला जोन होइया नुकसान ओखर बर उखर भरपाई करे बर उनला आर्थिक सहायता पहुंचाए बर और उखर मनोबल ला बढ़िया बनाए रखे बर किसान मन ला वित्तीय सहायता देना, जेखर ले हमर किसान भाई मन के जोन फसल में नुकसान हुए ओमा उमनन के आर्थिक जोन स्थिति है वह चरमरा के न बैठे। एकर बर सरकार आर्थिक सहायता ये माध्यम से पहुंचाते। आयल बनाए रखना ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख उद्देश्य है। किसान मन ला प्राकृतिक नुकसान ले बांचे बर बहुत कम प्रीमियम ये बीमा मा भरे बर पड़ते। खरीफ के फसल मा ये प्रीमियम के राशि हवे 2% मात्र, रबी के फसल मा 1.2%, वाणिज्य और बागवानी के फसल मा 5% जमा करे बर पड़ते और बांचे जोन राशि है ओला हमर केंद्र सरकार और राज्य सरकार डहर ले सब्सिडी के रूप मा भरे जाते। प्रधानमंत्री फसल बीमा के जोन लाभ है ये है कौन स्थिति मिल सकत है, तो जिसे अकाल पर गए, दुकाल पर गए, है ना भाई, समय में पानी नहीं गिरीस, बहुत ज़्यादा पानी गिर दीस, बाढ़ आ गए, फसल को हम बहा गए और धान बढ़िया छटके है कि कोनो फसल पाके के कगार में है और गदगदा के कहूँ करा बरस गए, ओला बरस गए, आंधी तूफान हो गए, चक्रवात आ गए, भूकंप हो गए, तो फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होते माँ। संगे संग मौसम बेमौसम जब बदलते तो फसल में कीड़ा बीमारी एखर प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। कभू कभू हमन देखथन के फसल कटाई हो रही थे वतका पानी गिर देते बेमौसम के फसल हमार करपा मन घला बुहाए लगते खेत ले दूसर खेत में सर जाते पटुआसन, तो कहे के मतलब ये जौन स्थिति है एमा फसल ला जौन नुकसान होते ओखर ले बचाए बर ये राशि मिलते संगवारी हो। आओ संदेश ल सुन लेथन फिर गोट बात करबो।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: संगवारी हो, अब आप मन कहत हो के चैतू भाई फायदल तो बता दिए, कैसे मिलही के फेरों में जुड़ना कैसे है, का करे बर पर ही, ये हो आप मनन की विचार हो तो है ना। तो सुनो चेत लगा के भाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर कौन किसान पात्र रहे, तो ये खरबर देश भर के जम्मो किसान पात्र है जेखर नाव में खेती के जमीन हवे, जिन मन अपन घर में खेती बाड़ी में बटई थे वह, ये जम्मो जन मन पात्र है। जिन किसान मन बैंक ले लोन लेते है ना केसीसी के माध्यम ले, उखर तो ये जो बीमा हमें बैंक हा स्वयं खुदे कर देते। फिर जो किसान मन ऋण नहीं लेवाए, लोन नहीं लेवाए, ओमन ला अपन पास के जोन बैंक है ओखर शाखा में, चाहे कॉमन सर्विस सेंटर है सीएससी या फिर राज्य के कृषि विभाग के माध्यम ले आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराए बर का कागज लगही, यहू ला आप मन चेत करके सुनो। किसान के

पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड है, मतदाता परिचय पत्र है ना भाई, वोटर आईडी, ओ लगी, ओखर फोटो कापी, खेत के जमीन है तो ओखर कागज लगी, जेमा खसरा है, खतौनी है, जमीन के नकल है, ये सब के फोटो कापी, बैंक खाता के जानकारी और बैंक के पासपोर्ट जो पासबुक है ओखर फोटो कापी, संगे संग दू ठन पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो, इतका कन लगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और ज़्यादा जिसे आप मतलब जानकारी पाना है तो ओखर आधिकारिक वेबसाइट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मैं जाके आप मन जानकारी ले सकत हो। तो हम तो यही कि वो संगवारी हो, सरकार जौन है कदम कदम मा हमर सहयोग बर खड़े है, बस शर्त ये है कि ओखर हमन जानकारी लेके ओखर लाभ उठाएं, काबर के आज के समय है तो हमन देखथन खेती बाड़ी गला है वैज्ञानिक तरीका से हो लगे है, उन्नत तकनीक से हो लगे है, नवा नवा यंत्र है, नया नया मशीन है और नया नया तकनीक ले खेती करे जा रहे है, कम मेहनत में, कम पैसा में, कम लागत में बहुत ज़्यादा आमदनी के व्यवसाय बन गए है आजकल खेती है। बस हमला जरूरत है कि हम जागरूक रही और जागरूक रही के चेत लगा के सरकार के जो योजना है उमा बिल्कुल जुड़े रही, काबर के सरकार योजना बनाते और वो योजना तभी सफल हुआ संगवारी हो जब उमा हमन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेबो और ओला समझ के अपन जौन खेती बाड़ी है उमा लगबो। देखो आप मन अतका कन यंत्र है खेती बाड़ी के आजकल और वो सब यंत्र मन में सब्सिडी घला देते सरकार है ना भाई, संगे संग सिंचाई के जो माध्यम है अभी के पानी के कतका बचत होते, और पानी के बचत के बात करत हम संगवारी हो ये समय देखो झवा जब तैसे तो घाम करत है, इसने स्थिति आगू चल के रही तो भगवान जाने का हो है, तो पानी तो बचत करना हमार पहली कर्तव्य बन गए और पानी ला बचाए बर पानी ला बलाए बर पेड़ के बहुत आवश्यकता है, तो आप मन ला बिल्कुल चेत करके और बहुत भीड़ के पेड़ जरूर लगाना है, जेन में खाली जगह आप लोग लगाए, चाहे तालाब के पार हो, चाहे मरघटिया हो, चाहे सड़क के तीर हो, चाहे स्कूल हो, पेड़ आप मन जरूर लगाना है, काबर के जो बाढ़त गर्मी है और झुलसा देह वाले जो गर्मी है एखले बाँचे के एक ठो उपाय है पेड़, काबर के कूलर पंखा एसी एहू मन कतका कनऊ बढ़त रही तो एक समय के बाद हूमन काम करना बंद कर देते, तो हमन ला प्राकृतिक कूलर और एसी के सहारा लेना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है, तो हम संकल्प करी कि हमार पर्यावरण समृद्ध करबो, ओखर संवर्धन ओखर संरक्षण और हरियर पेड़ ला बिल्कुल नहीं काटने हैं संगवारी हो, सही मायने में देखे जाए ना तो हरियर पेड़ हमार फेफड़ा है, एक फेफड़ा हमार हृदय में हमार छाती में है तब एक ठो फेफड़ा हमार पेड़ में हवे, तो हम तो यही कहबो कि पेड़ लगाओ और चलो गोट बात करत करत पहुँच गए, बेरा हो गए किसान वाणी के, तो चलथन किसान वाणी में संगवारी हो।

किसान वाणी कार्यक्रम में जो कहो अपन मैं आरू चेतु भाई के राम राम जय जोहार। संगी हो महिला जिन घर में शिक्षित है, बेटी मन जिन घर में शिक्षित है, ओखर घर के समृद्धि ल का पूछना है, काबर के ए मनन हमन देश के हमर परिवार के मेन धारण करने वाला है, रीढ़ के हड्डी है। और आजकल हमन देखत हन गांव गांव में महिला स्व सहायता समूह आज के समय में खुले हवय और महिला मन ओमा जुड़ गए हैं, जुड़ के बढ़िया आर्थिक रूप ले आत्मनिर्भर बनत हैं। उखर सामाजिक विकास ला ये जो स्व सहायता समूह हैं ओखर माध्यम से बढ़ाए जा रहे हैं। आनी बानी के सरकारी योजना मन के जो लाभ है ओला ये मा जो जुड़े महिला है ओ मन पावत हैं, आत्मनिर्भर बनत है, स्वावलंबी बनत है और सशक्त बनत है। समूह ले जुड़ के हमर दीदी बहनी मन छोटे छोटे बचत करत हैं। जी हाँ।

0: आर्थिक अनुशासन घलो सीखत हे। उहे जन मन समूह में थोर थोर पैसा जमा करत हे, ओला समूह के कोई महिला है ओका जरूरत पड़गे तो बहुत कम ब्याज में दे देते, जेखर ले वह उपयोग करके अपन कामला बना लेते। ओखर से ये फायदा होते कि साहूकार मन लंगले महंगा महंगा ज्यादा ज्यादा ब्याज में पैसा लेहे बर नहीं पड़े। जौन महिला मन ह स्व सहायता समूह बनाए हैं और समूह में जुड़े हैं, ओमन ला बैंक तको आसानी से बहुत कम ब्याज में लोन दे देते, जेखर ले ओमन ला पैसा बर भटके बर नहीं पड़े। और जन सरकारी योजना हैं जैसन के पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एकर माध्यम ले समूह ले जुड़े जौन दीदी बहनी मन है, महिला मन है, ओ मन ला कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी और जल सखी जैसन रोजगार मिलत है। कौशल विकास और प्रशिक्षण जेमा सिलाई, जैविक खेती, मोमबत्ती बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना जैसन जो रोजमर्रा के जिनिस है ये ला बनाए के प्रशिक्षण तको दे जाते। समूह में एक संग जब उमन काम करते, घर ले बाहर निकलते चार दीवारी ले, तो उमन में नेतृत्व क्षमता तको बढ़ते, आत्मबल बढ़ते, आत्मनिर्णय लेहे के क्षमता आते और ये प्रकार ले घर में परिवार में विकास होए लगते। तो हम तो ये कि वो हमार दीदी बहनी मल्ला स्व सहायता समूह गांव में अगर नहीं है तो बनावा और गांव में है तो मैं जुड़ के और अपन परिवार के, समाज के, राज्य और देश के विकास में सहयोग देवा। संगी हो आप मन अगोरत हुआ फोन इन कार्यक्रम ला है ना, जेम आप मन अपन गोड बात करे रही था समस्या के समाधान पाए बर, तो फोन इन कार्यक्रम ला शुरू कर थन जेमा विषय है नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिल्पा कौशिक, विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। इखर सुगोड़ बात करे है संचालन करे हमार मंगू भैया मन, आओ सुनथन ये फोन इन कार्यक्रम ला।
1: कार्यक्रम में आज जम्मू संगवारी मन के स्वागत हवे, मंगू भैया के राम राम जय जोहार। आज के फोन इन कार्यक्रम के विषय हवे नील हरित काई और हरी खाद के उपयोग। ए विषय ले संबंधित जौन भी समस्या आई समाधान करे खातिर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हवे डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी मन, जौन हमें विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में। तो सबले पहले तो स्वागत कर लेते हैं डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी, आप मन के हमारे स्टूडियो में स्वागत हवे, आप मन ला राम राम।
2: राम राम मंगू भैया।
1: आज के विषय जौन है बहुत बढ़िया विषय है, जैसन की खाद के संकट ला देखत हुए आज के समय में देखे जाए समस्या है और खेती किसानी आगू करना है तो खरीफ के धान के फसल तो लेने चलेना है,
2: लेने चलेना है।
1: अब ओकर बगैर तैयारी करना है तो आगू चले आगू कर किसान भाई मन तैयार रही तो वो समय में फिफियाई की जरूरत नहीं पड़ी और जो खाद के संकट है ओकर निवारण खातिर अभी ले हम प्रयास जारी कर दिए हैं। वैज्ञानिक मन शासन द्वारा सभी डहर ले कहे जाए तो प्रयास जारी है। अब कमर कसना है हमारे किसान भाई मन ला और तैयारी आगू चले आगू रखना है। जब तक के हमारे किसान भाई मन के फोन आवा है कुछ गोट बात कर लेते हैं ये विषय में, जैसन की नाव हवा नील हरित काई के, एकर नाव कैसे पड़ी नील हरित काई के और कौन कौन से फसल में एकर उपयोग ला करे जा सकत हवे तेला पता पहले अपन।
2: जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि पहले तो किसानों को ये पता रहे कि नील हरित काई जिसे हम शैवाल भी कहते हैं, इसे हम लोग बीजीए के नाम से भी जानते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसका उपयोग धान की खेती में मुख्यतः किया जाता है और इसको करने से किसान को बहुत फायदा भी है और किसान इसमें से मतलब कह सकते हैं कि धान की खेती में अगर हम शैवालीय जैव उर्वरक जिसे हम लोग नील हरित काई का उपयोग बोलते हैं ये करेगा तो 20 से 30 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगा और उसके साथ साथ 800 किलो हम लोगों को सेंद्रिय पदार्थ मिलेगा। मतलब जो हम लोग पहले गोबर की खाद डालते थे तो हमारा खेत में सख्त नहीं था, उसमें थोड़ा भुरभुरापन था, उसके अंदर की जो नमी है वो भी बना के रखेगा। अच्छा। और खेत का जो बोलना चाहिए उसको मिट्टी को सख्त होने से बचाएगा।
1: ये पहली कलर हमारे जुड़त हमें कौन बोला था, कहाँ बोला था जी?
3: हाँ मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था वहाँ। दीदी
2: हाँ भैया।
3: हाँ दीदी, ये जैसे नील हरित काई का होते दीदी और एकर धान में जैसे हमन उपयोग करना चाहते हैं तो कैसन ढंग ले उपयोग कर बन दीदी यही

0: जम्मो बात ल पूछे बर फोन लगाए हूँ दीदी।
1: हाँ भैया, बने बने सवाल करे हस। नील हरित काई जो होते ए हमर हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और बीजीए भी एला कहथन, और एला धान के खेत में उपयोग करे जाते, और धान में रोपाई के 7 दिन बाद नील हरित काई डालना है, और 4 किलो प्रति एकड़ के दर से, समझ लेवा 10 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से नील हरित काई ला रोपाई के 7 दिन बाद हमला डालना।
0: अच्छा अच्छा दीदी, हाँ दीदी,
1: हाँ
0: हाँ हाँ दीदी बताओ दीदी बताओ।
1: हाँ, तो इसमें जो नील हरित काई का जब हम अपने खेत में उपयोग करेंगे तो धान में 20 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से कम होगा और प्रदान करता है ये, और इसके साथ ही साथ जो 800 किलो हमारा सेंद्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर हमारे खेत में मिलेगा वो हमारी नील हरित काई से ही मिलेगा।
0: अच्छा अच्छा दीदी, हाँ दीदी, हाँ।
1: और इसका नील हरित काई का प्रयोग करने से किसान भाई जो हैं वो अपना 10 से 15% फसल का उत्पादन ले सकते हैं,
0: अच्छा
1: जो कि
0: अच्छा दीदी,
1: वृद्धि कर देगा हमारा।
2: हाँ, बाढ़ी,
1: हाँ, मतलब 10 से 15% हमारा बढ़ जाएगा नील हरित काई का उत्पादन लेने से, क्योंकि हम लोग जैविक खाद तो कुछ उपयोग कर नहीं रहे हैं,
0: हाँ हाँ दीदी,
1: हमारा घुरुआ के खाद खत्म हो गए हैं।
2: नारायण प्रसाद वर्मा जी, आप मन के समस्या के निदान हो गए, बढ़िया।
0: हाँ बढ़िया, हम समस्या के निदान करी दीदी है, एक बार दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद,
0: धन्यवाद भैया, जय जोहार, राम राम।
2: कौन बोला था, कहाँ ले बोला था जी?
3: हाँ मैं भगत राम पटेल बोला था भैया, सिंगारबाड़ी घुटकुले।
2: आप मन के स्वागत हवा फोन इन कार्यक्रम में भगत राम पटेल जी, आप मन हमेशा फोन करते हो, आप मन के फोन आते और जरूर आप मन जुड़े थे हमारे कार्यक्रम ले। आज का समस्या है तेला बता आप मन।
3: हाँ हमारे जिन समस्या है, जिन हम प्राकृतिक खेती बढ़ावा देना चाहते हैं तो जिन हरित क्रांति, जिन नील हरित क्रांति जिन खाद है ओकर उपयोग का विशेषता है उपयोग के, एक बारे में जानना चाहते रहे।
1: बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए जो नील हरित काई है इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे या बीजीए बोलते हैं, और नील हरित काई का उपयोग करेंगे तो हमारे यहाँ हमारे जो नील हरित काई है वो 20 से 30 किलो नाइट्रोजन हमारे को उपलब्ध कराएगा प्रति हेक्टेयर, और उसी के साथ साथ हम लोगों को 800 किलो सेंद्रिय पदार्थ, मतलब जो हमारे बोलना चाहिए बायोमास, जो बोलना चाहिए रेशा, इस ये हमारे खेत को प्रदान कराएगा, और इससे हमारे 10 से 15% हमारा उत्पादन में वृद्धि होगा। नील हरित काई का उपयोग के लिए 10 किलो प्रति हेक्टेयर नील हरित काई आप अपने खेत में धान की रोपाई के 7 दिन बाद डालें। इसको डालने से हमारे खेत में हमारा जो नाइट्रोजन है उसकी पूर्ति होगी, क्योंकि ये वायुमंडल में जो हमारा नाइट्रोजन है उसको अपने अंदर सोखेगा और वापस हमारे खेत में डाल देगा।
2: हाँ भगतराम पटेल जी,
3: हाँ भैया,
2: आपला समझ में आगे हुई, आप उपयोग करिए नील हरित काई के।
3: हाँ भैया, बहुत सुंदर जानकारी आप मन प्रदान करवाए है, इसलिए बहुत बहुत आप मल्ला और डॉक्टर साहब मल्ला बधाई याद है।
1: धन्यवाद,
2: आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद फोन करे है कर बार। तो ये तो आप बताया नील हरित काई होते का,
1: हाँ,
2: और एकर उपयोग कौन कौन से फसल में करे जाते,
1: हाँ,
2: ये बात ला बता दिया। नील हरित काई के अगर बात करथन तो एकर महत्व घला बता देता।
1: हाँ,
2: तो अच्छा होती।
1: देखिए नील हरित काई हमारे धान के फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, और इसको लगाने से हमारे यहाँ 20 से 30 किलो नाइट्रोजन की कमी प्रति हेक्टेयर वो पूरी करेगा, और उसके साथ साथ जो 800 किलो हमारा सेंद्रिय पदार्थ है वो हमारे खेत में आएगा, और अगर नील हरित काई का किसान उपयोग करता है अपने यहाँ टाका बनाता है तो उससे 10 से 15% उसका फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा।
2: गोड बतला आगू बढ़ा, उत्पादन कैसे करे जा सकत हवे और गड्ढा कैसे बनाया जाए एकर बर, नील हरित काई अगर बनाना है
1: हाँ।
2: तो एकर बर बता देता कैसे कैसे ढंग ले तैयार करें।
1: जो किसान भाई अपने यहाँ नील हरित काई बनाना चाहते हैं उसके लिए वो कच्चा और पक्का दोनों टाका बना सकते हैं, टाका अपनी सुविधा के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग भी ये बोलते हैं कि 1 से 1.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा और 9 इंच गहरा उसका गड्ढा होना चाहिए।
2: अच्छा, अच्छा।
1: अगर किसान के पास वो पक्के फर्श पर करे और उससे ईंटे से बना ले और उसमें पॉलीथिन बिछा दे,
2: अच्छा।
1: पतली पॉलीथिन आती है, और इससे ये होगा कि उसमें पानी जमा होगा, तो पानी जमा होने से फिर हम लोग इसका उत्पादन आसानी से कर पाएंगे।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
1: और ये गड्ढा तैयार करने के बाद हम लोगों को मिट्टी की व्यवस्था करनी है, और मिट्टी के साथ फिर हम सुपर फॉस्फेट मिलाएंगे। सुपर फॉस्फेट के साथ साथ हम लोग चूना भी बोलते हैं, अगर सुपर फॉस्फेट लेंगे तो चूना नहीं लेंगे।
2: अच्छा अच्छा, अच्छा।
1: हाँ, उसको और अच्छे से अगर ये समझें तो

0: हम लोगों को इसमें कन्हार और डोरसा मिट्टी चाहिए, और इस मिट्टी को जैसे अगर हिसाब बोला जाए तो इस टांके के हिसाब से जो हमारा 1 से 1.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा, 9 इंच गहरा अगर हमारा टांका है, तो इसमें हम लोगों को कम से कम अगर बोला जाए तो हिसाब से हमारा 25 से 30 किलो मिट्टी लगेगा। ये हमारी काली मिट्टी होनी चाहिए। इस मिट्टी में हम सुपर फॉस्फेट मिलाएंगे। क्या होता है कि सुपर फॉस्फेट जो है ये इस काई को बढ़ने में, फॉस्फोरस जो है बढ़ने में मदद करता है, तो 150 से 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें मिट्टी में मिला लेंगे, और फिर इस मिट्टी को हमारे जो हमने टांका बनाया है उसमें बिछा देंगे, पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद हम एक दिन छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारी मिट्टी है वो बैठ जाएगी और ऊपर पानी दिखेगा। जब ये स्थिति हमको दिखेगी तो उसमें हमको हमारा जो मदर कल्चर है, बीजीए का मदर कल्चर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में भी है, कृषि महाविद्यालय में भी है, हमारे यहाँ की चोरभट्टी का जो बायो कंट्रोल लैब है वहां से भी किसानों को उपलब्ध हो जाएगा, और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 100 ग्राम नील हरित काई का मदर कल्चर किसान उस टांके में डालेगा। और ये डालने के बाद जो हमारा पानी है वो 3 से 4 इंच बना के रखेगा, पानी उसमें मेंटेन करके रखेगा, और फिर उसके बाद उसको रहने देगा। 3 से 4 दिन बाद आप उसमें देखेंगे कि रंग बदलना शुरू हो जाएगा, काई दिखने लगेगी, और 10 से 15 दिन में, मतलब जैसे हमारी मलाई जमती है दूध में, वैसे हमारी काई पूरी दिखने लगेगी।
1: मलाई और काई।
0: हाँ, मलाई और काई, जैसे हम मलाई को एक तरफ से निकालते हैं वैसे ही इसको भी हम लोग निकालते हैं, तो एक तरफ से इसका निकालने का भी प्रक्रिया रहता
1: बढ़िया।
0: है।
1: कतेक मात्रा में खाद रही यह बात ला बताना जरूरी है, और इसमें डालना कैसे ढंग से है, और काबर डालना जरूरी होते है, सब बात ला थोड़ा बता दे।
0: हाँ, देखिए इसमें हम लोग सुपर फॉस्फेट का प्रयोग
1: अच्छा।
0: करेंगे जो कि हमारा 150 से 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रहेगा,
1: अच्छा अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: इसको डालने के लिए पहले मिट्टी में मिला लें। दो तीन तरीके हैं, क्योंकि हमने वहां पे पन्नी लगा रखा है, पॉलिथीन लगाया है,
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो वो फटे मत बोल के पहले मिट्टी को कूट लें अच्छे से,
1: हाँ हाँ
0: उसके साथ हमारा सुपर फॉस्फेट मिला लें। सुपर फॉस्फेट मिलाने के बाद उसको चारों ओर पहले डालें, फिर बीच में डाल के
1: जी
0: एक, मतलब जो पतला परत है वो तैयार करना पड़ेगा, और वो तैयार होने के बाद फिर उसमें हम पानी डालेंगे।
1: अच्छा
0: कई जगह ये भी बोला जाता है जहाँ सुपर फॉस्फेट नहीं है वहां ये बोलते हैं कि 200 से 250 ग्राम चूना भी डालिए।
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ, चूना डालने से कैल्शियम की जो मात्रा है, कैल्शियम की जो कमी है, फास्फोरस कैल्शियम, वो हमको मिल जाता है, लेकिन हमने सुपर फॉस्फेट का प्रयोग किया है तो चूने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी।
1: ये जो आप अभी चूना के बात करे है, तो नीलहरित काई में चूना डालना है, बुझा चूना डालना है, किसी ढंग से कहाँ
0: हाँ,
1: उपयोग करना है, थोड़ा
0: ये आपने
1: फोर
0: बहुत
1: याक
0: अच्छा
1: बता
0: बहुत अच्छा सवाल
1: खबर
0: किया।
1: की
0: ये जो
1: आपने मन
0: चून
1: बुझा चूना कभी की था,
0: हाँ हाँ
1: कभी
0: हाँ
1: चूना डालना की दे था।
0: देखिए चूना क्या होता है, चूना चूना और बुझा चूना दोनों अलग चीजें हैं। देखिए चूना अगर सीधा छुएंगे तो गरम गरम लगता है, जब उसको पानी में डाल के रख देंगे उसका मतलब होता है बुझा चूना, है ना, वो बुझा चूना का हमको प्रयोग करना है, क्योंकि ये हमारा शैवाल है, और शैवाल हमारा अगर हम कच्चा चूना डाल देंगे तो वो तो जला देगा, तो इसीलिए हमको बुझा हुआ चूने का
1: हाँ।
0: प्रयोग करना है।
1: किसान भाई मन पर बहुत जरूरी है कि
0: बहुत
1: है
0: जरूरी
1: ना
0: है
1: भाई, समझने
0: जानने
1: में
0: में।
1: जरूरी है,
0: हाओ हाओ
1: नहीं तो चूना लाई और डाल दिन, है ना,
0: डार दिन।
1: तो फायदा की जगह नुकसान हो जाएगा।
0: हाओ
1: तो ये तो बड़ा बढ़िया फुरियाक बता दे आप। नील हरित काई के बात करते छन, अगर कहूँ हरी काई दिखे तो ओकर बर का पहचान है, कैसे ढंग ले ला समझबो, ओकर उपचार का है, कैसे ढंग ले करें।
0: देखिए काई हर खेत में होती है, अब हमारी नील हरित काई भी है और हरी काई भी
1: हरी
0: है,
1: काई।
0: इसको पहचानने का भी एक
1: हाँ
0: किसान को होना है।
1: हाँ
0: तो जब हम हमारी नील हरित काई को हाथ में लेते हैं तो समझ लीजिए जब आप उसको हाथ में लेंगे तो मिट्टी ही है,
1: अच्छा
0: गोबर जैसे हो जाएगी, मिट्टी
1: अच्छा
0: लुगदी बन जाएगा।
1: लुक
0: लेकिन जो हमारी काई है जो हमारे धान के फसल में नुकसान पहुंचाती है,
1: अच्छा
0: जब आप उसको हाथ से उठाएंगे तो वो रेशा रेशा दिखेगा,
1: अच्छा अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: जब वो रेशा रेशा दिखेगा तो हमको नील हरित काई से अलग है वो हमारी काई जो हमारे खेत में नुकसान पहुंचाएगी, उसके लिए हम लोग नींदा नाशक का प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो नींदा नाशक के लिए 0.05% का घोल बनाना है कॉपर सल्फेट का, मतलब जो नीला थोथा होता है उसका 0.05% का घोल बनाएंगे। इसको ऐसा समझ लीजिए कि आधा ग्राम नीला थोथा 1 लीटर पानी में मिला के उसको छिड़काव कर देना।
1: अच्छा, अच्छा।

0: तो इससे जो हमारे इसमें हमारे टंकी में या हमारे उसमें आएगा हरा काई वो
1: अच्छा
0: खत्म हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब एक डर कहे जाए तो नील हरित काई है, फायदे वाला है,
0: फायदा वाला है
1: और ये खलनायक के रूप में कहे जाए तो
0: हरी
1: हरिकाई
0: काई
1: हरियर
0: खलनायक
1: काई
0: है
1: है तेना,
0: बिल्कुल।
1: एक प्रकार के निंदाई
0: हाँ
1: जेकर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, एकर उपचार करें ये ढंग ले जैसे आप बताए तो एकर नियंत्रण हो सकत हवे। अब कतेक मात्रा में उपयोग करना एकड़ पाछू नील हरित काई के करे जा सकत है किसान भाई, मतलब कैसे ढंग ले उपयोग करना है यू बात ला बताना है आप ला फुरियाक बता
0: जब हम लोग टंकी बना लेंगे,
1: देता।
0: हमने मदर कल्चर जब डाल दिया हमारे टंकी में, तो 3 से 4 दिन में आप देखेंगे
1: अच्छा
0: अभी का जो मौसम है 40-45 डिग्री
1: अच्छा
0: वो इसके लिए बहुत सही है। इसको
1: जी
0: खुले में बनाना है
1: हाँ
0: और पक्के फर्श पे बनाए तो भी अच्छा है, और इसके लिए 3 से 4 दिन बाद जब देखेंगे उसमें तो उसमें हल्का रंग बदलना
1: अच्छा
0: शुरू हो जाएगा,
1: अच्छा अच्छा
0: धीरे
1: अच्छा
0: धीरे रंग बदलेगा, और फिर 10 से 15 दिन में एक मोटी परत तैयार हो जाएगी, मलाई जैसे परत तैयार हो जाएगी। वो पहली बार हम निकाल लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा चाहे तो उसमें सुपर फॉस्फेट एक बार और डलवा सकते हैं, छिड़काव ऐसे ही कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करते हैं तो भी हमारी काई ऊपर आ जाएगी। एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये
1: अच्छा
0: जो हमारी काई है
1: हाँ
0: भरी गर्मी में धूप
1: अच्छा
0: में ऊपर आती है, पानी
1: अच्छा
0: के ऊपर आएगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन जैसे जैसे शाम होगी ये नीचे बैठ जाती
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: जब
1: अच्छा
0: इसको निकालने का समय हो तो 2, 2:30, 3 बजे के आसपास, जब ये
1: हाँ
0: पूरी तरह से ऊपर आ
1: ऊपर
0: जाए,
1: में आ जा रहा है,
0: हाँ मलाई जैसे, तो
1: समय का
0: इसको,
1: ध्यान रखना है
0: हाँ
1: निकालने
0: समय
1: से
0: का ध्यान, तो फिर
1: बढ़िया।
0: इसको एक तरफ से निकालना है। पहली बार जो हम निकालेंगे वो
1: अच्छा
0: हमारा मदर कल्चर रहेगा,
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: फिर एक बार और हम निकालेंगे तो दूसरा हमारा मदर कल्चर
1: अच्छा
0: रहेगा।
1: अच्छा हाँ
0: इसमें हमको पानी की जो मात्रा है वो बना के रख के
1: अच्छा
0: चलना
1: अच्छा
0: है,
1: अच्छा अच्छा
0: ठीक है।
1: अच्छा
0: ये दोनों परत निकलने के बाद जो हमारा पानी है टंकी में उसको उसी में सूखने देना है, फिर उसके बाद जो हमने मिट्टी डाली है तो ये एक हमारा पूरा खाद तैयार हो
1: अच्छा अच्छा
0: जाएगा।
1: अच्छा
0: उसको मिट्टी सहित निकालना है, कूटना है, और 4-4 किलो का पैकेट आप बना के रख लीजिए।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: हाँ, और धान में रोपाई के 7 दिन बाद इसको डालना है।
1: अच्छा
0: जिस खेत में हम नील हरित काई डाल रहे हैं उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर पानी की मात्रा रखें,
1: अच्छा
0: और 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नील हरित काई का उपयोग अपने खेत में किसान रोपाई के 7 दिन बाद
1: मतलब
0: करें।
1: ये नीलहित कैला भी बना के पैकेट में
0: हाँ,
1: रख ले मैं,
0: अभी
1: वो
0: बना
1: समय काम आही
0: वो समय काम आही,
1: बढ़िया बहुत अच्छा, मतलब समय अच्छा है
0: समय अच्छा है,
1: और
0: मौसम
1: तैयार करे
0: अच्छा
1: जा
0: है,
1: सकत है
0: गर्मी
1: बहुत
0: है।
1: बढ़िया।
0: हाँ
1: वो थोड़ का न रोकबो हम कि ये हरी काई के जैसे बात करा था नीलहित काई के है ना भाई, तो उत्पादन में पानी के जैसे कहे है तो एकर का
0: हाँ
1: महत्व किसी ढंग से करें इनका
0: देखिए,
1: मेंटेन
0: इसमें
1: प्रबंधन।
0: पानी जो है, पानी का बहुत महत्व है, पानी को हमको इसमें मेंटेन करके रहना रखना
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा
0: जैसे
1: अच्छा
0: हम धान में छेंच पानी भर के रखते हैं ना,
1: हाँ
0: वैसे ही इसमें 8 से 10 सेंटीमीटर पानी भर के
1: रहना
0: रखना है।
1: चाहिए जरूर।
0: जैसे जब हम हमारा टांका तैयार करेंगे, ऊपर हमने पन्नी लगाई है, इसीलिए लगाई है ताकि हमारा पानी रिस के कहीं बाहर मत जाए या
1: अच्छा
0: कहीं इधर उधर मत हो, क्योंकि जैसे उसको पानी मिलेगा तभी वो उसमें अपने
1: ठीक है
0: स्पोर्स से वो बड़ा होगा,
1: अच्छा अच्छा
0: इसलिए
1: अच्छा
0: पानी को इसमें मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है।
1: जैसे ना अभी बताया है नील हरित काई के
0: जी
1: उत्पादन तो बता दिया, ये जतका एरिया में लगाए गए तो कते कन उत्पादन हो सकते
0: ये देखिए चार
1: पैकेट
0: चार
1: में कते कन
0: हाँ
1: बन सकते तो
0: जैसे
1: कन।
0: 20 से 25-30 किलो आपका मिट्टी बना है तो 30 किलो आपके पास खाद तैयार हो गई, समझ
1: बिल्कुल
0: लीजिए।
1: अच्छा
0: जितनी आपकी मिट्टी है उससे 5-10 किलो ज्यादा, क्योंकि हमारा उसमें ये भी मिक्स होगा, इसका भी कुछ कुछ मिक्स होगा, तो वही 30 से 35-40 किलो एक टांके में आपका बन जाएगा। अगर आपने 1 से 1.5 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा आपने टांका बनाया है,
1: अच्छा
0: नौ
1: अच्छा
0: इंच
1: अच्छा
0: गहरा, तो उसमें समझ लीजिए कि आपका 40 किलो तो आपके पास खाद तैयार
1: अच्छा
0: ही
1: अच्छा
0: हो
1: अच्छा
0: गया।
1: अच्छा ये पैकेट है जैसे तो कहे हा जेमा नील हरित काई रखना
0: अरे
1: है
0: बोरे में
1: तो
0: रखिए,
1: साधारण ऐसे
0: बोरे में
1: मतलब
0: रख ले,
1: ढाक के
0: साधारण।
1: रखना है, छील के रखना है कि पैक करके रखना है, ऐसा कुछ थोड़ी है,
0: नहीं, ये तो
1: खुला ले तो कुछ
0: मिट्टी ही
1: गड़बड़ हो
0: है,
1: जाएगी।
0: देखिए ये मिट्टी है हमारी,
1: अच्छा अच्छा
0: इसको कूट देंगे, इसके
1: हाँ
0: अंदर ऐसे समझ लीजिए जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट रखते हैं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में हमारा थोड़ा सा नमी आ
1: हाँ
0: जाता
1: हाँ
0: रहता है, वो धीरे धीरे एकदम सूखते जाता है, उसको जैसे भर के रखते हैं वैसे इसको भी भर के रख लेना है,
1: अच्छा
0: सामान्य पन्नी में भी भर के रख सकते हैं, किसान अपनी सुविधा के हिसाब से देख ले।
1: बढ़िया हाँ। ये तो हो इस नील हरित काई के हम जानकारी महत्व उपयोग के बात करें,
0: जी
1: अब जैसा कि आज के विषय में हरी खाद के गला हवे एकर उपयोग कैसे ढंग ले करना चाहिए, तैयार कैसे करें सबले पहली बता आप।
0: देखिए, हरी खाद की हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे किसान भाइयों के पास समय है, वो हरी खाद अपने खेत में लगा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: मतलब हमको 30 से 35 दिन पहले हमारा हरी खाद हमारे खेत में लगाना है, और

0: के बाद, फिर फूल आने के पहले, जैसे हरी खाद के रूप में हम ढेंचा, सनाई, मूंग, उड़द, लोबिया, इसका प्रयोग करते हैं। और ये हमारा ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे ऐसे फसल होते हैं जो वायुमंडल में हमारा नाइट्रोजन है, अच्छा, उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और वापस हमारी जमीन में दे देते हैं। अगर हम हरी खाद का उपयोग करते हैं तो 50 से 60 किलो नाइट्रोजन प्रति कार्बनिक खाद जो है, हाँ, प्रति हेक्टेयर वो हमारे खेत में आएगा। ये फसल हमको अभी लगाना है, अच्छा, मतलब अब हमारा जून आ रहा है तो उसमें किसान भाई लगा ले। किसान भाई हमारे यहाँ अभी मई से तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे दलहनी फसल जो हमारी रहेगी वो हम किसान भाई को बोलते हैं कि वो लगाए, ढेंचा लगाए, सनाई लगाएं, लोबिया लगाएं, जो भी उनके पास बीज उपलब्ध हो रहा है हाँ वो लगाएं। और फूल आने के पहले,
1: अच्छा,
0: मतलब इसका भी एक तकनीक है, हाँ, कि फूल आने के पहले उसको हमको मताई करके हमारे खेत में मिलाना है,
1: वही में दबा,
0: हाँ वही में दबा देना है, हाँ, हाँ, और उसी से उनको कार्बनिक खाद तो मिलेगा ही, हाँ, हाँ, और नाइट्रोजन की भी पूर्ति होगी उनकी।
1: तो दबाते हैं तो कुछ सिंचाई की व्यवस्था ठीक करना पड़ेगा,
0: दबाएंगे उसको तो रोटावेटर से भी दबा सकते हैं, और उसके बाद मताई कर दें तो, अच्छा, इससे ये होगा कि वो खेत में पूरी तरह सड़ेगा,
1: है ना,
0: वो सड़ेगा तो हमारा नाइट्रोजन का वो खाद बनेगा और जो हमारा कार्बनिक तत्व है वो भी उसमें आएगा।
1: तो ये हमें कोई पानी की मात्रा है का?
0: नहीं नहीं नहीं, जैसे मताई करते हैं वैसे ही किसान को इसको मता देना है खेत में।
1: अच्छा अच्छा, तो ये प्रकार ले कह जाए तो ये कतक दिन की प्रक्रिया हो ही है जो हरी खाद तैयार हो जाए?
0: ये हरी खाद जैसे हम ढेंचा लगाते हैं, सनाई लगाते हैं, 40 से 45 दिन में, हाँ, तो अभी सही समय है किसानों को बीज उपलब्ध हो जाए, कृषि विभाग के पास भी बीज है, किसान भाई इसको लेकर अपने नाइट्रोजन की पूर्ति,
1: बढ़िया,
0: हाँ हाँ।
1: अच्छा, अब दोनों बात तो हम करें, खाद के, नील हरित काई के, हरी खाद के,
0: हाँ,
1: अब कतक ये जो खाद है नाइट्रोजन वगैरह डाले के, ओकर तुलना में कह जाए आप कतक कन के बचत करवा दिया?
0: देखिए आधा से ज्यादा
1: संकट ला देखा
0: था, हाँ, हाँ। अभी अगर देखेंगे तो हम लोग जब नील हरित काई की बात करते हैं तो उससे 20 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर कम हो जाता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: जहाँ एक बोरा किसान डाल रहा है, कई किसानों का अनुभव है कि जहाँ हम एक बोरा डाल रहे थे आधा बोरा में हमारा हो जाता है।
1: बढ़िया,
0: तो जो ये हमारे नाइट्रोजन की पूर्ति है और जो हमारे कार्बनिक खाद की उपयोगिता है, ये दोनों ही हमारे खेत में बढ़ जाएगा।
1: बढ़िया,
0: हाँ,
1: रसायन मुक्त हो,
0: हाँ, रसायन मुक्त हो,
1: स्वास्थ्य, अपन बार बार कही था कि बोला बर्जा था कि खातू मत डारा और संकट है तो फिर अभी का उपयोग करे जाए, है ना। तो अभी बहुत अच्छा चर्चा रही आज के कहे जाए तो, विषय बहुत बढ़िया समसामयिक रही सब है। अभी हमारे किसान भाई मन तैयार हो जाए नील हरित काई और हरी खाद के उपयोग, ये विषय में बहुत बढ़िया आज गोट बात करें कहे जाए। आज समाधान तो जरूर हो गए किसान भाई मन सुन के, इलाप नहीं अपन खेती किसानी ला बहुत बढ़िया ढंग ले कर पाई। ये तो हुई से आज के फोन इन कार्यक्रम, अपन ये विषय में बहुत बढ़िया जानकारी दिया हमारे स्टूडियो में आया कर बार डॉक्टर शिल्पा कौशिक जी, आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: आज के रिकॉर्डिंग में सहयोग दे माइकल एक्का जी मन और ई संग मंगू भेला दो विदा, राम राम, जय जोहार।
2: किसान भाई हो, ये तो रही से आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर विषय रही से नील हरित काई एवं हरी खाद का उपयोग, ये विषय में जानकारी देते रही हैं डॉक्टर शिल्पा कौशिक, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। इखर से गोट बात करीन हमर महंगू भैया मन, आवा सुनथन ये संदेश मनला।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परम्परा है परम्परागत खेती।

0: अरे सुन तो।
1: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
0: किसको?
1: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
0: अच्छा ये बात है।
1: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
0: अब तो झट से बात हो जाती है।
1: ऐसा क्या?
2: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
1: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
0: हाँ
1: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
3: संगी हो उन्हें मंडी ले मिले जानकारी के अनुसार धान सरना 2200 रुपया, धान महामाया 2300 रुपया, गेहूँ 2200 रुपया, कोहड़ा के भाव 600 ले 800, कुंदरू 1800 ले 2000, लिमऊ 8000 ले 8200, अनार 8800 ले 9200, तरबूज की बात करी तो 1200 ले 1400, करेला 1400 ले 1600, कटहर 3000 ले 3200, चुकंदर 1500 ले 1700, आलू की बात करी तो 1200 ले 1400, गाजर की बात करी 1400 ले 1600, सेब 11000 ले 11500, आमा की बात करी 4000 ले 4200। ये तो रही से आज के मंडी भाव। एक संगे संग देखो संगी हो गोट बात करत बेरा कैसे बुलक गे पते नहीं चली है ना भाई। आऊ अवैया बेरा में मिलबो। आज के हमार भेंट मुलाकात के गोट बात यह सिरावत है। चैतु भाईल दो विदा, राम राम, जय जोहार। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक रही से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए, पेश है साप्ताहिक चिट्ठी पत्री पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली। आज की प्रस्तुति है मोनाली ठाकरे और सुनील चिपड़े की। लीजिए पेश है।

0: चिट्ठी मिली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मोनाली ठाकरे
1: और सुनील चिपड़े का
0: नमस्कार। सुनील जी, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल आकाशवाणी बिलासपुर ने वॉकेथॉन का आयोजन किया था
1: जी,
0: आप भी उसमें शामिल थे।
1: जी बिल्कुल।
0: कैसा लगा आपको?
1: बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोग आए थे। हमारे माननीय कलेक्टर साहब आए थे, SP साहब आए थे और आकाशवाणी परिवार के सारे लोग, यानी कि आकाशवाणी में जितने लोग काम करते हैं हम, उनके परिवार के लोग,

0: आसपास के श्रोता लोग और बहुत सारे युवा, युवा जगत से जुड़े बहुत सारे युवा आए थे। सुबह सुबह उतना पैदल चलना और उस जोश के साथ कि हम आकाशवाणी को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, तो हमने आकाशवाणी को सेलिब्रेट भी किया और खुद को फिट रखने का संकल्प भी किया है।
0: जी बिल्कुल, हम सब शानदार सफेद टी शर्ट और उसमें दौड़ने वाला एक स्लोगन लेकर के चल रहे थे। वो दृश्य बहुत अच्छा था, अच्छा बहुत खूबसूरत था और उसे आप लगातार आकाशवाणी के ट्विटर हैंडल में और फेसबुक में, यूट्यूब में

0: रविवार शाम की सभा में प्रसारित ग्राम सभा किसानवाणी कार्यक्रम सुनने को मिला। कृषि संबंधी उपयोगी जानकारी, समसामयिक सलाह और छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनने को मिले और यादगार प्रस्तुति के लिए राजू भैया को बधाई दे रहे हैं। ये पत्र हमें प्रेषित किया है दत्रेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा जी ने।
1: जी, तो पत्र लिखने के लिए इन्हें धन्यवाद देते हैं और बढ़ते हैं अगले पत्र की तरफ। अगला पत्र आया है ग्राम उड़नताल दगोरी से श्यामदा प्रसाद गायकवाड़ जी का। इनके साथ है हेमलता, जागृति, सरला और पल्लवी और समीर गायकवाड़। ये लिखते हैं 10 मई को प्रसारित कार्यक्रम कानून की बात, जिसमें उत्तराधिकारी अधिकार अधिनियम के संबंध में एक जानकारी मिली, जिसमें सुश्री मनीषा ठाकुर जी से बातचीत विवेक पांडे जी ने की। ये इन्हें काफी अच्छा लगा, लाभदायक एवं सटीक लगा। कार्यक्रम की सुंदर एवं सफल प्रस्तुति के लिए ये बधाइयां दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और अगला पत्र जो है वो पोटिया कला दुर्ग से आया हुआ है, संजय साहू और सुजाता साहू का। इन्होंने पत्र में लिखा है कि दिनांक 16 मई को सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा विषय पर जो इन्होंने बातचीत डॉक्टर साहब की सुनी उन्हें अच्छी लगी और प्रस्तुतकर्ताओं को ये बधाई दे रहे हैं। और अगली बात ये लिखी है कि 15 मई को सुबह 8:30 इनसे मिलिए कार्यक्रम में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम के श्री प्रशांत कुमार पांडे जी की बातचीत इन्हें अच्छी लगी। सुंदर एवं सटीक प्रसारण के लिए आकाशवाणी केंद्र को बधाई दे रहे हैं।
1: इन्हें भी हम पत्र लिखने के लिए धन्यवाद देते हैं। अगला पत्र आया है सिंगारबाड़ी घुटकू से भगतराम पटेल, किशन, सोनम और मानवी पटेल जी का। ये लिखते हैं, आकाशवाणी हमेशा अपनों का साथ देते आया है और इसीलिए अच्छे कार्यक्रम का प्रसारण भी कर पाता है, लेकिन यदि कोई अपना बिछड़ जाता है तब काफी दर्द महसूस होता है। हम उनसे इतनी तरह से घुल मिल जाते हैं कि उनके जाने का दर्द हमें होता है। पिछले दिनों में मितान शब्द से पहचाने जाने वाले अनिश भैया जो हमारे बीच से अलविदा हो गए, जिनकी कमी ये महसूस कर रहे हैं और वो अनिश भाई को सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे हैं। अनिश जी की याद तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, बट वो उनकी आवाज के साथ हमेशा हमारे साथ भी रहेंगे।
0: अनिश जी का जाना पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और जो दोस्ती हमारी आपकी तमाम लोगों की एक दूसरे के साथ होती है रेडियो के माध्यम से, वो एक खालीपन जरूर होगा, उसे भरा नहीं जा सकता, लेकिन आप श्रोताओं के साथ से हमारा दुख कम हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन हम इस प्रक्रिया में हैं।
1: बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर।
0: अगला खत पथरिया भरेवा का है, चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल का। ये लिखते हैं कि 17 मई ग्राम सभा कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए आप मन के गीत इन्हें बहुत अच्छे लगे, मनमोहक लगे। बैसाखू भैया ने हमारी पसंद के शानदार गीत बजाए। 18 मई दिन सोमवार को प्रातः 10 प्रसारित तुहर गोठ हमर गीत फोन इन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मानस तिवारी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। आत्मीय और शानदार बातचीत के लिए आकाशवाणी परिवार को धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं कि ईमेल करें, गीत सुने, माटी के स्वर, अमराई, ग्राम सभा, युवा जगत, ये सभी कार्यक्रम इन्हें ज्ञानवर्धक और मनोरंजक लगते हैं। इन्होंने विशेष रूप से युवा जगत का जिक्र किया है और लिखते हैं कि नियमित रूप से प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन श्रोताओं को जोड़ने का काम करता है और ये एक उत्कृष्ट प्रयास है। युवा जगत टीम के समस्त कार्यक्रम निर्माताओं और प्रस्तुतकर्ताओं को दिल से वे साधुवाद दे रहे हैं।
1: पत्र लिखने के लिए इन्हें भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: और श्रोताओं को ये भी बता दें कि जो युवा जगत की टीम है वो मोनाली मैडम के नेतृत्व में काम कर रही है।
1: धन्यवाद सुनील जी। तो हमारा अगला पत्र है चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंदरी लहरे लिखती है। 17 मई का कानून की बात कार्यक्रम काफी अच्छा लगा। इसमें अधिवक्ता श्री सौरभ चंद्र जी से कानूनी मुद्दे पर महत्वपूर्ण रोचक जानकारी मिली। ये आगे लिखते हैं, हेलो, आपकी पसंद कार्यक्रम जो 20 मई को रिकॉर्ड होना था उसमें कोई कॉल स्वीकार नहीं की गई, तो इसका क्या कारण है बताएं। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे कॉल नहीं आ रहे थे, हमने उसकी शिकायत भी दर्ज की है, तो हम आशा करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो हमारी टेलीफोन लाइन है वो सही हो जाए, दुरुस्त हो जाए और हम आपके कॉल स्वीकार कर पाए, तो अगली बार आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा।
0: हमारी भी निर्भरता टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं जिनके माध्यम से हमने टेलीफोन सर्विसेज ली हैं BSNL, उस पर निर्भर करती है, लेकिन फिर भी हमारी उम्मीद है कि श्रोता इस बात को समझेंगे और कॉल्स करते रहेंगे।
1: बिल्कुल, पत्र लिखने के लिए आपको धन्यवाद।
0: ये पत्र है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर रजक, मुकेश कुमार रजक, कुमारी हाव्या, कुमारी तानिया रजक का। ये पत्र में लिखते

0: हैं कि 18 मई को प्रसारित तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम श्रोताओं के साथ बहुत सुंदर बातचीत सुनवाने के लिए प्रस्तुतकर्ता मानस तिवारी जी को बधाई, और इसी दिन कार्यक्रम आपकी पसंद में बेहतरीन प्रस्तुति के साथ अंतरा चक्रवर्ती जी ने जो गीत सुनवाए उसके लिए आकाशवाणी परिवार को बधाई दे रहे हैं।
1: आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पत्र लेते हैं जो आया है लोरमी ग्राम चिचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज और ऋषभ मरावी लिखते हैं। 18 मई को ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम सुना, रत्ना जी की प्रस्तुति में काफी अच्छा लगा। इन्होंने अधिक से अधिक नाम शामिल करके हमारी पसंद के बेहतरीन गीत सुनाए। लाजवाब प्रस्तुति के लिए रत्ना जी और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। मोनाली जी, अगला खत माखीजा कुटुंब का है। रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी, और जैसा कि मैंने कहा कि पूरा माखीजा परिवार, ये लिखते हैं कि हमारा कुटुंब आकाशवाणी सुनता है और 18 मई के रजनीगंधा में हवा विषय पर कार्यक्रम पेश किया गया, इन्हें बहुत अच्छा लगा। और आगे लिखते हैं 19 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया, जो रात शब्द पर आधारित था। बहन वर्षा जी को ये बधाई देते हैं, और साथ ही सुमधुर छत्तीसगढ़ी गीत इन्होंने सुने कार्यक्रम अमराई में। और 20 तारीख को हेलो आपकी पसंद पेश किया गया पद्मा जी द्वारा, श्रोताओं के साथ वार्तालाप और बेहतरीन गीत इनको सुनने को मिले। और 19 मई को भुइया के बोली कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा ले हो ही महिला सशक्तिकरण, वार्ताकार डॉक्टर रत्ना मिश्रा जी, इन्हें काफी सार्थक लगी ये वार्ता। आगे लिखते हैं कि 20 तारीख हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम पेश किया गया, इन्हें अच्छा लगा। और आकाशवाणी के 90 साल के उपलक्ष में जो वॉकेथॉन की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित हुई इन्हें अच्छी लगी, कार्यक्रम की समग्र जानकारी इन्हें मिली, इसके लिए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी और श्री नेमी चंद साहू जी का धन्यवाद देते हैं।
1: पत्र लिखने के लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लेते हैं हमारा अगला पत्र जो आया है ग्राम धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार और युवराज साहू लिखते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर के नियमित श्रोता है। आपके यहाँ से प्रसारित सभी कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 18 मई का तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम मानस तिवारी जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं, साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम अंतरा चक्रवर्ती जी की प्रस्तुति में भी इन्हें अच्छा लगा। ये लिखते हैं कि बहुत बढ़िया गीतों का संकलन था, इन्हें काफी अच्छा लगा। साथ ही ये विविध भारती कार्यक्रम भी सुनते हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मेल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगले खत में ये बात लिख रहे हैं कि आकाशवाणी बिलासपुर से प्रसारित कार्यक्रम हमें ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम, चिट्ठी मिली कार्यक्रम के अलावा माटी के स्वर, फोन इन कार्यक्रम, युवा जगत कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम बेहद पसंद करते हैं और हमें सीख व प्रेरणा के साथ जनउपयोगी कार्यक्रम सुनवाने के लिए आकाशवाणी परिवार का हार्दिक धन्यवाद दे रहे हैं। और ये लिखने वाले हैं मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
1: तो पत्र लिखने के लिए इन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और लेते हैं हमारा अगला पत्र जो आया है कातल बोर्ड से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत जी का। ये लिखते हैं 14 मई को प्रसारित हेलो किसानवाणी कार्यक्रम जिसमें फलदार वृक्ष की खेती संबंधित जानकारी मिली। अमित शुक्ला जी से राजू भैया की गोट बात बहुत अच्छी लगी। साथ ही 15 मई का ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जो जानकारी मिली काफी अच्छी लगी। अमित शुक्ला जी और वीरेंद्र भैया को सफल प्रस्तुति के लिए बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 18 मई को प्रसारित तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम मानस जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं। आकाशवाणी बिलासपुर को हर सप्ताह अलग अलग विषय में जानकारी देने के लिए बधाइयां दे रहे हैं। ये आगे लिखते हैं 15 मई को प्रसारित आकाशवाणी के 90 साल पर जो परिचर्चा प्रसारित की गई वो काफी अच्छी लगी। इसमें नम्रता वाजपेयी, मीनू सिंह, संज्ञा टंडन और सुप्रिया भारतीयन को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 20 मई को जो रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया ये भी काफी पसंद कर रहे हैं। आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाइयां दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अगला खत आया है चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र, रौनक सेन। ये अपने खत में लिख रहे हैं कि कभी कभी इंसान को कुछ कारणवश बड़ा दुखी हो जाना पड़ता है, यह वह उस समय खुद ही जानता है। और खत में बात ये लिखी है दरअसल इन्होंने, इनके साथ ऐसा हुआ कि पिछले सप्ताह का चिट्ठी मिली कार्यक्रम ये नहीं सुन पाए, एकाएक उस दिन गुरुवार को वो भूल गए और वंचित रह गए, इसका उन्हें खेद है, दुख है, ये चिट्ठी के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। साथ ही आगे लिखते हैं कि बहन संज्ञा जी, बहन अंतरा जी के साथ अन्य उद्घोषकों ने आपके पसंद कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम माटी के स्वर प्रस्तुत किए, इन्हें बहुत अच्छे लगे। तुहर गोठ हमर गीत की भी तारीफ लिख रहे हैं जो कि मानस जी ने प्रस्तुत किया था, और इनका ये कहना है कि ये तमाम कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम सुन करके उनका दुख थोड़ा सा कम हो गया। हाँ, ये आगे लिख रहे हैं कि सुप्रिया भारतीयन मैम से विनती कर रहे हैं कि चिट्ठी मिली कार्यक्रम को पुनः प्रसारित किया जाए।
1: हम यही कहेंगे कि आज का चिट्ठी मिली

0: कार्यक्रम सुनकर आप पिछला दुख भूल जाइए।
1: जी, और चिट्ठियां हमेशा ताजा अच्छी लगती हैं। पुरानी चिट्ठियां यादों में जरूर होती है, लेकिन नए नए कार्यक्रमों के साथ प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचती है, तो चिट्ठी मिली कार्यक्रम को तो पुनः प्रसारण करना संभव नहीं होगा।
0: पत्र लिखने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए बढ़ते हैं अगले पत्र की तरफ, जो आया है कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील दिवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य दिवांगन का। ये लिखते हैं, 14 मई का चिट्ठी मिली कार्यक्रम अच्छा लगा, सुप्रिया जी और मोनाली ठाकरे को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही ये लिखते हैं, इसमें सभी श्रोता भाइयों का पत्र शामिल हुआ, सबको यथा योग्य स्थान मिला, इसके कारण ये बहुत खुश है और बधाइयां दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, 17 मई का माटी के स्वर कार्यक्रम खुशबू जी की प्रस्तुति में काफी अच्छा लगा, श्रोताओं के पत्रों पर आधारित सुंदर छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनवाए गए जो इन्होंने काफी पसंद किए हैं। साथ ही शाम की सभा में ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम जिसकी प्रस्तुति संज्ञा टंडन जी की थी, ये भी इन्होंने काफी पसंद की है। 18 मई को तुहरगोट हमर गीत कार्यक्रम मानस तिवारी जी की प्रस्तुति में, 20 मई का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम पद्मा जी की प्रस्तुति में काफी पसंद कर रहे हैं। आवाज की मलिका ने अपने अंदाज में श्रोताओं को अच्छे अच्छे गीत सुनवाए, ये कहकर वो पद्मा जी के एक आवाज की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही ये लिखते हैं कि 20 मई का आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर जो आकाशवाणी बिलासपुर ने कार्यक्रम प्रस्तुत किया वो इन्हें काफी अच्छा लगा, इस कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी बिलासपुर को बधाइयां दे रहे हैं। आपको भी पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अगले खत में प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार के साथ आगे बात लिखी हुई है, प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं, दूर बैठकर रेडियो ऐप के माध्यम से ही प्रोग्राम सुनने का सहारा है। और आगे लिखते हैं कि 14 मई को चिट्ठी मिली कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, पत्र पढ़ने और उत्तर देने का अंदाज इन्हें बहुत ही अच्छा लगा, सदाबहार नगमे और यादों के झरोके से प्रोग्राम में इस सप्ताह काफी अच्छे गीत सुनने को मिले, आज सुबह में भी बहुत ही अच्छी जानकारियां प्राप्त होती हैं और रजनीगंधा कार्यक्रम भी बहुत अच्छी खुशबू बिखेरता है, इनका ये कहना है। और ये लिख रहे हैं चनहेटी उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता विनेश कुमार, रागिनी और मुस्कान बरेली कैंट से।
0: पत्र लिखने के लिए इन्हें धन्यवाद देते हैं और लेते हैं हमारा अगला पत्र जो आया है अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा जी लिखते हैं, 20 मई का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम जिसमें श्रोताओं के मन के विचार जिसमें श्रोताओं ने अपने मन के विचार साझा कर उनके पसंद के गीत की फरमाइश की और प्रस्तुतकर्ता ने उसे सुनवाया, पद्मा मणि जी को बधाइयां दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। साथ ही ईमेल करे गीत सुने कार्यक्रम महावीर बरघा जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं, 21 मई का सदाबहार नगमे कार्यक्रम माटी के स्वर कार्यक्रम भी पसंद कर रहे हैं और खूबसूरत प्रस्तुति के लिए प्रस्तुतकर्ता एवं आकाशवाणी परिवार को बधाइयां दे रहे हैं। पत्र लिखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: अगला पत्र है इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस, चेतन और गंगा देवी विश्वकर्मा का। यह ईमेल पत्र आपके स्नेह का अभिलाषी है, यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं और लिख रहे हैं, 14 मई को हमारे प्रिय डॉक्टर दीदी जी और हमारी प्रिय मोनाली ठाकरे दीदी जी के द्वारा प्रस्तुत हमारा बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम चिट्ठी मिली ने बहुत ही लाजवाब लगा और आप लोग दोनों के लिए इन्होंने बधाइयां प्रेषित की है। साथ ही 15 मई को रात्रि 8 बजे हमारे प्रिय आकाशवाणी केंद्र से 90 वर्षों की यादों पर जो विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया गया, हर दिल की आवाज आकाशवाणी और परिचर्चा सुनवाई गई, नम्रता जी और मीनू जी की बातचीत इन्हें अच्छी लगी। इन्होंने लिखा है, ये पूरा कार्यक्रम इनके दिल में छू गया और यादगार कार्यक्रम के लिए संज्ञा जी और डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी को ये बधाई दे रहे हैं और आभार प्रकट कर रहे हैं। साथ ही मीनाक्षी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया कार्यक्रम रजनीगंधा इन्हें अच्छा लगा, जो कि माधुरी दीक्षित पर केंद्रित उनके जन्मदिन पर यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया। 16 मई को सुबह 7:30 बजे पुष्पा जी द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया सदाबहार नगमे, ये इन्हें अच्छा लगा। 18 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम हवा पर केंद्रित था, इन्हें बहुत अच्छा लगा। 19 मई का सदाबहार नगमे कार्यक्रम मानस जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसके लिए बधाई दे रहे हैं। और इसी दिन का रात में वर्षा जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम रजनीगंधा इन्हें अच्छा लगा, उसके लिए बधाई दे रहे हैं। 20 मई को महावीर जी द्वारा जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया ईमेल करे गीत सुने इन्हें अच्छा लगा, इसके लिए बधाई दे रहे हैं।
0: तो सुनील जी, इन्हें हमारे आकाशवाणी के सारे ही कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बधाइयां भी लिख भेजी है। आपने जो इतना सारा हमारे लिए लिखा है आपके इन प्यारे शब्दों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगला पत्र आया है भाटापारा से बचकामल मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरे जी का। ये लिखते हैं, 14 मई को प्रसारित चिट्ठी मिली, कार्यक्रम पसंद आया। खूबसूरत प्रस्तुति के लिए सुप्रिया जी और मोनाली ठाकरे को बधाइयां दे रहे हैं। साथ ही 16 मई का आज सुबह कार्यक्रम पुष्पा साहू जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं। 16 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम मीनाक्षी जी की प्रस्तुति में, 17 मई का ग्राम सभा कार्यक्रम

0: कार्यक्रम जिसके अंतर्गत बैसाखू भैया द्वारा आप मन के गीत सुनाए गए काफी पसंद कर रहे हैं। 18 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम संज्ञा टंडन जी की प्रस्तुति में, उसी दिन का आज सुबह यादों के झरोके से आपकी पसंद कार्यक्रम अंतरा जी की प्रस्तुति में, 19 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम वर्षा जी की प्रस्तुति में और 20 मई का रजनीगंधा कार्यक्रम महावीर जी की प्रस्तुति में काफी पसंद कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। 21 मई का माटी के स्वर कार्यक्रम भी इन्हें काफी अच्छा लगा, सभी प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं। प्यारे शब्दों के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और इस धन्यवाद के साथ अगले पत्र की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें रसेड़ा से भेजा है मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डिकेश साहू ने। 14 मई का चिट्ठी मिली कार्यक्रम इन्हें बहुत पसंद आया। डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन और मोनाली ठाकरे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कार्यक्रम में जल का सदुपयोग करने, वृक्षों की रक्षा करने, मूक पशु पक्षियों की विशेष देखभाल करने का जो संदेश दिया गया उन्हें प्रेरक लगा। 15 मई को आकाशवाणी बिलासपुर द्वारा प्रातः स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जिसकी रेडियो रिपोर्ट रात्रि में प्रसारित की गई। इन्हें बहुत अच्छा लगा और श्री नेमीचंद साहू जी और संयोजन के लिए डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन जी को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। 20 मई का ईमेल करें गीत सुने, इन्हें बहुत अच्छा लगा, महावीर जी को बधाई दे रहे हैं। 21 मई का माटी के स्वर भी इन्हें अच्छा लगा और गीतों की प्रस्तुति के लिए पुष्पा साहू जी को बधाई दे रहे हैं।
0: पत्र लिखने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लेते हैं हमारा अगला पत्र, जो एक रंग बिरंगी पत्र है। इसमें फूल के साथ दो कली और सुंदर सा डेकोरेशन करके हमें भेजा है तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, छंदुलाल श्रीवास, सुशील दिवांगन और एसएन प्रजापति जी ने। इन्होंने आल्हा जयंती की शुभकामनाएं दी है, साथ ही लिखा है कि नवतपा प्रारंभ हो चुका है। ये 9 दिन जो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो हम सबको सतर्क रहना है और खुद का और अपने परिवार का ख्याल भी रखना है, पानी पीते रहना है और जितना हो सके बाहर की गर्मी से बचना भी है
1: जी।
0: इन्होंने गंगा दशहरा की भी शुभकामनाएं भेजी है, साथ ही आकाशवाणी कार्यक्रमों की भी एक लिस्ट हमें दी है। ये लिखते हैं, 17 मई का माटी के स्वर कार्यक्रम खुशबू जी की प्रस्तुति में और ग्राम सभा कार्यक्रम बैसाखू जी की प्रस्तुति में पसंद कर रहे हैं। 18 मई का तुहर गुट हमर गीत कार्यक्रम मानस तिवारी जी की प्रस्तुति में, आपकी पसंद कार्यक्रम अंतरा जी की प्रस्तुति में, साथ ही 20 मई का हेलो आपकी पसंद कार्यक्रम पद्मा जी की प्रस्तुति में और 21 मई का माटी के स्वर कार्यक्रम भी ये बहुत पसंद कर रहे हैं और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाइयां भी प्रेषित कर रहे हैं। आपकी बधाई हमने प्रस्तुतकर्ता तक पहुँचा दी है। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। और अब समय हो गया है चाय पीने का।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, और मुझे लगता है कि आप मेरे लिए चाय लेके आए हैं।
1: हाँ बिल्कुल, थर्मस में चाय लेकर के आए हैं और आज टी डे है, चाय दिवस है, तो ये तो बनता ही था। और दरअसल ये सारे जो खत हैं सप्ताह में एक बार हमारे श्रोताओं के आते हैं, ये चाय की ताजगी की तरह हमारे लिए आते हैं, तो हमारे लिए आपके खत भी चाय की तरह हैं और आप भी अपनी अपनी प्याली में चाय का स्वाद लीजिए और हमें फिलहाल कार्यक्रम से
0: इजाजत दीजिए क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो जाएगी।
1: हाँ, हम अपनी चाय जल्दी से ग्रहण करना चाहते हैं और आप यूं ही खत भेजते रहिए, हमें आपके विचारों की ताजगी की जरूरत है
0: जी। पहले पता बताना पड़ेगा, तो हमें ईमेल करने के लिए हमारा मेल आईडी है पत्र ईमेल bsp@gmail.com और पत्र के लिए पता है कार्यक्रम चिट्ठी मिली द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 49 आकाशवाणी बिलासपुर, पिन कोड है 495006। तो हमें इंतजार रहेगा आपके प्यार भरे पत्रों का, आपके मेल का। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मोनाली ठाकरे
1: और सुनील चिपड़े का
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक चिट्ठी पत्री पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी मिली। आज की प्रस्तुति थी मोनाली ठाकरे और सुनील चिपड़े की। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:22 हो चुके हैं। लीजिए पेश है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राग जोग, विलंबित ख्याल एक ताल, तराना तीन ताल, द्रुत ख्याल। लीजिए पेश है

0: श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार अब दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस

0: और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श

0: जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society. Asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad.

फिल्म वक्त से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि का संगीत था और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

रूना लैला की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे घरौंदा फिल्म से, जयदेव का संगीत था। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। आपने आज का ये संगीत का सफर तय किया अनुराधा उपाध्याय के संग।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनक।

0: कार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर।
1: मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर

जैसे कि आप जानते हैं, आदित्य चोपड़ा जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के सुपुत्र हैं। उनकी प्रतिभा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि उनकी शख्सियत तीन आयामों वाली है। सबसे पहली बात तो ये कि वे एक अच्छे प्रोड्यूसर हैं, दूसरी बात ये कि वे एक बहुत अच्छे लेखक हैं, और तीसरी बात वे एक बहुत अच्छे निर्देशक हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे आदित्य चोपड़ा की शख्सियत के इन तीनों पहलुओं पर।

आदित्य चोपड़ा होश संभालने के बाद अपने पिता को असिस्ट करते रहे, यानी उनके सहायक रहे। जाहिर है यश चोपड़ा के बेटे होने के नाते फिल्म संसार में ही उन्होंने अपनी आंखें खोली।

लेकिन युवा पीढ़ी का होने के कारण उनका अपना एक विजन था और वे अपनी तरह की फिल्में बनाना चाहते थे। इसीलिए जब उन्होंने कई सालों पहले फिल्म संसार में कदम रखा तो एक बड़ी ही अनूठी फिल्म बनाई जिसका नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

0: आदित्य चोपड़ा की कुशल लेखनी इस फिल्म में झलक झलक पड़ी थी।
1: एक दिन जब सवेरे सवेरे सुरमई से अंधेरे की चादर हटाके एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं।
0: जिस तरह से इस फिल्म में नाटकीय परिस्थितियां दिखाई गई थीं और ये दर्शाया गया था कि प्यार सरहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही उम्र का मोहताज होता है, प्यार सर्वकालिक होता है, सर्वयुगीन होता है। फिल्म वीर ज़ारा की एक खासियत और थी कि इस फिल्म में जाने माने संगीतकार मदन मोहन की धुनों को पुनर्जीवित किया गया था, यानी वो धुनें जो मदन मोहन बना गए थे और उनके खजाने में पड़ी थीं, उनके बेटे संजीव कोहली ने दोबारा से तैयार की और उनके जरिए आए ये।

0: आदित्य चोपड़ा ने अपने प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स को कॉर्पोरेटाइज किया है, यानी उसके ढांचे में परिवर्तन किया है और अब सिर्फ आदित्य चोपड़ा या उनके पिता यश चोपड़ा ही इस बैनर के तले फिल्में नहीं बनाते।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे

0: इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं।
1: बल्कि इस बैनर में नई प्रतिभाओं को भी मौका दिया जाता है।
2: Are you ready? Sit down. Let me tell you a little story about two cool cats. Yeah, Bunty or Bubbly. Coming in at an angle that they better than the rest. When you're looking in their hearts, they're gonna pass the test. They're gonna
1: pass the test. Don't look. ऐसी ही एक प्रतिभा थे निर्देशक संजय गढ़वी।

0: उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने पहचाना कुणाल कोहली की प्रतिभा को और आई फिल्म हम तुम। आदित्य चोपड़ा ने जाने माने फिल्मकार मुजफ्फर अली के बेटे शाद अली सहगल को भी मौका दिया।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

और उनकी दूसरी फिल्म बंटी और बबली पेशकश थी यश चोपड़ा फिल्म्स की। निर्माता थे आदित्य चोपड़ा। ये फिल्म भी बड़ी कामयाब रही।

हमने संजय गढ़वी की पहली फिल्म मेरे यार की शादी है का जिक्र किया, लेकिन उनकी दूसरी फिल्म का जिक्र किए बिना आदित्य चोपड़ा पर बनाया गया ये कार्यक्रम अधूरा होगा। ये फिल्म है धूम।

आज के जमाने में मोटर गाड़ियों वाली और टेक्नो फिल्म रफ्तार भरी फिल्में लाने का श्रेय जाता है आदित्य चोपड़ा को फिल्म धूम के जरिए। ये एक अलग ही जॉनर, अलग ही माहौल की फिल्म थी, अलग ही पीढ़ी की फिल्म थी, चाहे इसका संगीत हो, चाहे इसकी कहानी हो।

साल 2010 में एक साथ तीन बड़ी फिल्में यशराज फिल्म्स ने रिलीज की, जिनके प्रोड्यूसर थे आदित्य चोपड़ा। एक थी परमीत सेठी की फिल्म बदमाश कंपनी, प्रदीप सरकार की फिल्म लफंगे परिंदे और मनीष शर्मा की फिल्म बैंड बाजा बारात।

आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स की बागडोर संभाल रहे हैं और ये प्रोडक्शन एक के बाद एक कई फिल्मों का निर्माण कर रहा है। सलमान खान ने यशराज फिल्म्स के साथ अपनी पहली फिल्म की। कबीर खान निर्देशित एक

आज यशराज फिल्म्स की कमान आदित्य चोपड़ा संभाल रहे हैं। साल 2013 के आखिरी दिनों में आदित्य चोपड़ा ने रिलीज की विजय कृष्ण आचार्य के लेखन और निर्देशन वाली आमिर खान की फिल्म धूम 3। इस फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई करके एक रिकॉर्ड कायम किया है।

आदित्य चोपड़ा इन दिनों अपने बैनर यशराज फिल्म्स के लिए बतौर प्रोड्यूसर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। साल 2014 में यशराज फिल्म्स के बैनर तले उन्होंने पेश की फिल्म मर्दानी। इसमें मुख्य भूमिका में थीं रानी मुखर्जी। साल 2015 में शरद कटारिया के निर्देशन में एक फिल्म आई दम लगा के हईशा। इसे भी यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। यशराज फिल्म्स आजकल नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रहा है। साल 2014 में आई शाद अली की फिल्म किल दिल। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे। सुनते हैं ये गाना।

आदित्य चोपड़ा की एक चर्चित फिल्म रही है फैन, जिसमें शाहरुख खान दोहरी भूमिका में थे। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। आदित्य चोपड़ा ने काफी लंबे

समय तक किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। फिल्म फैन और सुल्तान के वो निर्माता ही रहे। यशराज फिल्म्स की तमाम फिल्मों के निर्माण की जिम्मेदारी वो संभालते रहे और इस बैनर के तले कई निर्देशकों ने अपनी फिल्में निर्देशित की। बहुत बरस बाद आदित्य चोपड़ा एक बार फिर से लौटे निर्देशन की दुनिया में। उन्होंने बनाई फिल्म बेफिक्रे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक और लेखक आदित्य चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इंडिया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। गली गली अब यही अफसाना हो गया, छुप छुप के मिलना भी पुराना हो गया, नजरें क्या मिली शहर में चर्चा छा गया, लैला मजनू का इश्क अब सबके लबों पे आ गया।

नमी घोल रखी है, तेरी एक झलक को तरसती हैं ये निगाहें। जरा करीब आकर तो देख, मैंने मोहब्बत दिल में सजा रखी है।

नजरों से यूं दिल चुरा लेने का हुनर कहां से पाया? बिना लफ्जों के सब कह जाने का ये फन कहां से आया? हम तो समझते थे खामोशी बस खामोशी होती है, पर तूने इशारों इशारों में दिल जीतना सिखाया।

के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। अजनबी थे, कोई पहचान भी नहीं थी दरमियां। एक ही मुलाकात में लगा जैसे मिट गई हो दूरियां। तुझसे मिलकर यूं लगा जैसे अपना ही कोई मिल गया। भीड़ में चलते चलते अचानक हम सफर ने जैसे हाथ हो थाम लिया।

पलकें काजल से जब बोझिल सी हो जाती हैं, मेरे दिल की धड़कनें भी धीमी सी हो जाती हैं, माथे की बिंदिया जब चांद को छू कर आती हैं, तेरे हर सिंगार पर मेरी नजर ठहर जाती है।

उसकी मुस्कान से रोशन होती है मेरी सुबह, उसकी पलकों के बंद होते ही होती है मेरी शब। सामने वाली खिड़की में तो अक्सर नजर आती है, पर न जाने मेरे सामने वो मोहतरमा

0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी ये तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है ये तुम्हारा कंगन, सितारे हैं ये तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है ये तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर

एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।

0: श्रोताओं, अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजे हैं। समाचार अब दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा

उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।